मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। आज बुधवार है, शक संबत 1948 ज्येष्ठ मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 जून सन 2026। इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 हो चुके हैं। अब आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। आपका दिन मंगलमय हो।

ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपये तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई

0: प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता के एक अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
2: प्रातः बेला की आराधना वंदना।

इस नश्वर संसार में आत्मा सदैव अकेले आती है और एक दिन अकेले ही इस दुनिया को छोड़ जाती है। आत्मा का ना तो कोई संबंधी है और ना ही कोई मित्र। आत्मा वास्तव में ईश्वर का ही अंश है। आत्मा की पवित्रता ईश्वर की आराधना से ही संभव है।

आवश्यकता से अधिक की कामनाएं और विलासिता की वस्तुएं दुखों का मूल कारण होती हैं, क्योंकि आवश्यकता से अधिक धन और वस्तुओं को अर्जन करने के प्रयोजन में व्यक्ति गलत तरीकों को अपनाता है। गलत कार्य भय और मन में अशांति का प्रमुख कारण बनते हैं। ऐसी मनःस्थिति में जीवन का सहज आनंद अनुभव ही नहीं हो पाता। इसलिए सच्चा आनंद चाहिए तो सत्य के रास्ते पर चलिए, संयमित बनिए और ईश्वर का सुमिरन करते रहिए।

सृष्टि रचयिता ईश्वर को खुली आंखों से देखा तो नहीं जा सकता, पर अंतर मन में उसकी अनुभूति अवश्य की जा सकती है। हमारा ईश्वर और हमारी आत्मा हमारा मंदिर है। हमारे चंचल मन को संतुष्ट करना बहुत ही कठिन काम है। जब इंसान अपनी इंद्रियों को वश में करे तभी इस काम में सफल हो सकता है। अन्यथा भिक्षा पात्र को तो भरा जा सकता है, परंतु इच्छा पात्र को नहीं भरा जा सकता। संतोष में ही परम सुख है और ईश्वर भक्ति में ही परम आनंद है।

इंसान का पहला धर्म मानवता का पालन करना है। सभी के साथ प्रेम से रहने का प्रयास करना चाहिए। किसी से ईर्ष्या करके हम उस इंसान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, अपनी नींद, अपना सुख चैन अवश्य खो सकते हैं। इसलिए मानवता की सेवा करते रहिए, ईश्वर की आराधना अपने आप हो जाएगी।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में आज समूह स्वर में देशभक्तिपूर्ण रचना के पश्चात गायक कलाकार थे सुरेश वाडकर, पंडित जसराज, पंडित भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर एवं हरिओम शरण वसाथी। अब आज की वंदना संपन्न होती है।

अभी भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना का प्रसारण किया जा रहा था। ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

श्री रामचरित मानस की रचना के क्रम में तुलसीदास ने अपने सभी गुण दोषों का वर्णन करके जो भी पूज्य तथा वंदनीय हैं उनके सामने बार बार सिर नवाया है। ऐसा करने के बाद ही श्री राम के निर्मल चरित्र का वर्णन आरंभ किया है। भक्त कवि को विश्वास है कि जिन उदार प्रभु ने पत्थरों को जहाज की भांति तिरने वाला तथा बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया, वो तुलसी जैसे अज्ञानी सेवक का मान अवश्य रखेंगे। आराध्य के प्रति उनकी आस्था की पराकाष्ठा के दर्शन उन चौपाइयों में होते हैं जहां वे कहते हैं कि प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की भूल चूक याद नहीं रहती, जबकि उनकी थोड़ी सी अच्छाई को प्रभु सौ सौ बार याद रखते हैं। बाली, सुग्रीव, विभीषण इन सब के साथ ऐसा ही तो हुआ। कहाँ राम के रूप में परम ब्रह्म और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर उछल कूद करने वाले बंदर। परंतु उन बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया।

0: रामचरित मानस गान अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए अब प्रस्तुत है चिंतन।
1: मनुष्य प्रकृति की अप्रतिम अनुकृति है। मानव जीवन रोग और मृत्यु के डर से जीवन पर्यंत भयभीत रहता है। जीवन के अंतिम क्षणों तक दुख परछाई के सदृश साथ चलते हैं। दुखों से मुक्ति की मृग तृष्णा मानव को अनेक व्यसनों में लिप्त करती जाती है। जीव सांसारिक भंवर में विवर्तित रहकर सुख की प्राप्ति को भटकता है। क्या उसे सुख मिलता है? नहीं, क्योंकि सुख की प्राप्ति हेतु चिंतन मनन आवश्यक है। मनन और चिंतन को चार चरणों शैशव, किशोर, युवा तथा वृद्धावस्था के रूप में चार आश्रमों के सदृश माना जा सकता है। मकान की चार दीवारों, पलंग के चार पांवों के रूप में साधक द्वारा साधना कर आत्मिक दिशा में प्रगति की जा सकती है। ये चार दिशाएं हैं: आत्मसमीक्षा, आत्मसुधार, आत्मनिर्माण और आत्मविकास। मानव कोल्हू के बैल की तरह संसार में भटकता है। इस भटकाव से बचने के लिए आत्मशोधन अनिवार्य है। आत्मशोधन के लिए चिंतन मनन परम आवश्यक है। बिना नींव की खुदाई के भव्य भवन निर्मित नहीं हो सकता। नींव का खुरदरापन स्थायित्व हेतु आवश्यक है। तदंतर चिकनाई, रंग रोशन, भवन की सजावट करना सरल कार्य है। फोड़ा की पीड़ा कम करने हेतु शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन प्रथम आवश्यकता है। मरहम, प्रलेपन, पट्टी बंधन उसके उपरांत की प्रक्रियाएं हैं। अच्छी फसल के लिए खेत की जुताई, सफाई प्राथमिकता है। इसी प्रकार सर्वप्रथम मनन, आत्म समीक्षा करना जीवन के प्रथम सोपान हैं। आत्मचिंतन अर्थात आत्मनिर्माण की प्रक्रिया उसके बाद प्रारंभ होती है। आत्म समीक्षा का कार्य बहुत ही दुरूह है। मनुष्य दूसरों की दुष्प्रवृत्तियों को देखकर घृणा करता है। ऐसी कुप्रवृत्तियां स्वयं में भी होती हैं। प्राणी अपने साथ अच्छा आचरण चाहता है, किंतु अन्य के साथ वैसा ही व्यवहार नहीं करता है। व्यक्ति स्वयं सम्मानित होना चाहता है, किंतु दूसरे को वही सम्मान देना नहीं चाहता है। पर निंदा में रुचि लेकर चटकारे करता है, स्वयं के खोट सुनने को तैयार ही नहीं। इसीलिए समाज में संघर्ष है, उत्पीड़न है, परपीड़न है। प्राणी जब आत्म समीक्षा कर इन गुण दोषों को समझने लगता है, उसी क्षण वो महामानव के प्रथम सोपान पर चढ़ मानवतावादी बन जाता है। उसके कान बाहर की न सुन अंदर की सुनने लगते हैं, आंखें अंतर्मुखी हो आंतरिक दर्शन करने लगती हैं। अपने दोषों को, कमियों को ढूंढ निकालने में जो संघर्ष करना पड़ता है, उसे आत्म सुधार की संज्ञा दी जाती है। मनीषियों ने इसी प्रक्रिया को महाभारत कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को अपने अंदर विद्यमान इन्हीं शत्रुओं को मारने का उपदेश दिया था। पर उपदेश कुशल बहुतेरे व्यक्तित्वों के कारण समाज घुट घुट कर मर रहा है। कथनी करनी का अंतर सर्वत्र हाहाकार मचाए है। इसके लिए आवश्यक है मानव सत्संग स्वाध्याय से अशिष्टता की जगह शिष्टता, कटुता के स्थान पर मधुरिमा को आत्मसात करे, क्योंकि दूरदर्शिता, विवेकशीलता, जागरूकता, तन्मयता, नियमितता, श्रमशीलता, ईमानदारी, संयमशीलता, मितव्ययता आदि सद्प्रवृत्तियों को आत्मसात कर साकार करने वाला व्यक्ति ही कल्प वृक्ष कहा जा सकता है। जिसकी छाँव में बैठा समाज भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टियों से ऊंचा उठता है, जहां चंचलता की जगह कठोर जीवनचर्या को ही वरीयता होती है। आत्मा की परिधि असीमित होकर कण कण में व्याप्त सत्ता के दर्शन कर वसुधैव कुटुंबकम विश्व परिवार की भावना से उत्प्रोत होती है। जहां मृत्यु का भय नहीं, प्रेम की सलिल गंगा प्रवाहित होती है। जहां लोक मंगल की भावना विहस्ती है, किलोल करती है, यही आत्मा का सच्चा उत्कर्ष

0: कहा जा सकता है।
1: अभी आपने चिंतन सुना, ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। लीजिए अब प्रस्तुत है कृषि चर्चा।
2: किसान भाइयों, आज सबसे पहले आप सारे किसान भाइयों को नमस्कार। हम आज एक बहुत ही उपयोगी विषय पे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जो हमारा विषय है मिलेट्स। अब मैं मिलेट्स की बात कहूँ कि मिलेट्स के बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं जिस पे हम चर्चा कर सकते हैं। उसका पोषण, मिलेट्स की प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, खनिज प्रचुर मात्रा में होती है, इसलिए ये बहुत ही अच्छा भोजन होता है। जब भी हम अपने भोजन में मिलेट्स को शामिल करते हैं तो हमारी पाचन प्रक्रिया और शरीर की इम्यूनिटी भी बहुत बढ़ती है। आज के समय में देखेंगे तो मिलेट्स एक ग्लूटीन मुक्त पदार्थ होता है, खाद्य पदार्थ होता है, और अन्य जो हम पदार्थ रोज़ लेते हैं उसमें ग्लूटीन होता है, जो काफ़ी समस्याओं को जनरेट करता है। तो इसके लिए हमारा उपयोग हो सकता है। हमारी जो कई स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जैसे मधुमेह है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स है, और डाइजेशन की प्रॉब्लम्स है, या मिनरल की कमी है, ये मिलेट्स के उपयोग से हम इसको कम कर सकते हैं। मिलेट्स खुद ही एक जलवायु या पर्यावरण अनुकूल अन्न है, जिसमें हमको कम से कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, कम से कम उर्वरक की ज़रूरत पड़ती है। अगर ठंडा का मौसम है तो भी हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर एक्सट्रीम गर्मी होती है तो भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मीन्स ये एक हमारे लिए बहुत ही उपयोगी क्रॉप होता है। किसान भाइयों के लिए तो और भी उपयोगी होता है। इसमें कम से कम पानी, कम से कम खाद, मतलब कम से कम लागत में एक अच्छा उत्पादन होता है, जिसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी हम मिलेट्स को मार्केट में भी ले आ सकते हैं, तो मिलेट्स के अन्न को लेके हम प्रसंस्करण करके अपने घर पे ही उसको अलग अलग चीज़ों में ग्रेडिंग कर सकते हैं। उसके ऊपर हम घर पे ही अपनी बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके कई अच्छे फूड प्रोडक्ट जो मार्केट में अभी बहुत डिमांडिंग है, जिसको हर आदमी चाहता है कि मिलेट की इतनी उपयोगिता है, तो वो फूड प्रोडक्ट हमको भी मिले। जिसे अभी हम लोगों ने कुछ बहुत ही इनोवेटिव फूड प्रोडक्ट्स डेवलप किए, जिसमें हेल्थ मिक्सर है, आपकी लस्सी मिलेट बेस्ड है, मिलेट की बेवरेज है, मिलेट की दलिया है, मिलेट की एनर्जी बार है, और स्प्रेड है, और मिलेट के पाउडर पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट्स वो हैं जो मार्केट में जो ही आपके जाते हैं वहाँ पे जाके बहुत उपयोगी हो सकता है। और ये हमारे क्योंकि स्वास्थ्यवर्धक है, पोषण भी है, तो हर आदमी अपने आज के समय में स्वास्थ्य को ध्यान रखता है, तो हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में ले जा सकते हैं। बट नेचुरल अगर हम प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाते हैं तो हमारे लिए एक आय का एक अच्छा साधन भी है। और किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के समय में जो इसकी पहले जो प्रॉब्लम्स थी कि मिलेट्स को की प्रसंस्करण मशीनें नहीं थी, मिलेट के कई प्रोडक्ट पे रिसर्च नहीं हुआ था, लेकिन अभी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो चुका है। आप किसी मिलेट्स पे काम करने वाले किसी विशेषज्ञ से भी आप मिल सकते हैं, हमसे भी मिल सकते हैं। तो आपके जो प्रसंस्करण कैसे कर सकते हैं, मशीनें कहाँ पर अवेलेबल होगी, और घर पर आप किस तरह से काम कर सकते हैं, या आप बिज़नेस को किस तरह से इसके इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इस सारे तत्वों से रिलेटेड जानकारियाँ उपलब्ध हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार है, उन्होंने भी कई मिलेट से रिलेटेड सरकारी नीतियाँ अभी बनाई हैं, जिसमें आपकी राष्ट्रीय मिलेट मिशन्स हैं जो किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। कृषि योजना और सब्सिडी की बात की जा रही है, फसल बीमा योजना की भी बात की जा रही है, उसमें खाद्य सुरक्षा और समर्थन मूल्य की बात करी जाती है। ये खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा है, चूँकि इसमें सारे पोषण तत्व है एक ही जगह मिल रहे हैं, तो उसमें भी उपयोगी हो सकता है। तो ये जो हमारी कई चीज़ें हैं, हमारे उपयोग की कई चीज़ें हैं जो अकेले मिलेट्स दे सकती है। तो मिलेट्स को हम अपने भोजन के लिए, मिलेट्स को अपने व्यवसाय के लिए, मिलेट को अपने आय उपार्जन के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। अभी प्रसंस्करण की हम बात करते हैं, जैसे हम घर पे दूध से दही बना लेते हैं, कितना आसान होता है, वैसे हम मिलेट्स को थोड़ा सा प्रसंस्करण विधि कर लें, उसकी सफाई कर दें, छटाई कर दें, उसको इनफेक्ट हम अंकुरित कर लें, उसको हम पॉपिंग कर लें, उसको थोड़ा सा गर्म कर लें, या उसको हम फ्लेकिंग बना लें। ये छोटे छोटे ऐसे विधि हैं जो आप अपने घर पे कर सकते हैं, और इस विधि को हम लोगों ने डेवलप किया है, तो आप उसको और भी उपयोगी कर सकते हैं, और जो इसका लाभ है उस लाभ को और भी बड़ा बना सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी है, जो ही प्रसंस्करण करते हैं आप, ये पोषण और गुणवत्ता में इसकी वृद्धि हो जाती है, और इसका उपयोग कई और तरह के खाद्य पदार्थ के निर्माण में हम कर सकते हैं। और जो इससे रिलेटेड प्रसंस्करण की मशीनें भी हैं, वो भी दुर्लभ नहीं है, अभी तो हर जगह आपके अवेलेबल हो गए, जिसमें आपकी क्लीनिंग मशीन, सफाई वाली मशीन है, उसको छिलके निकालने वाली मशीन है, उसको मिलिंग करने वाली, पिसाई वाली मशीनें हैं, पॉपिंग मशीनें हैं, फ्लेक्स बनाने वाली मशीनें हैं, उसको

0: के समय में हम बड़े अमाउंट में अंकुरण करने वाली मशीनें हैं या एक्सट्रूजन मशीनें हैं जैसे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, या किण्वन करने वाली मशीनें हैं जिसमें आप फर्मेंट करते हो, ये सारे घरेलू स्तर पे हम ये हमको मिल सकता है, बशर्ते कि हमको थोड़ा सा इसके पीछे जाना है और इतने उपयोग को हम अपना पाया है। धन्यवाद किसान भाइयों।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, ये आकाशवाणी भोपाल है। अब समय है अंतराल का।
2: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।

अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वायदा किया है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन डेर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक भी करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के साथ भी बैठक करेंगे। कल सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठकें की थी। यमुना नदी के जीर्णोद्धार के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये फैसला यमुना को स्वच्छ करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर कुछ ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह का वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि देश में टेलीग्राम ऐप को क्यों फिलहाल बंद किया गया है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। फ्रांस की ओर से किलियन मबापे ने 2 गोल किए और वे अब 58 गोल के साथ अपने देश के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। एक अन्य गोल ब्रैडली बारकोला ने दागा। सेनेगल के लिए एकमात्र गोल मबाय ने किया। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल और उत्तर प्रदेश में भी तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। श्रोताओं, अब मैं आपको अवगत करा दूं आज की सभाओं में प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों से। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनिएगा आपका चहेता कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। 8:30 फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा प्रस्तुत किया जाएगा। 9:15 पर सुगम संगीत, इसके आज कलाकार होंगे इसमें राजश्री बर्वे। 9:30 प्रदेश की सुर्खियों में क्षेत्रीय समाचार एकांश। 10:00 जिले की चिट्ठी और 10:05 पर महिला संसार कार्यक्रम।

10:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में आज आप सुनिएगा एस के दास गुप्ता का सरोद वादन, राग होगा ललित। 11 बजे फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने। 12 बजे आपकी फरमाइश कार्यक्रम और 12:30 बजे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक जंग लगी तलवार का 12वां भाग। दोपहर 1 बजे महिला कार्यक्रम, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की। 1:30 पर लोक संगीत और 1:45 पर सुगम संगीत की प्रस्तुति होगी। योगदान रहेगा आकाशवाणी ग्वालियर का। दो बजकर 30 मिनट पर कार्यक्रम आपकी फरमाइश, युवा श्रोताओं का मनचाहा कार्यक्रम युवावाणी आप सुनेगा शाम 5:02 पर। योगदान रहेगा आकाशवाणी ग्वालियर का। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। 6:30 बजे ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और नीदरलैंड के मध्य लीड्स में खेले जा रहे महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल।

रात 8 बजे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष में आप सुनिएगा नक्सलवाद। 9:30 बजे ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और नीदरलैंड के मध्य लीड्स में खेले जा रहे क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल समापन तक। श्रोताओं, ये थे आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

श्रोताओं, कुछ खास कार्यक्रम हम आपको पुनः बता दें। आज शाम 7:21 पर ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और नीदरलैंड के मध्य लीड्स में खेले जा रहे महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल रात 8 बजे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष नक्सलवाद आप ये कार्यक्रम सुनिएगा। रात्रि 9:30 ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और नीदरलैंड के मध्य लीड्स में खेले जा रहे महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल समापन तक। श्रोताओं, ये थे आज की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रम।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार निजी संस्थाओं को प्रोत्साहित करेगी और प्रदेश में अगले सप्ताह होगी मानसून की दस्तक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 12 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और कूनो अभयारण्य जाएंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 18 जून को बैतूल में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी और ओंकारेश्वर एवं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन व आरती में शामिल होंगी। 19 जून को अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भी राष्ट्रपति सहभागिता करेंगी। वे 20 जून को शाम को करीब 6 बजे जबलपुर पहुंचेंगी। इस दौरान वे 2 प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगी। श्रीमती मुर्मू 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शहर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित मुख्य योग कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया, जिसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वैश्विक बायोफूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम अभियान शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है, इसलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की भी चर्चा की। वहीं फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कीं। उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात कर व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा और प्रौद्योगिकी समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, जापान के प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग से भी मुलाकात की। राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए निजी संस्थाओं को प्रोत्साहित करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट बैठक में इसके लिए एक समिति बनाने का निर्णय लिया गया है। इस बैठक में विकास और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए 24,000 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर की गई है। बैठक के बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए परोपकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित किए जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसी संस्थाओं को अनुदान दिया जाएगा।
1: वर्तमान में कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो 20 बिस्तर से ऊपर के हैं, उनमें डॉक्टरों की व स्टाफ की कमी देखी गई है। जो विशेषज्ञ डॉक्टर मिलना चाहिए वो उपलब्धता नहीं है। तो इस बार एक निर्णय लिया गया है कि 3 जिलों में रीवा, देवास और एक और जिला हो रहा है, जिसमें तीनों जिले के अंदर यह 8 सामुदायिक केंद्रों को निजी तौर पर संचालन करने के लिए दिया जाएगा। यह एक नई नीति ला करके 8 पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्वीकृति दी गई है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में खरीफ 2026 सीजन के लिए देशभर में की गई तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि अलनिनो की संभावित स्थिति को देखते हुए उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष जोर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने देशभर में पराली प्रबंधन के लिए जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी।
2: सब जानते हैं कि पराली जलाने के कारण न केवल पर्यावरण बिगड़ता है बल्कि धरती माता का स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। मित्र कीट मारे जाते हैं, धरती की उर्वरा शक्ति घटती है।

0: जरूरी है और प्रदूषण से होने वाले नुकसान से हम भलीभांति वाकिफ हैं। इस बार तय किया कि जब धान की बुआई हो उस समय ही पराली ना जले, इसकी योजना बनानी चाहिए। कई कदम हम उठाने वाले।
1: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पूर्व मुख्यमंत्री कैलाशनाथ काटजू की जयंती पर विधानसभा में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री उज्जैन जाएंगे, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि 21 जून को होने वाली नीट राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जिसके लिए सभी तैयारियां समय से पहले पूरी कर ली जाएं। कल मंत्रालय में नीट परीक्षा की तैयारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि परीक्षा के आयोजन में किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी या त्रुटि न रहे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि परीक्षा कराने में संलग्न सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी मुस्तैदी से अपने कर्तव्यों का पालन करें। ये परीक्षा प्रदेश के 30 जिलों के 283 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न कराई जाएगी। विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से प्रारंभ होगा। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ये सत्र 24 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। 5 दिवसीय इस सत्र के दौरान सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। इसके अलावा विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों, नीतिगत निर्णयों और विकास कार्यों से संबंधित मुद्दों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। अब रुख करते हैं खेलों की खबरों का। भारत हॉकी महिला नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कल न्यूजीलैंड में हुए क्वार्टर फाइनल में भारत ने जापान को 2-1 से हरा दिया। भारत के लिए कप्तान सलीमा टेटे और लालेर रेमसियामी ने गोल दागे। जापान की ओर से एकमात्र गोल हिरामित्सु ए ने किया। भारत पूल ए में इस समय शीर्ष पर बना हुआ है, जिसमें उसका अगला मुकाबला उरुग्वे से कल सुबह 4:15 बजे होगा। वहीं T20 महिला विश्व कप में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में 7:00 बजे से होगा। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक अब अगले सप्ताह होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, भिंड, मुरैना, इंदौर और उज्जैन सहित प्रदेश के 34 जिलों में प्री मानसून बारिश की संभावना जताई है। वहीं भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर, शहडोल जिलों में गर्मी का असर बना रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में कल मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एवं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के द्वारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग आत्मनिर्भरता विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती पर नर्मदापुरम और जबलपुर जिले में आज शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आगरमालवा जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक जिले के जलाशयों में मत्स्याखेट पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। झाबुआ कलेक्टर ने कल राणापुर में जनसुनवाई में 54 आवेदनों का समय पर निराकरण करने के निर्देश दिए। जबलपुर नगर निगम में पदस्थ प्रभारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सर्च वारंट प्राप्त कर उनके ठिकानों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नर्मदापुरम के पचमढ़ी में 26 जुलाई को 8वीं पचमढ़ी मानसून मैराथन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 5, 10, 21 और 42 किलोमीटर की दौड़ होंगी। खंडवा में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय मास्टर वॉलंटियर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुना जिले में पॉली हाउस निर्माण एवं गुलाब तथा अन्य फूलों की व्यावसायिक खेती पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम कल कलेक्ट्रेट परिसर गुना में आयोजित किया जाएगा। ग्वालियर में 2 दिवसीय वीरांगना बलिदान मेला कल शहीद ज्योति यात्रा के साथ प्रारंभ होगा। मंडला और डिंडौरी में समान नागरिक संहिता की जन परामर्श की बैठक कल आयोजित की गई और शाजापुर कलेक्टर रिजू बाफना ने कल 41 प्रतिभावान बालिकाओं को 2,05,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार निजी संस्थाओं को प्रोत्साहित करेगी और प्रदेश में अगले सप्ताह होगी मानसून की दस्तक। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: हम जन जन तक सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। प्रस्तुत है आपका चहेता कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।

यह दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। मंगल कामनाओं के साथ मैं विवेक कहार स्वागत करता हूं आप सभी श्रोताओं का दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल में। श्रोताओं, क्या कभी आपने सोचा है कि दिन भर की भागदौड़ के बाद भी हम क्यों थका हुआ महसूस करते हैं? हम सोचते हैं आज हमने बहुत काम किया है, लेकिन सच ये है कि हम काम तो करते हैं पर एक्टिव नहीं रहते। आज की लाइफ स्टाइल में हम घंटों कुर्सी पर बैठे रहते हैं, ऑफिस में, घर में, यहाँ तक कि खाली वक्त में भी मोबाइल के साथ। लेकिन क्या आप जानते हैं, शरीर को जितना आराम चाहिए उतना मूवमेंट भी ज़रूरी है। एक्टिव रहना सिर्फ फिट रहने या फिर उसको दिखाने के लिए नहीं होता। यह आपके दिल को मजबूत करता है, दिमाग को शांत रखता है और आपकी नींद को बेहतर बनाता है। लेकिन हम छोटी छोटी आदतों से बदलाव ला सकते हैं और फिट रह सकते हैं और एक्टिव रह सकते हैं। जैसे रोज 20 से 30 मिनट की वॉक जरूर कीजिए, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल कीजिए या फिर सुबह थोड़ी सी स्ट्रेचिंग जरूर कीजिए। याद रखिए, जो शरीर चलता है वही लंबे वक्त तक साथ देता है। तो आज से खुद से एक वादा कीजिए, थोड़ा और चलेंगे, थोड़ा कम बैठेंगे और अपनी जिंदगी को ज्यादा एक्टिव बनाएंगे, क्योंकि एक्टिव रहना ही असली हेल्दी लाइफ की शुरुआत है। श्रोताओं, आपने अपने रेडियो सेट्स पर ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी का भोपाल केंद्र और आप विवेक के साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। इसी बातचीत के साथ चलिए कार्यक्रम में शामिल करते हैं आज के पहले गीत को, जिसे हमने लिया है फिल्म लुटेरा से। आवाज़ है मोनाली ठाकुर की

विवेक कहार के साथ सुन रहे हैं आप दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। देश विदेश, राज्य, शहर हो या गांव, सबकी महत्वपूर्ण खबरें आपके लिए समाचार पत्रों से। नीट री टेस्ट 21 जून को, मैसेज एडिटिंग फीचर 30 जून तक बंद। नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा से पहले सरकार ने देश में टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। देश में संभवतः पहली बार किसी ऐप को पेपर लीक की आशंका के कारण बैन किया गया है। ये रोक 22 जून 2026 तक लागू रहेगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ये कदम उठाया है। 80 वर्ष पूरे होने के बाद ही मिलेगी 20% अतिरिक्त पेंशन। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों को 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ 80 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद ही मिलेगा। वित्त विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर लंबे समय से बने भ्रम को दूर कर दिया है। नियम बदले, अब डॉक्टर की पर्ची दिखाने पर ही मिलेगा कफ सिरप। केंद्र सरकार ने दवाओं की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खांसी के सिरप को लेकर नए नियम जारी किए हैं। इसके मुताबिक अब देश में कहीं भी कोई भी कफ सिरप बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं बिकेगा। और वहीं मॉनसून ने चिंता बढ़ाई, पश्चिमी तट पर अटका हुआ है और अभी 7 से 8 दिन और लगेंगे। प्री मॉनसून गतिविधियां जारी हैं। मंगलवार को भोपाल में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली, कई इलाकों में हल्की बारिश भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में एंट्री करने वाली मॉनसूनी हवाएं अभी जस की तस बनी हुई हैं, यानी उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। संभव है कि मॉनसून और देरी से आए, अब तक इसके 20 जून के आसपास आने की संभावना जताई जा रही है। और वहीं सतपुड़ा की वादियों में दौड़ेंगे 1500 एथलीट। सतपुड़ा की वादियों में आयोजित होने वाली 8वीं पचमढ़ी मॉनसून मैराथन 26 जुलाई को होगी। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के सहयोग से आयोजित ये मैराथन अब विश्व एथलेटिक्स और AIMS से प्रमाणित इवेंट बन चुकी है। और वहीं आज मनाई जाएगी महाराणा प्रताप जयंती, जगह जगह निकलेंगी शौर्य यात्राएं। स्वाभिमान, साहस, राष्ट्रभक्ति के प्रतीक महाराणा प्रताप जयंती बुधवार को मनाई जाएगी। उनका त्याग, बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी स्मृतियों को संजोने के लिए महाराणा प्रताप के नाम से कई यादें हैं जो लोगों को प्रेरणा देती हैं। बुधवार को जयंती के मौके पर शहर में जगह जगह कार्यक्रम होंगे, शौर्य यात्राएं निकलेंगी और महाराणा प्रताप के पराक्रम को याद किया जाएगा। श्रोताओं, ये थी समाचार पत्रों से सुर्खियां आप सभी के लिए। चलिए कार्यक्रम में शामिल करते हैं अब अगले गीत को।

श्रोताओं, ज्ञान सूचना जानकारी और मनोरंजन के संग आप लेफ्ट रेडियो सेट्स पर ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी का भोपाल केंद्र और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज बहुत कुछ है खास, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे अगर कोई विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा नहीं दे पाया है और अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो रुक जाना नहीं योजना के ज़रिए वो किस तरीके से आगे बढ़ सकता है, और साथ ही हम बताएंगे कि योग द्वारा अपनी नींद को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं, और होगी जानकारी मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के 15वें स्थापना दिवस पर होने वाले आयोजनों के बारे में।

0: श्रोताओं, ऐसे बहुत सारे छात्र होते हैं जो किसी न किसी वजह से अपनी परीक्षा में रुक जाते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इस वजह से उनका पूरा साल बर्बाद होता है। ऐसी एक योजना है मध्य प्रदेश में, रुक जाना नहीं परीक्षा योजना, के जरिए जो छात्र पीछे रह जाते हैं वो कैसे परीक्षा दे सकते हैं, और इसके बारे में हमने और अधिक विस्तृत बातचीत की है मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के सहायक निदेशक राम वैद्य से।
1: देखिए, रुक जाना नहीं योजना मैं तो कहूँगा प्रदेश की नहीं, भारतवर्ष की सबसे अच्छी योजना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, हम भी जानते हैं, किसी भी कारण से यदि वो फेल हो गए, कई कारण हो सकते हैं, बच्चे की तबीयत खराब हो गई, कहीं शादी में चला गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी पूरी की पूरी साल खराब होती थी जी। तो 2016 में राज्य ओपन स्कूल शिक्षा बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि हम बच्चे को सेकेंड एग्जाम का ऑप्शन देंगे। वर्तमान में आप देख रहे हैं जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसने भी सेकंड एग्जाम का ऑप्शन दिया हुआ है, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने भी उसको फॉलो किया है। हम 2016 से बात कर रहे थे। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा उन बच्चों का होता है जो ऐसे हैं जो किसी कारण से फेल हो गए, उन्हें तत्काल में हम अवसर देते हैं और 2016 से ये परीक्षा करा रहे हैं। हमें गर्व है कहते हुए कि हमने आज तक 31 जुलाई के बाद रिजल्ट नहीं दिया। इससे फायदा ये होता है कि बच्चे को अगली क्लास में एडमिशन लेना है वो अगली क्लास में एडमिशन मिल जाता है, 12वीं पास किया हुआ है तो कॉलेज में मिल जाता है, 10वीं पास किया हुआ है तो 11वीं में मिल जाता है, ये उसको फायदा होता है।
2: एनरोलमेंट का प्रोसीजर क्या होता है सर?
1: एनरोलमेंट हमारे MP ऑनलाइन में बच्चा फॉर्म भर सकता है, खुद भी भर सकता है अपने लॉगिन ID से, उसके लिए मिल जाती है और वो फीस पे कर सकता है। तो MP ऑनलाइन के थ्रू जाने से ज़्यादा फायदा होता है, वो प्रॉपर गाइड दे करके नियर बाई जो है, और उसमें 25 रुपीज केवल पोर्टल शुल्क होता है, बहुत ज़्यादा शुल्क नहीं है
2: जी। अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चों में एक धारणा होती है, अभिभावक में भी धारणा होती है कि अगर बच्चा बाद में एग्ज़ाम दे रहा है तो कहीं उसकी जो मार्कशीट है कहीं वो अलग से तो नहीं आएगी या फिर दो उसमें तो नहीं आएगी, तो ये आप कैसे मैनेज करते हैं?
1: नहीं, ये तो जो हमारा सिस्टम है, हम जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं सेकेंड डे ही ई मार्कशीट उसको प्रोवाइड हो जाती है।
2: अच्छा।
1: और ई मार्कशीट से वो कहीं पर भी एडमिशन ले सकता है। बाद में जो हमारा फाइनल डाटा चेक होने के पश्चात में लगभग 15 से 20 दिन के भीतर, 1 महीने के भीतर हम मार्कशीट जहाँ से परीक्षा दी है वहाँ पर प्रॉपर मार्कशीट वहाँ पर पहुँचा देते हैं। और दूसरी चीज़ है कि इसे कॉलेज में एडमिशन लेना है, कहीं और लेना है, तो जो भी और उसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगता है, तो यहाँ पर जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है वो ऑनलाइन निकल जाता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जैसे हम कहते हैं, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन वो निकाल करके और वहाँ जमा कर सकता है, तो सेकंड डे भी वो कहीं पर भी अप्लाई कर सकता है।
2: ये मतलब उसके भविष्य को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए उसको आगे बढ़ने में मदद करता है।
1: जी
2: सर, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है खासतौर पर देखा जाए तो? मतलब मान के चलिए किसी बच्चे ने 2 एग्ज़ाम में दिया हुआ है या किसी 2 विषय में दिया हुआ है या 3 विषय में दिया हुआ है, तो उसका प्रोसेस क्या होता है?
1: प्रोसेस ये होता है कि जो उसने पहले से पास किए हुए हैं उनको हम क्रेडिट देते हैं। क्रेडिट का मतलब है कि जैसे 3-5 विषय थे उसके हायर सेकेंडरी में, 3 विषय उसने पास कर लिए, तो 3 विषयों के वो अंक मैं प्रैक्टिकल के हम यहाँ उठा लेते हैं और उसे केवल 2 विषयों में बैठना पड़ता है, वो 2 विषय में बैठ करके उत्तीर्ण हो जाता है, तो बोर्ड की मार्कशीट उसे हमें आपस जमा करनी पड़ती है और ओपन स्कूल की मार्कशीट उसको दे देते हैं। इसी प्रकार से जो आपने पूछा कि पैटर्न क्या होता है, पैटर्न वही होता है जो माध्यमिक शिक्षा मंडल का, वही सिलेबस है, सेम पैटर्न होता है और सेम परीक्षा होती है,
2: तो विशेष तरीके से कुछ करने की जरूरत नहीं है?
1: बिल्कुल नहीं, जो रेगुलर जो जहां से रेगुलर या प्राइवेट उसने 10वीं 12वीं में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं वही सब्जेक्ट हम देते हैं। और यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि केवल माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल से अनुत्तीर्ण विद्यार्थी ही इसके लिए पात्र होते हैं, दूसरे पात्र नहीं होते।
2: और कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण पात्रताएं हैं जो एक छात्र को रखनी होंगी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए या फिर एग्ज़ाम में बैठने के लिए?
1: केवल पात्रता यही है कि उच्च में अनुत्तीर्ण हुआ हो और कोई नकल का प्रकरण उसने ना बनाया हो जिसके कारण वो डिवार किया गया हो, केवल ये है। तो सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयरली ऐसे केस होते हैं कि बच्चे ने नकल की कोशिश की, उस पर FIR लाच हो गई, तो फिर उसे हम अलाउ नहीं करेंगे।
2: अंतिम प्रश्न है सर मेरा, एक तो ऑनलाइन के माध्यम यानी MP ऑनलाइन के माध्यम से आप तक पहुंच सकते हैं, इसके अलावा और क्या रास्ते हैं आप तक पहुंचने के लिए यदि कोई बच्चा आप तक आना चाहे?
1: 24/7 हमारा लैंडलाइन नंबर है, भोपाल का कोड लगता है, उसके बाद में है 2552106, अगेन 255-2106, ये हमारा टोल फ्री नंबर है या हेल्पलाइन नंबर है। सामान्य तौर पर यह 10:30 बजे से 5:30 बजे तक काम करता है और परीक्षा के समय या मॉर्निंग से इवनिंग तक

0: काम करता है। बच्चा स्वयं चाहे तो फॉर्म भर सकते हैं। और रुक जाना नहीं कि वीडियो यूट्यूब पर हमारे यहाँ पड़े हुए हैं, हमारी वेबसाइट पर जाएं, वेबसाइट पर लिंक मिल जाती है, लिंक के माध्यम से उनका भी लाभ बच्चे उठा सकते हैं।
1: रुक जाना नहीं योजना के बारे में ये बातचीत आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के सहायक निदेशक राम वैद्य से। श्रोता, इस जानकारी के साथ ही चलिए कार्यक्रम में शामिल करते हैं अगले गीत को, जिसे हमने लिया है फिल्म चलते चलते से। आवाज़ है अभिजीत की।

0: वीडियो वेव 1593 किलोहर्ट्ज़ डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी ऐप के ऊपर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल और मैं हूं आपके साथ विवेक। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब वक्त है अगली जानकारी का। आज मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय अपना 15वां स्थापना दिवस मना रहा है और आज के दिन स्थापना रंग महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत भी कर रहा है। क्या कुछ होगा इस कार्यक्रम में खास, इसके बारे में हमने अधिक बातचीत की है एमपीएसएसडी के डायरेक्टर संजय श्रीवास्तव से।
1: ये मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय का 15वां स्थापना दिवस है और इस शुभ अवसर पर स्थापना रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये 4 दिन चलेगा आयोजन।
2: अच्छा,
1: इसमें 17 जून से 20 जून तक इसको आयोजित किया जाएगा, जिसमें 17 तारीख को जो नाटक होगा उसका नाम है आले माटी आले राज, जो उसके लिए हमारे पूरे विद्यार्थी 10-12 दिन वहाँ रहे जाके कोरकू जनजाति के साथ बैतूल बेल्ट में, और फिर आके उनके लोक कलाकार यहाँ आके उनको सिखाया। और स्क्रिप्ट नहीं थी इसकी, स्क्रिप्ट भी यहीं बुनी गई पूरी बनी है। तो मतलब पूरा एक नाटक जो हो रहा है कोरकू जनजाति पहली प्रस्तुति है जो आले माटी आले राज, वो पूरा उसका निर्माण अभी पहली बार यहाँ हुआ, पहली बार उसका मंचित हो रहा है। इसके लेखक हैं राम सिंह पटेल और निर्देशक हैं कन्हैया लाल कैथवास जी। 18 जून को रानी दाई नामक नाटक प्रस्तुत मंचित की जाएगी, जिसके लेखक हैं नंद किशोर तिवारी और निर्देशक हैं डॉक्टर योगेंद्र चौबे। इसी कड़ी में तीसरी प्रस्तुति है महाकवि शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिक और इसके निर्देशक हैं टीकम जोशी। और अंतिम समापन प्रस्तुति होगी गुड़िया की शादी
2: जी,
1: जिसकी लेखिका है समता सागर जी और निर्देशक है संजय श्रीवास्तव। ये सारी प्रस्तुतियाँ विद्यार्थियों की हैं हमारे।
2: अच्छा,
1: जो हमारे फर्स्ट ईयर के हैं वो उनकी पहली प्रस्तुति, क्योंकि सेकेंड ईयर जाने वाला पास आउट होने वाला, तो उनकी 2 प्रस्तुतियाँ रखी हैं इसमें, रानी दाई और मृच्छकटिक, और 1 प्रस्तुति जो अंतिम है वो हमारे थिएटर लैब वाले बच्चों की है।
0: सर, ये जो प्रस्तुतियाँ होंगी कहाँ होंगी, इसका समय

0: क्या रहेगा, और प्रवेश को लेके क्या कुछ आपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं उसके बारे में हम जानना चाहेंगे।
1: ये पूरा आयोजन रविंद्र भवन के अंजनी सभागार में आयोजित किया जाएगा,
0: जी
1: रोज़ शाम 7 बजे से। ये निःशुल्क है, आप आएँ, अपने परिवार वालों को लाएँ, अपने बच्चों को, अपने मित्रों को लेके आएँ, और ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी, उनका हौसला अफजाई करें, उस महोत्सव का भागीदार बन के आप हमारी गरिमा बढ़ाएँ।
0: श्रोता, MPSSD के स्थापना दिवस के बारे में आप ये जानकारी सुन रहे थे MPSSD के डायरेक्टर संजय श्रीवास्तव से।

0: श्रोताओं, इसी गीत के बाद अब वक्त है अगली जानकारी का। आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी में अच्छी नींद का होना बहुत ज़रूरी है। एंजाइटी और काफ़ी ज़्यादा वर्क प्रेशर के बाद हमारी जो नींद है वो कहीं ना कहीं खो चुकी है। और अच्छी नींद कैसे हम योग द्वारा पा सकते हैं, यानी योगा के कुछ आसन होते हैं और कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं जिसको हम करके अच्छी नींद पा सकते हैं, और इसी विषय के ऊपर हम आपको देंगे जानकारी। और इस बारे में हमने बातचीत की है योगा एक्सपर्ट विजय कुमार से।
1: देखिए, वर्तमान समय में जिस प्रकार लोगों की दिनचर्या है, जीवन यापन के लिए भाग दौड़ बहुत हो गया है और खान पान की अव्यस्तता बहुत ज़्यादा है, इसके साथ में तनाव सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो सबसे पहले तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव नींद पर होता है। यदि व्यक्ति को कोई टेंशन है तो उसे बिल्कुल रात में नींद नहीं आती। नींद को बेहतर बनाने में सबसे महत्वपूर्ण जो एक योग का एक अंग है, दैट इज़ प्राणायाम, है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है। और प्राणायाम शुरू होता है प्राणों से, यानी हमारी श्वास की प्रक्रियाओं से। तो यदि हमें नींद को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले हमें अपना ध्यान अपनी सांसों की ओर लगाने की आवश्यकता है। तो व्यक्ति को डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करना चाहिए, जिन्हें एंजाइटी होती है। उसके बाद प्राणायाम में आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं, उज्जायी प्राणायाम कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। और साथ में यदि आसनों की बात करें तो हमें शवासन करना चाहिए। शवासन के माध्यम से हम पूरे शरीर को धीरे धीरे करके एक गहन निद्रा की ओर आगे, गाइडेड मेडिटेशन कहते हैं इसे, तो इसके माध्यम से हम गहरी नींद ले सकते हैं। तो जब भी आप सोने जाएं, आप योग निद्रा का सहारा अवश्य लें। जैसे आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं तो आप स्वयं को कमांड दें कि धीरे धीरे आपके पैर शिथिल होते जा रहे हैं, नींद में जा रहे हैं, आपके दोनों पैर, दोनों हाथ, आपका शरीर का अंग प्रत्यंग। उसके बाद में आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं, मन में आने वाले विचारों को एलिमिनेट करना शुरू करें। भाई ये मन, ये जो विचार चल रहा है, अब धीरे से इस विचार को हटाइए, अगला आ रहा है, अगला हटाइए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप मन को विचारों से मुक्त करेंगे, धीरे धीरे आप गहरी निद्रा में, और बिल्कुल गहरी निद्रा में चले जाएंगे। उसके बाद जब आप उठेंगे तो आप बिल्कुल फ्रेश फील करेंगे।
0: बॉडी साइकिल की बात करते हैं सर। बॉडी साइकिल एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर आज लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो योग के माध्यम से हम उसको कैसे फिर से अपने नियंत्रण में लेकर आएं ताकि एक हम अच्छी लाइफस्टाइल जो है उसको अपना सकें।
1: बॉडी साइकिल के संदर्भ में आपने कहा, बॉडी साइकिल से जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपकी जो दिनचर्या है आपके और आपके शरीर की, वो आजकल बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त है। अब आप एक बात देखिए कि आपकी दिनचर्या आपके आसपास के परिवेश के अनुकूल चल रही है, आपके मन के अनुकूल चल रही है। आपका ऑफिस जाने का रूटीन है तो आपके ब्रेन में फीड है कि हाँ मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो रहा हूँ, हाँ मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, सुबह बिल्कुल भाग दौड़ में नाश्ता करना, दोपहर का लंच प्रॉपर नहीं लेना, देर रात से भोजन करना। तो ये आपका बॉडी साइकिल पूरा डिस्टर्ब है। इसे नियंत्रण में लाने के लिए सबसे पहले तो विचारों पर नियंत्रण लाना है। योग अभ्यास में आप नियमित हल्का योग अभ्यास करें, प्राणायाम करें, और उसके बाद प्राणायाम के बाद आप चिंतन मनन करें, अपनी लाइफ साइकिल को फोकस करें। जो एंजाइटी आती है, जो चीज़ें आपके बस में नहीं है, आप उन्हें छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, एज इट इज चलने दीजिए। तो जब आपकी रूटीन, आपका शरीर, आपका मन जब धीरे धीरे दृढ़ होना शुरू होगा, तब आपके व्यवहार में दृढ़ता आएगी, आपकी दिनचर्या में दृढ़ता आएगी। रूटीन आप जब भी शुरू करें, प्रयास ये करें कि सुबह जल्दी उठ जावें, दैनिक क्रियाओं से निप्रवृत्त होकर आप मॉर्निंग वॉक करना चाहें मॉर्निंग वॉक करें, आप जिम जाना चाहते हैं जिम जाएं, योग अभ्यास करना चाहते हैं सर्वोत्तम है। तो किसी योग गुरु के मार्गदर्शन में आप योग अभ्यास करें। उसके बाद ब्रेकफास्ट अवश्य करें, क्योंकि आज की लाइफ स्टाइल में ब्रेकफास्ट बहुत आवश्यक चीज़ है। दोपहर का भोजन आप कब ले रहे हैं ये आवश्यक, ये इसका भी पता नहीं रहता है। तो आप सुबह 8 से 9 के बीच में अपना नाश्ता ले लें, नाश्ता भी पौष्टिक हो, सुपाच्य हो। उसके बाद नाश्ते के बाद में दोपहर 12 से 1 के बीच में या 1 से 2 तक के आप दोपहर का

0: भोजन ले लीजिए। नाश्ता थोड़ा हैवी हो, भोजन दोपहर का थोड़ा सा कम, रात्रि का भोजन भी हल्का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी डाइट ना लें, और उसके बाद आराम से आप सो सकते हैं। तो जब ये नियमित अभ्यास में आ जाएगा तो आपका बॉडी साइकिल आराम से सुधर जाएगा।
1: बिल्कुल अच्छी नींद के लिए ये उपाय और ये जो योग आसन या फिर जो तरीके आपको बताए गए हैं वो आप अपना सकते हैं, और इस बारे में हमें जानकारी दे रहे थे योग विशेषज्ञ विजय कुमार।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम में अब वक्त चला है आपसे विदा लेने का। तो मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, कुछ ना कुछ काम ज़रूर ऐसा कीजिए जो आपके दिल को सुकून रही, और सबसे ज़रूरी बात वॉक करें और कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में एक्टिव रहने वाली जो एक्टिविटी है वो शामिल करें। इससे आप फिट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे, जब तो मुस्कुराहट अपने आप बनी रहेगी। इसी के साथ कार्यक्रम नमस्कार भोपाल में अब विवेक कहार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, ये आकाशवाणी भोपाल है और अब समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित की जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी।

0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने

0: विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
2: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
3: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे

0: हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
1: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्य की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजादे मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किछाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls on all nations to ensure security.

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त सरिता और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण और मैं पेश कर रही हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। तो दोस्तों आपने देखा ही होगा कि इतिहास पन्नों पर लिख जाता है, लेकिन कुछ नायक ऐसे होते हैं जिनका इतिहास हवाओं में, मिट्टी के कण कण में और हमारे दिलों में लिखा जाता है। आज हम बात कर रहे हैं भारत माँ के उस लाडले सपूत की जिसने महलों के ऐशोआराम को ठुकरा कर

जंगलों की खाक छानना मंजूर किया, लेकिन विदेशी हुकूमत के आगे अपना शीश नहीं झुकाया। जी हाँ दोस्तों, वीर शिरोमणि अदम्य साहस के प्रतीक महाराणा प्रतीक की बात करते हैं आज हम। महाराणा प्रताप की सुनते हैं वीर गाथा।

मध्य प्रदेश के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती बेहद उत्साह, गौरव और सम्मान के साथ मनाई जाती है। मालवा से लेकर बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल तक इस दिन की शौर्य गाथाएं गूंजती हैं।

श्रोताओं, जब हम वीरता की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तलवारें चलती हुई दिखती हैं, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई योद्धा एक ही वार में दुश्मन और उसके घोड़े दोनों के दो टुकड़े कर दे। बात हल्दीघाटी के युद्ध की है। मुगल सेना का एक सेनापति था बहलोल खान। वो 7 फीट लंबा, बेहद क्रूर और लोहे के भारी भरकम कवच से ढका हुआ था। युद्ध के मैदान में उसका सामना हुआ महाराणा प्रताप से। बहलोल खान ने सोचा कि वो राणा को दबा देगा, लेकिन जैसे ही उसने वार किया, राणा ने पैतरा बदला और अपनी बिजली जैसी कड़कती तलवार से बहलोल खान पर ऐसा जोरदार प्रहार किया कि तलवार बहलोल खान के सिर को काटती हुई, उसके बख्तरबंद को चीरती हुई, घोड़े के पेट को पार करके सीधे जमीन में जा धंसी। कहते हैं अकबर की सेना यह देखकर थर थर कांप उठी। ये सिर्फ ताकत नहीं, अपनी मातृभूमि की रक्षा का वो क्रोध था जो राणा की भुजाओं में उतर गया था।

है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन भान शान या

जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड।

वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो घाव तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो घाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, मध्य प्रदेश के इतिहास और संस्कृति में राजपूत शौर्य का हमेशा से गहरा प्रभाव रहा है। यही कारण है कि सूबे में महाराणा प्रताप जयंती, जो आम तौर पर अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 9 मई और हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, एक बड़े उत्सव का रूप ले लेती है।

दोस्तों, महाराणा प्रताप यानी एक शूरवीर की कहानी उसके वफादार साथी के बिना अधूरी है। और राणा का साथी था नीला घोड़ा चेतक। हल्दीघाटी के मैदान में चेतक भी घायल हो चुका था। उसका एक पैर बुरी तरह चोटिल था, लेकिन जब उसने देखा कि उसके स्वामी को मुगल सैनिकों ने घेर लिया है, तो चेतक ने अपनी जान की परवाह नहीं की। राणा को सुरक्षित निकालने के लिए चेतक भी दौड़ पड़ा। रास्ते में आया एक 22 फीट चौड़ा बरसाती नाला। एक घायल घोड़े के लिए इसे पार करना नामुमकिन था। पीछे दुश्मन थे। चेतक ने अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा के लिए एक लंबी छलांग लगाई और उस विशाल नाले को एक बार में पार कर गया।

राणा सुरक्षित थे, लेकिन नाला पार करते ही चेतक ने अपने प्राण दे दिए। उस महायोद्धा की आंखों में भी आंसू आ गए जिसने कभी हारना नहीं सीखा था। आज भी हल्दीघाटी में चेतक की समाधि हमें वफादारी की सबसे बड़ी मिसाल देती है।

श्रोताओं, युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने जंगलों में शरण ली। उनके पास मौका था कि वो अकबर से संधि कर लेते, महलों में ठाट बाट से रहते, लेकिन उन्होंने स्वाभिमान चुना। जंगलों में हालात इतने कड़े थे कि राणा के परिवार और बच्चों को खाने के लिए घास

रोटियां बनानी पड़ती थी। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, स्वाभिमान को बरकरार रखा। उन्होंने एक पल के लिए अकबर को पत्र लिखने की सोची, लेकिन जब बीकानेर के पृथ्वीराज राठौर ने उन्हें पत्र लिखकर याद दिलाया कि राणा क्या अब सूरज बादलों के पीछे छिपेगा, क्या चातक धरती का पानी पिएगा, तो कोई प्रताप की सोई हुई सिंह गर्जना वापस लौट आई। उन्होंने कहा, जब तक सांस है मेवाड़ आजाद रहेगा। यही वो अंश है दोस्तों, जो सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी भूखी ना हो, अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए।

0: महान कवि श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दीघाटी महाकाव्य की ये पंक्तियां रोंगटे खड़े कर देने वाली होती हैं। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। इसी प्रकार एक और प्रसिद्ध मुक्तक, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। श्रोताओं, कार्यक्रम को कुछ समय के लिए विराम देते हैं। ये आकाशवाणी भोपाल है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल,
4: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज है। भारत की धड़कनों को हम सब के बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं, आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।
0: ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर और ग्वालियर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कूनो अभयारण्य भी जाएंगी। फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की हैं। उन्होंने इन देशों के साथ संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बनाने की प्रतिबद्धता को दोहराया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है, इसलिए भारत प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से प्रारंभ होगा। यह सत्र 24 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। इस 5 दिवसीय सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बताया गया है कि इस दौरान सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। इसके साथ ही कुछ विधेयक भी सदन पर प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रदेश में मानसून की आवक टल गई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के अब अगले सप्ताह दस्तक देने की संभावना है। इधर राज्य में प्री मानसून गतिविधियां जारी हैं। आज 34 जिलों में बारिश की संभावना है और ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। ये मैच ब्रिटेन के लीड्स में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

श्रोताओं, आप जानते हैं इस अदम्य साहस का सम्मान उनका सबसे बड़ा दुश्मन भी करता था। सन 1597 में जब चावंड में एक शिकार के दौरान चोट लगने की वजह से महाराणा प्रताप घायल हो गए और फिर ये खबर अकबर तक पहुंची,

दोस्तों, सन 1597 में जब चावंड में एक शिकार के दौरान चोट लगने की वजह से महाराणा प्रताप ने अंतिम सांस ली तो ये खबर अकबर तक पहुंची। उसके आगे हम आपको बताते हैं फिर क्या हुआ। इतिहासकार लिखते हैं कि अकबर उस वक्त अपने दरबार में बैठा था। खबर सुनते ही अकबर की आंखें नम हो गई, उसकी जुबान बंद हो गई। उसने कहा था, प्रताप तुम्हारी जीत हुई क्योंकि तुमने कभी अपनी पगड़ी मेरे पैरों में नहीं रखी, तुम एक सच्चे बादशाह थे। दुश्मन की आंख का वो आंसू महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी विजय गाथा है। महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक विचार है स्वाभिमान का, कभी ना झुकने का। आज उनकी जयंती पर आप की ओर से और हम सभी की ओर से इस महान नायक को शत शत नमन।

श्रोताओं, राज्य सरकार और संस्कृति विभाग द्वारा इस दिन विशेष कार्यक्रम, व्याख्यान और सम्मान समारोह आयोजित किए जाते हैं ताकि युवा पीढ़ी महाराणा प्रताप के त्याग और राष्ट्रभक्ति से प्रेरणा ले सके। सभी शहरों में विशाल शौर्य यात्राएं निकाली जाती हैं। इन यात्राओं में केसरिया झंडे, पारंपरिक वेशभूषा, घोड़ों और तलवारबाजी के प्रदर्शन देखने को मिलता है।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम सुरमई सवेरा को समेटने की अनुमति दीजिए अपनी दोस्त सरिता को। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा, ये आकाशवाणी भोपाल है। और लीजिए अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत में आज हम आपको सुनवाते हैं राजश्री बर्वे के गीत और भजन।

0: राजश्री बर्वे के गाए इस भजन के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है प्रदेश की सुर्खियों में क्षेत्रीय समाचार एकांश।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आपका स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम ऐसे विषय को शामिल करते हैं जो हफ्ते की सुर्खियों में रहता है, और इस हफ्ते की सुर्खियों का विषय है एनडीए सरकार के 12 साल। किसी भी लोकतांत्रिक देश की यात्रा में 12 साल का समय एक ऐसा पड़ाव होता है जहाँ पीछे मुड़कर नीतियों के परिणामों को और आगे देखकर भविष्य के पदचिन्हों को साफ साफ रेखांकित किया जा सकता है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन 12 वर्षों में देश ने अभूतपूर्व नीतिगत बदलाव, कड़े और ऐतिहासिक फैसले, आर्थिक सुधारों की नई बयार और वैश्विक पटल पर भारत की एक नई धमक को देखा है। इस यात्रा के कई आयाम हैं और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह और सुरेश शर्मा जी। सर, आप दोनों ही अतिथियों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
4: जी, बहुत धन्यवाद आपको।
2: तो आइए बिना किसी देरी के इस सार्थक चर्चा की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। पहला सवाल मृगेंद्र जी आपसे है, यूपीआई आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुका है। डिजिटल इंडिया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो इससे आम आदमी की जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं?
3: देखिए, निश्चित रूप से अपना भारत देश बदल रहा है। अगर बात करें, आप बात कर रहे थे पिछले 12 सालों की, तो 12 सालों में देखिए बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। विशेष अपन बात कर रहे हैं कल यूपीआई आप देखें गांव-गांव के पहुंच गया। विशेषकर युवाओं में इतना क्रेज, कोई भी युवा को देख लो, युवा अपने पास नगद पैसे लेके चलता ही नहीं, वो पूरा उस पर सिस्टम है, चाहे उसको रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदनी है या और कोई खरीदारी करनी। इवन आप छोटे जो हमारे छोटे छोटे

0: सब्जी विक्रेता हैं उनके पास भी यूपीआई रहता है और वो जो लोग खरीदने जाते हैं उसी से पेमेंट करते हैं। निश्चित रूप से इससे भ्रष्टाचार में काफ़ी रोक लगी है। साथ ही लोगों को जितना पैसा होता है उतना, अगर मान लीजिए आपका 10 रुपये 12 पैसे हुए तो उतने जाएगा, नहीं आप कहाँ कोई चिल्लर ढूंढने जाएंगे करने। तो निश्चित रूप से इससे एक नई क्रांति आई है और भारत को एक नई दिशा मिली है, नई चुनौतियाँ, और आज का जो हमारा बदलता हुआ भारत है या काफ़ी बदल चुका है पिछले 12 वर्षों में, उसकी ये बहुत बड़ी आवश्यकता थी और उसी का आप परिणाम देखिए कि कितना ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो गया।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा सर। दूसरा सवाल आपसे है सुरेश जी, जनधन, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं की अगर बात करें तो इनके माध्यम से करोड़ों लोगों तक सरकारी मदद पहुंची है। क्या आपको लगता है कि इन योजनाओं ने विशेषकर गरीब तबके की ज़िंदगी सच में बेहतर की है?
2: देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी ने नई सरकार के रूप में कमान संभाली, नई सरकार की कमान संभाली, तब उन्होंने एक संस्मरण सुनाया था कि पहले के प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि 1 रुपया भेजता हूँ तो वो 15 पैसे मिलता है। लेकिन जब जनधन खाते खोले जाने लगे तो उन सब खातों से ये उसी स्वरूप को बदलने की योजना थी और गरीब व्यक्ति को व्यवस्था के साथ जोड़ करके और जो सुविधाएं हैं बैंकिंग प्रणाली की वो देने की एक बड़ी योजना जनधन खातों के रूप में हुई
1: जी।
2: और ये कह सकते हैं कि 55 करोड़ से ज़्यादा बैंक खाते खुले, जिसका आज हम देख रहे हैं कि किसी भी योजना का सीधा खाते में पैसा ट्रांसफ़र हो जाना इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसी प्रकार जो छोटे किसान हैं और जिन किसानों को एक बेस चाहिए, आधार चाहिए, उस आधार के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना इतनी लाभकारी हुई है कि उन्हें इमीडिएट लाभ देना होता है तो उसके माध्यम से सरकार पहले ही उसके लिए सुविधा उपलब्ध कराती है। और आयुष्मान योजना ने तो जो बीमार और गरीब, तो जो गरीब बीमारी के नाम पर अपने घर बार को बेच करके, ज़मीन जायदाद को बेच करके इलाज कराता था, उसको 5 लाख की सुविधा दे करके ऐसी स्थिति में ला के खड़ा कर दिया कि वो सामान्यतया लोगों के बीच में खड़े होने जैसी स्थिति में है। और जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है तो मुझे लगता है ये जो ज़मीन बेचकर इलाज कराने वाली प्रथा थी वो लगभग ख़त्म हो गई थी। इसी प्रकार से जैसे उज्ज्वला योजना है तो उज्ज्वला योजना ने महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। और जो हम जंगल कटते हुए सूखी लकड़ी की प्रतीक्षा करते थे और लाने की व्यवस्थाओं में लगे रहते थे, उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को मुफ्त कनेक्शन के माध्यम से जो लाभ मिला है उसने महिलाओं के जीवन स्तर को बदला, बीमारी से उनको मुक्ति मिली, आंखों से धुआं का जो परेशानी थी उससे मुक्ति मिली। तो मुझे ये लगता है कि जो योजनाएं सरकार की तरफ से लागू की गई हैं वो न केवल ज़मीन पर उतर रही हैं बल्कि भारत के नागरिकों को उसका सीधा लाभ भी मिल रहा है।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। अनुच्छेद 370 हटाना और 3 तलाक कानून को लाना, इन्हें देश की एकता और सामाजिक न्याय से जोड़कर देखा जाता है और देश की एकता और सामाजिक न्याय की दिशा में काफ़ी ऐतिहासिक फैसला माना जाता है। ज़मीन पर इनका असर आपको किस प्रकार से दिखता है?
0: देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर दी। धारा 370 को हटाना एक इतिहास की धारा को जोड़ने वाला निर्णय साबित हुआ है, इतिहास की धारा को मोड़ने वाला निर्णय साबित हुआ है, क्योंकि ये निर्णय करने की हिम्मत किसी में नहीं थी
1: जी।
0: इससे जम्मू कश्मीर में खुशहाली की राह खुली है और देश की एकता व अखंडता का ताना बाना मजबूत हुआ है
1: जी।
0: आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति, इसके तहत आप देखिए जम्मू कश्मीर कभी आप जाते थे तो कहीं यहाँ घटनाएं हो रही, लेकिन जो आतंकवाद की जीरो टॉलरेंस की नीति थी धारा 370 के बाद वो पूरी तरह से लागू हुई और आतंकवाद अब आप कहीं सुनने को नहीं मिलता
1: जी।
0: तो ये जो हुआ है निश्चित रूप से ऐतिहासिक, इसीलिए देखिए आज जम्मू कश्मीर धारा 370 हटाने के बाद विकास की ओर दौड़ लगा रहा है और देश की मूल धारा में जुड़ गया है। नहीं, पहले जम्मू कश्मीर को एक अलग हिस्सा माना जाता था लेकिन अब वो नहीं रहा है
1: जी।
0: इसी तरह आप 3 तलाक की बात करें, 3 तलाक हमारी जो मुस्लिम बहनों के लिए निश्चित रूप से एक ऐसा हथियार है जो कि उनको जीने की राह सिखा रहा, नहीं तो कैसे अपनी ज़िंदगी बिताती थी, किस आतंक को सहती रहती थी, बोल नहीं पाती थी, बोलने की हिम्मत की तो 3 बार तलाक तलाक बोल के उनको घर से हटा दिया जाता था, उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती थी। आज ऐसी हमारी माताओं बहनों के लिए ये जो 3 तलाक है निश्चित रूप से उनकी नई राह दिखे, वो नए नया भारत देख रही हैं, अपने विकास की राह देख रही, उनकी ज़िंदगी सुरक्षित हुई है, उनके खाने पीने की सब व्यवस्थाएँ हो रही। नहीं तो कोई भी आप बताइए, 3 बार तलाक तलाक बोल के उनको भगा दिया जाता घर से, उनको ये नहीं देखते थे कि उनके पास बच्चा है, छोटा बच्चा है या गर्भवती हैं या उनको कोई किसी तरह की बीमारी है, तो उनको वो कोई देखने वाला नहीं था। ऐसा

0: लगता था जैसे अमानवीय कृत्य उनके साथ हो रहा है, लेकिन तीन तलाक ने उनको जो मानवता का मिला है, तो निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री को इसके लिए बहुत धन्यवाद दे रही। आप कभी भी मुस्लिम बहनों के बीच में जाइए, वो कहती हैं तीन तलाक ने हमें नई जिंदगी दी है, कोई सोच ही नहीं सकता था कि हमें भी ऐसा भारत मिल सकता है, ऐसा देश मिल सकता है जहाँ हम अपना सिर उठा के जी सकें, अपने मनमर्जी से काम कर सकें और हमें क्या करना है वो भी कर सकें। यह निश्चित रूप से बहुत बड़ा निर्णय है हमारी मुस्लिम बहनों के लिए।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर। धारा 370 की अगर बात करें तो कश्मीर में इसके हटने के बाद से काफ़ी कुछ बदलाव भी हमने देखे हैं। कश्मीर के युवा विशेषकर से देश की सामाजिक और आर्थिक विकास में भी अपनी सहभागिता कर रहे हैं। खेलों की हम बात करें तो खेल में भी कश्मीर के कई खिलाड़ी निकल कर आए हैं। सुरेश जी, अगला सवाल आपसे है, अगर हम CAA की बात करें, पड़ोसी देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने वाला एक मानवीय कदम बताया जाता है इस कानून को, इस कानून की भावना और उसके संदेश को आप किस प्रकार से देखते हैं?
2: देखिए, CAA कानून जो है जब 2019 में फिर से पारित किया, क्योंकि ये संविधान की भावनाओं के अनुरूप ये कानून बना था
1: जी,
2: और जहाँ तक मुझे जानकारी है तो जो आज़ादी के आंदोलन में शामिल लोग थे उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया था कि जो विभाजन के रूप में पाकिस्तान और बांग्लादेश बन रहे हैं, उस समय पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान के रूप में थे वो, तो उनके नागरिकों को आने वाले समय में प्रताड़ना होगी ही। उसका जो कारण है बहुत व्याख्या में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो आज हम आंकड़े देख रहे हैं कि आज़ादी के समय जो वहाँ के अल्पसंख्यकों के जो एक प्रतिशत था जनसंख्या का, वो निरंतर घटा है, इसी से ये लगा कि वहाँ प्रताड़ना होगी। तो उस समय आज़ादी के आंदोलन में जो शामिल थे बड़े नेता, उन्होंने इस बात को कहा था कि इनके लोग जब भी भारत आएंगे तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। और अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2019 में CAA कानून लाकर जो तीन देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उनके अल्पसंख्यक जो हिंदू, ईसाई और जो बौद्ध और सिख हैं मुख्य रूप से, इनको भारत की नागरिकता दिए जाने में प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा करके ये कानून बनाया। ठीक है, कुछ लोगों ने इसको गलत तरीके से प्रस्तुत करके उसका विरोध करने की कोशिश की, लेकिन असलियत जो ही उनके सामने आई तो उन्होंने अपने विरोध को वापस लिया और एक षड्यंत्र रूपी विरोध जो है CAA का हुआ, जबकि उसका सामाजिक विरोध नहीं हुआ। और आज जब उसका क्रियान्वयन हो रहा है तो लोगों को समझ में आ रहा है। तो जो सामाजिक समरसता के लिए, और भारत एक हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र है, इसलिए इन समुदाय, इस धर्म को मानने वाले समुदायों के साथ कहीं भी प्रताड़ना होगी तो वो स्वाभाविक रूप से भारत की तरफ देखेंगे। और भारत में ऐसे कानून बना करके, हालांकि इस कानून में केवल तीन देशों का उल्लेख है, लेकिन अन्य देशों के जो सनातन मानने वाले या हिंदू समाज को, धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए यहाँ रास्ता खुला है। तो मुझे ये लगता है कि इस प्रकार के कानून जो हैं वो सामाजिक समरसता के लिए, और अन्य राष्ट्रों में प्रताड़ित हो रहे वहाँ के अल्पसंख्यकों को, आप भारत के अल्पसंख्यकों की स्थिति देखिए कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई प्रताड़ना जैसी बातें सामने नहीं आ रही
1: जी।
2: अतिरेक में जरूर कहते हुए सब हमें सुन जाएंगे, लेकिन उनको स्वतंत्रता है और उन्हें सारे मौलिक अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में नहीं है। हमारे देश में सब प्रकार के मानवाधिकार उपयोग करने के लिए अल्पसंख्यकों को छूट है, तो इसलिए इस CAA का बहुत महत्व था। और मोदी सरकार ने जो, जिसको कह सकते हैं ना कि अप्रत्याशित निर्णय लिए हैं, जैसे अभी हम 370 की बात कर रहे थे, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के मैनिफेस्टो में पहले दिन से था। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो कश्मीर में जाकर के निरुद्ध किए गए थे और वहीं जेल में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये वो नियम हैं, वो कानून हैं, तीन तलाक जैसे कह सकते हैं, CAA कह सकते हैं, 370 का हटाना कह सकते हैं, 35A का, तो ये एक ऐतिहासिक और बोल्ड निर्णय है। सरकार का इकबाल है, इसलिए ऐसा करने पर सरकार जो है शक्तिशाली दिखती है, और निश्चित रूप से भारत एक शक्तिशाली सरकार का नेतृत्व करते हुए मोदी जी हैं, और उसका वैश्विक धमक भी उसी प्रकार से दिखाई दे रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि CAA सामाजिक सुधारों के लिए किए जाने वाले अन्य प्रयासों के साथ एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर। सामाजिक सुधारों के तहत किए जाने वाले प्रयासों के साथ साथ केंद्र सरकार ने बीते कुछ दिनों में आर्थिक समृद्धि की तरफ भी कदम बढ़ाए हैं, विशेषकर देश की करोड़ों महिलाओं की अगर हम बात करते हैं, उनको भी आत्मनिर्भर बनाने का काम किया गया है। स्वसहायता समूहों के जरिए महिलाएं अब न सिर्फ कमा रही हैं बल्कि उद्यमी भी बन रही हैं। लखपति दीदी योजना इसमें एक मील का पत्थर साबित हुई है।

0: मृगेन जी आपसे सवाल है कि इसको किस प्रकार से आप देखते हैं?
1: देखिए, लखपति दीदी योजना भारत सरकार की एक पहल है जिसे 15 अगस्त 2023 को शुरू किया गया था।
0: जी,
1: इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की ग्रामीण महिला सदस्यों को अस्थायी रूप से 1 लाख रुपए या उससे अधिक की वार्षिक घरेलू आय अर्जित करने में सक्षम बनाना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि हमारी बहनें पढ़ लिख के अगर घर में हैं, कहीं जा नहीं सकती, स्व सहायता समूह के माध्यम से अपना जीवन यापन की व्यवस्था कर सकें, परिवार की स्थिति कैसे बेहतर बना सकें और अपने लिए कैसे रोजगार कर सकें, इसके लिए योजना बनाई गई थी। इस पे सरकार लोन भी देती है, 1 लाख रुपए तक का लोन देती है और उसमें बहुत सारी छूट भी हैं और ये समूह बनाकर महिलाओं को दिया जाता है। इसमें किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं है, जो भी महिलाएँ चाहें तो इसमें अपना लाभ ले सकती हैं इस योजना के समूह बना के। और इस योजना से महिलाओं के जीवन स्तर में काफ़ी सुधार हो रहा है। आप अगर गांव तरफ कहीं चले जाइए, कभी होता नहीं था गांव में ऐसा कि महिलाएं, आप देखिए घर में बैठी हैं, कोई काम नहीं है, आप देखिए किसी भी गांव में आप चले जाइए, महिलाएं कुछ ना कुछ आपको काम करती हुई दिख जाएंगी, वो कभी बैठी नहीं रहेंगे, तो इससे उनको कमाई भी हो रही है। आप सोच सकते हैं कि SHG से जुड़ी महिलाएं हर महीने 10 से लेकर 20 हज़ार रुपये महीने तक कमा रही, इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर रही, अपना परिवार को अच्छी तरह चला रही, बच्चे बच्चियों को पढ़ा रही। निश्चित रूप से यह योजना हमारी बहनों के लिए मील का पत्थर है।
0: जी बिल्कुल ठीक कहा सर, महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का काम किया है लखपति दीदी योजना ने। वन संपदा और पर्यावरण को लेकर भी काफ़ी कुछ काम किया है केंद्र सरकार ने बीते 12 वर्षों में। प्रोजेक्ट चीता की अगर हम बात करें तो दशकों बाद भारत की धरती पर चीते वापस लाए गए। सुरेश जी आपसे सवाल है कि कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश को चुना गया है, इस परियोजना की सफलता और भारत के वन्यजीव संरक्षण के भविष्य को किस प्रकार से देखते हैं?
2: देखिए, वन्य जीवों को लेकर प्राय ये बात उठती रही है कि भारत में इनके विकास के प्रति कोई लंबी योजना नहीं है और दूरदृष्टि से काम नहीं किया जा रहा है। तो आप इसके बारे में जब हम सोचते हैं और आज के संदर्भ में देखते हैं तो न केवल प्राइवेट सेक्टर इसको अपने साथ जोड़ करके और कार्य कर रहा है, अभी तो सरकार भी अपनी तरफ से ये कर रही है। और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि जिस मध्य प्रदेश में आज हम बोल रहे हैं उसी मध्य प्रदेश के कूनो को इस चीता प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने चुना। और जिस तरह से हमने देखा कि जो प्रजनन है वो प्रजनन ये बताता है कि यहाँ चीता अनुकूलता का वातावरण है और पर्यावरण की दृष्टि से तो निश्चित रूप से ये माना जाता है कि पर्यावरणीय संतुलन बनाने के लिए इस प्रकार के प्रोजेक्ट की बहुत महती आवश्यकता थी। पिछले दिनों जिस प्रकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो जंगली भैंसे और इस टाइप की जो और जीव जंतु या पशु पक्षी ये जो लाकर के छोड़े गए हैं, इनसे भी हमारे पर्यावरणीय संतुलन बनेगा। साथ में जो पर्यावरण की दृष्टि से यदि हम कहें तो जो हाइड्रोजन मिशन बनाए हैं, ग्रीन हाइड्रोजन पर काम किया जा रहा है, या सोलर रूफ टॉप जो मामला है जिसके तहत पीएम सूर्य गृह योजना जो है, घर योजना है, उसके अंतर्गत सरकार की तरफ से उसको प्रोत्साहित करने के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी भी दी जा रही है। तो पर्यावरण की दृष्टि से किस प्रकार और बेहतर हम पर्यावरण को बना सकते हैं, क्योंकि जब आज हम देख रहे हैं तो जो ये भीषण गर्मी है ये पर्यावरण असंतुलन के कारण सबसे ज़्यादा है, और वृक्षों का कम हो जाना, मध्य प्रदेश ऐसा है जहाँ घने जंगलों की स्थिति है, तो उसके बावजूद भी चूंकि गर्मी है तो ये समझने की चीज़ है कि जिस तरीके से अब चीता प्रोजेक्ट आया है या अन्य पशु और पक्षियों को जंगल में छोड़ने के लिए, फिर उनके लिए पानी की व्यवस्था होगी, वृक्षों को नमी मिलती रहे, इसके लिए जो व्यवस्थाएं होंगी, तो ये पर्यावरणीय संतुलन के लिए आने वाले समय के लिए एक लंबा प्रोजेक्ट है और लंबा इसका वो रहेगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार यदि किसी एक विषय को चुनते हैं तब भी, और यदि समग्र विषयों को देखते हैं तब भी, सभी क्षेत्रों में काम करती हुई दिखाई देती है। और ये एक ऐसा चीता प्रोजेक्ट जिसका आपने उल्लेख किया, ये ऐसा विषय है जिस विषय पर सरकार व्यक्तिगत रूप से क्या सोचेगी, लेकिन इसके बावजूद भी सोचा गया। इसका अभिप्राय ये है कि समग्र दृष्टिकोण से कैसे भारत के अंदर विकास हो सके, जिसे समग्र विकास कहा जा सकता है, वो सारी चीज़ें इस समय दिखाई दे रही हैं।
0: जी सर बिल्कुल ठीक कहा, और उसी समग्र दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से समृद्धि की ओर हमारा देश बढ़ रहा है। वैश्विक छवि की अगर हम बात करते हैं तो पूरे देश की जो वैश्विक छवि बनी है पिछले 12 वर्षों में वो एक अलग ही रूप में अब दिखाई पड़ती है। मृगेन जी आपसे सवाल है, G20 जैसे सफल आयोजन को हमने किया, G20 की सफल अध्यक्षता, वैक्सीन डिप्लोमेसी और ऑपरेशन सिंधु

0: जैसे कदमों से दुनिया में भारत की साख काफी बढ़ी है, तो क्या भारत सच में एक निर्णायक वैश्विक शक्ति बन चुका है?
1: देखिए, अब ये कहने की बात नहीं कि भारत निर्णायक विश्व शक्ति बन चुका है, वो अब पूरी दुनिया मान चुकी है। पूरा ये अगर ये कहें कि पूरी दुनिया ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोहा मान लिया है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो उसके पीछे कारण, जो अब G20 की बात करें तो G20 में जो हुआ वो सबके सामने, इसके पहले कौन उसका नेतृत्व करता था, कौन सामने आते थे, कौन लोग होते थे, लेकिन भारत ने बताया कि नहीं है, और वो प्रधानमंत्री जी ने बता दिया कि विश्व का कोई भी देश हमें आँख नहीं दिखा सकता, हम जो चाहेंगे अपनी मर्जी से करेंगे और हम जो चाहते हैं वही होगा। अगर कोई चाहे कि हमें झुका लेगा या वो अपनी मर्जी मनवा लेगा, चाहे किसी भी G20 या किसी भी सम्मेलन में, वह अब संभव नहीं है, या उनने साफ साफ संकेत दे दिया। दूसरा, बात कर रहे हैं वैक्सीन की बात हो रही, अब कोरोना की वैक्सीन, सोचिए कि भारत ने कितने लोगों की मदद की, कितने लोगों की जान बचाई। बताओ, जो वैक्सीन एक समय होता था बनाने के लिए वर्षों लग जाते थे, फैक्ट्री लग रही, ये हो रही, अनुमति रही, लेकिन बताइए 30 से 60 दिन के अंदर सब कुछ तैयार हो गया। 6 महीने के अंदर तो ये स्थिति हो गई कि भारत विदेशों को वैक्सीन देने लगा था, जो वैक्सीन बाहर से आती थी वो सब इंडिया से जाने लगी। अब मैं कहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि इसके लिए बहुत सारी देशों को, गरीब देश से जहाँ फैला हुआ था उन्हें मुफ्त में दिया, उन्हें एक पैसा नहीं लिया। इससे जो भारत की एक अलग छाप बनी है, निश्चित रूप से इस छाप के कारण हमारे भारत को एक डिप्लोमेसी की बात हुई है कि भारत जो कहता है करता है। अब मदद के लिए भारत कभी किसी के सिक्के फटे में टांग नहीं अड़ाता, लेकिन अगर किसी ने आंख दिखाई तो उसे छोड़ता भी नहीं। इसीलिए आप बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, ऑपरेशन सिंदूर जो कुछ हुआ सबको मालूम है। ये बताइए, हमारी बहनों ने पाकिस्तान के जो बड़े विमान थे, बड़े बड़े वो थे, उनके जितने भी आतंकी अड्डे थे सबको समाप्त कर दिया। और देखिए कितना सटीक निशाना था कि एक भी आदमी की मौत नहीं हुई, केवल वो आतंकी अड्डे समाप्त हुए। अब सोचिए कि पाकिस्तान से हमारी बहनें लोहा ले सकती है, तो सोचिए वह भारत की आज हम कल्पना जिसने कहीं की थी, आज वो भारत हमारे सामने।
0: आत्मनिर्भर भारत की अगर हम बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत देश में नए उद्योग और निवेश आए हैं, रोजगार और विनिर्माण के मामले में जमीनी स्तर पर किस प्रकार का सकारात्मक बदलाव नजर आता है, सुरेश जी आपसे जानना चाहेंगे।
2: देखिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए नरेंद्र मोदी जी का जो गुजरात में विजन शुरू हुआ था, और उन्होंने जिस तरह से गुजरात में उद्योग आमंत्रित करने के लिए योजना परियोजनाओं पर काम किया था, उसका जो है राष्ट्रीय विस्तार हुआ उन सारी योजनाओं का। और ये कहा जा सकता है कि मेक इन इंडिया के माध्यम से हमने आयात के स्थान पर अपने ही देश में निर्माण करते हुए और खरीदने की व्यवस्थाएं की, और उसका सीधा असर ये पड़ा कि जो टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं हुआ करती थी, उस टेक्नोलॉजी का भारत में प्रवेश हुआ जी। और एक ये बहुत सटीक तरीका, मैं एक आयोजन में गया था तो मुझे वहाँ ये बताया गया कि भारत में रोजगार की तरफ युवकों को भेजने का आशय ये था कि यदि उन्हें औद्योगिक परिवेश में भेजा जाएगा तो टेक्नोलॉजी इतनी कहाँ से लाई जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब सरकार संभाली तो उन्होंने स्पष्ट रूप से हमारे वैज्ञानिकों को निर्देश दिया था कि जिस टेक्नोलॉजी से हमारा औद्योगिक परिवेश बढ़ सकता है उस टेक्नोलॉजी को आप तेजी से विकसित करिए। और आज मुझे कहने में संकोच नहीं है, और मैं इसलिए भी ये बात कहने का अधिकारी हूँ कि आरआर कैट इंदौर के अंदर जब मैं एक कार्यक्रम में शामिल हुआ तो उसमें जो परमाणु ऊर्जा विभाग का है केंद्र सरकार का, उसमें जब मैं शामिल हुआ तो मुझे ये जानकारी देख करके बड़ा हर्ष हुआ कि हमारे यहाँ न केवल उत्पादों को, न केवल प्रोडक्ट को अन्य क्षेत्रों में भेजने को लेकर के, या हमारे यहाँ जिस तरीके से टेक्नोलॉजी से फास्ट उत्पादन किया जा सकता हो, आप देखिए आत्मनिर्भरता की स्थिति आज हम यहाँ तक हैं कि जब हम ऑपरेशन सिंदूर करते हैं तो हमारे हथियारों से हम ऑपरेशन सिंदूर की विजय प्राप्त करते हैं। और आज भारत ऐसा देश हो गया है जो हथियार विदेशों को निर्यात कर रहा है
0: जी।
2: इसका सीधे अभिप्राय यह है कि जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट भारत की सरकार ने लागू किया था उसकी सफलता है ये, और हमारे उद्योगों को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास से लबरेज बना करके उनके माध्यम से जो परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों के कारण आज हम ये कह सकते हैं कि भारत न केवल निर्माण के क्षेत्र में, न केवल निर्यात के क्षेत्र में, न केवल कृषि के की आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में, न केवल

0: अन्य प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है। और इस आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा असर जो है हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जिसकी वैश्विक शक्ति दिखाई दे रही है, उसमें परिलक्षित हो रहा है, दिखाई दे रहा है।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर। कहीं ना कहीं अब हम वैश्विक आर्थिक शक्ति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और अगला सवाल भी मेरा आर्थिक सुधारों की तरफ से ही है, मृगेन जी आपसे है। नोटबंदी और GST के तहत जो सुधार किए गए और नोटबंदी शुरुआती दौर में लागू की गई, आर्थिक सुधार की दिशा में बड़े कदम माना जाता है इन्हें। एक पत्रकार के नज़रिए से देखें तो 12 साल बाद इन फैसलों ने अर्थव्यवस्था को कितना पारदर्शी और मजबूत बनाया है।
2: 8 नवंबर 2016 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा की थी और 9 नवंबर 2016 से लागू, मतलब 8 नवंबर को उन्होंने घोषणा की, 9 नवंबर से लागू। उसमें थे 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। इससे जो काला धन था
1: जी,
2: वो देश में समाप्त हो गया था। क्योंकि आप देखते हैं, बड़े बड़े लोग होते थे जो नंबर दो के काम करने वाले, पता चला कि उनके घर में 500 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़ हैं और रखे कुर्सी के गद्दे के नीचे हैं, किसी तकिया के नीचे पड़े हुए हैं। बहुत लोग अपने बड़े बड़े घर में ड्रम में नोट भरे रहते थे, वो पूरी तरह से समाप्त हो गए थे। और इससे भ्रष्टाचार पर एक बहुत बड़ा अंकुश लगा था, चीज़ और भी हुआ था। महंगाई, विशेषकर जो नंबर दो के पैसे लोग लगाते थे ज़मीन वगैरह के लिए, उससे महंगाई भी काफ़ी कम हुई थी, ज़मीनों के रेट काफ़ी गिरे थे। उसके बाद से जो एक भ्रष्टाचार के लगाम के साथ ही जो पैसों का ये था कि नकदीकरण, वो बहुत कम हुआ है। और धीरे धीरे जो आप पहले ही बात कर चुके हैं, डिजिटाइजेशन जो हुआ उसके बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा हुआ है। और देखिए, उसके बाद जो आर्थिक सुधार, GST निश्चित रूप से देश के लिए एक बड़ा कदम था। शुरू में लगा कि इससे आय कम हो जाएगी, कई राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया, विशेषकर जो कांग्रेस शासित या भाजपा के अलावा NDA से अलग दल थे, सबने विरोध किया। लेकिन अंत में जब उसके फायदा देखा लोगों ने, उसको माना, और उससे जो GST से ऑनलाइन जो टैक्स भरना शुरू हुआ, उससे बढ़ा भी जो टैक्स बढ़ा, चोरी कम हुई। और साथ ही जब चोरी कम होगी, देश के पास टैक्स ज़्यादा आएगा, तो आखिर टैक्स कहाँ जाएगा? जनता की लिए जाएगा, विकास कामों के लिए होगा, चाहे स्कूल खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी हमारी, और जो आप करें अर्थसंरचना अच्छा होगा, परिवहन सेवाएं सुविधाएं, ये सब इसी के लिए। तो GST ने एक बड़ा ऐसी चीज़ किया जिससे, अच्छा, दूसरा इससे फ़ायदा ये है, आप कोई भी चीज़ कहीं भी खरीद सकते हो। अभी तक ये था कि पता चला हर सरकार अपने कहीं 5% टैक्स है, कहीं 7% है, कहीं 15% है, जिससे टैक्स एक जो बात कर रही, एक देश एक टैक्स का, उससे काफ़ी फायदा हुआ है। और पूरे देश में आप कहीं भी बैठे कोई भी सामान खरीद सकते, सब आपको एक रेट पर मिलेगा। ये बहुत बड़ा फायदा हुआ है देश के लिए, और इससे आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी सुधार हुआ है। कोई भी आदमी आज ये नहीं कह सकता कि मुझे 2 जून की रोटी नहीं मिली है, और ये सब आर्थिक सुधारों के कारण ही संभव हुआ है।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर। और देश की स्वास्थ्य सुविधाओं की अभी बात हुई, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी ही हो रही है पिछले कुछ वर्षों से, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि कई सारे विदेश, दूसरे देशों के लोग, जो पड़ोसी देश हैं, वहाँ के लोग भी हमारे देश में इलाज कराने आ रहे हैं। एक सस्ता और बहुत ही सुलभ इलाज यहाँ पर मिलता है। सुरेश जी, भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तेजी से 3रे स्थान की तरफ बढ़ रहा है, इस आर्थिक यात्रा को आप किस प्रकार से देखते हैं?
0: मुझे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक जो मेरे साथ साक्षात्कार में कहा गया शब्द याद आता है
1: जी।
0: मैंने उनसे पूछा था कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था को और सशक्त करने के लिए आपके पास कोई प्रोग्राम है, जब आप संसार के सबसे माने हुए अर्थशास्त्रियों में से एक हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, भारत की जो पॉलिटिकल स्थिति है वो ये है कि यहाँ कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं तो विरोध ज़्यादा होता है, समर्थन कम होता है
1: जी।
0: भारत की अर्थव्यवस्था तभी सुधर सकती है जब कोई ऐसा राजनेता आएगा जिसे वोटों की चिंता की बजाय देश की चिंता होगी। और मुझे ये गुण नरेंद्र मोदी जी में दिखाई दिए, जिन्होंने वोट पॉलिटिक्स की बजाय भारत की पॉलिटिक्स पर विशेष ध्यान दिया और आर्थिक सुधारों के साथ, और जो थोड़ा महंगाई का जोखिम उठाते हुए भी, जिन्होंने अर्थव्यवस्था को 10वें से 5वें नंबर पर लाने जैसी ताकत दिखाई। और आप ये देखिए कि थोड़ी सी जब महंगाई होती है तो हमारे टैक्सेशन के माध्यम से सरकारों के पास पैसे की आमदनी बढ़ती है
1: जी।
0: आप अन्य व्यवस्थाओं को देख लीजिए, रेलवे स्टेशन को देख लीजिए, एयर व्यवस्थाओं को देख लीजिए, वाल्वो बसों को देख लीजिए, ये परिवहन की दृष्टि से। और फिर आप जो है, जो ये आजकल एक्सप्रेस वे बने हैं, इनके माध्यम से जो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है वो, फिर आप हमारे जो उत्पादन है, उन उत्पादन के आड़ में हमारा निर्यात जो है वो बढ़ रहा है, आयात कम हो रहा है, जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने में एक बड़ा सहयोग दिया है
1: जी।
0: तो आज हम ये जो देख रहे हैं, फिर आप ये देखिए कि जहां हमारे लिए नुकसान हो

0: सकता है, जिसको आर्थिक बोझ कह सकते हैं, उन बोझ को हमने टाला है। और गरीबी की रेखा के साथ जो संतुलन है, आपकी अर्थव्यवस्था पांचवें नंबर पर है, लेकिन गरीबी की रेखा के का प्रतिशत आपकी पांचवी अर्थव्यवस्था से मेल नहीं खाता, इसलिए 80 लाख लोगों को लगातार 5 साल तक निशुल्क अनाज दे करके आने वाले समय में ये 80 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आमदनी और मुफ्त अन्न का जो सांख्यिकी समीकरण है वो आपको इनको गरीबी की रेखा से बाहर कर देगा। तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय में भारत का गरीबी रेखा का संतुलन और अर्थव्यवस्था के ग्रोथ का संतुलन बराबर होगा। फिर आप ये देखिए कि जिस क्षेत्र में जिस वस्तु का उत्पादन हो करके, आप ये हर एक ज़िले में एक प्रोडक्ट, लोकल फॉर वोकल, मुझे ये लगता है कि एक बड़े समग्र सोच के साथ, और इतनी समग्र सोच जिसका ये कह सकते हैं कि बाद में यदि प्रतिफल आ रहा है तो विजन 2047 जो विजन आया है वो इसी अर्थव्यवस्था के संतुलन वाले मामले के कारण आया है। क्योंकि जब हम 12 वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था में बूम देख सकते हैं, किसी भी परेशानी को झेलने की ताकत देख सकते हैं, जब टैरिफ का वार आया भारत नहीं हिला, जब आपने हमारे सामने पेट्रोल का संकट आया तब हमारे सामने ये सारी चीज़ें आई, तो आप देख लीजिए कि भारत न केवल वैश्विक शक्तियों से लड़ने की स्थिति में है अपितु उनका सामना करके आगे निकलने की स्थिति में है। तो मुझे ये लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक संसार की ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं में है। जीडीपी को देखिए आप, बराबर आपको संकेत देता होगा, जहां दूसरे देशों की जीडीपी में गिरावट और हलचल दिखाई दे रही है, भारत उसमें स्थिरता के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये जो पेट्रोलियम मामलों में थोड़ा बहुत जो दिक्कत आ रही है आपूर्ति की, जिसके कारण मूल्य परिवर्तन दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में शीघ्रता से मुझे लगता है हमारी अर्थव्यवस्था इसको सामान्य रूप से आगे गति दे देगी।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर आपने विकसित भारत 2047 की बात की। अगले 10 वर्षों में हम अपने उस लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे और विकसित भारत 2047 का स्वप्न साकार करेंगे। एक बहुत ही सार्थक चर्चा हुई, बहुत बहुत धन्यवाद मृगेन जी और सुरेश जी, आपने बेहद संतुलित, बेबाक और बारीक विश्लेषण से हमारे श्रोताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और NDA सरकार के कार्यकाल की पिछले 12 वर्षों की यात्रा के हर पहलू को समझने में मदद की। निश्चित ही श्रोताओं को इससे काफ़ी मदद मिलेगी। आज के इस विशेष संवाद में बस इतना ही। देश और समाज से जुड़े ऐसे ही गंभीर मुद्दों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: सुर्खियों में
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रदेश की सुर्खियों में क्षेत्रीय समाचार एकांश, ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए प्रस्तुत है सागर जिले की चिट्ठी, आलेख है विनोद आर्य का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार के।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सागर जिले की चिट्ठी, आलेख विनोद आर्य का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। सागर जिले में गर्मी के मौसम का मिजाज अब बदलने लगा है। इधर जिला प्रशासन और नगर निगम ने बारिश से पहले एहतियात के तौर पर कई आवश्यक कार्य पूर्ण कर लिए हैं, ताकि लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। पिछले दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिले के केसली से लाडली बहना की राशि अंतरित की। इस अवसर पर उन्होंने देवरी क्षेत्र के लिए कई विकास कार्यों की सौगात भी दी। मुख्यमंत्री ने 190 करोड़ रुपये की लागत के 53 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। डॉक्टर यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बुंदेलखंड की धरती ने अपने अंदर गौरवशाली अतीत को संजोकर रखा है। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति की सहभागिता और नेतृत्व के माध्यम से आज मध्य प्रदेश विकास पथ पर आगे बढ़ता हुआ भारत को विकसित भारत बनाने में अपना सहयोग दे रहा है। वर्ष 2026 को प्रदेश सरकार कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। कृषक कल्याण वर्ष में सरकार किसानों के हित में अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। उनके खेतों के लिए पानी की व्यवस्था कर रही है। सिंचाई के मामले में मध्य प्रदेश में 44 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 65 लाख हेक्टेयर तक सिंचित रकबा पहुंच गया है और सरकार का लक्ष्य इसे 100 लाख हेक्टेयर करने का है। वहीं दुग्ध उत्पादन एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्षों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आज जरूरतमंदों को आवास, स्वास्थ्य सहित समस्त सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। कार्यक्रम में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और दमोह सांसद राहुल सिंह तथा स्थानीय विधायक ब्रजबिहारी पटेरिया ने भी अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष

पूरे होने पर कई जन सरोकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें वृक्षारोपण, योग दिवस की तैयारियां और जन कल्याण शिविरों का आयोजन शामिल है। इनमें प्रशासन और जन प्रतिनिधियों तथा सामाजिक संगठनों की भागीदारी हो रही है। सागर जिले में 12 जून से 18 जून तक 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अपेक्स बैंक के प्रशासक महेंद्र सिंह यादव ने सागर संभाग के जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की विभागीय समीक्षा बैठक जिला सहकारी बैंक के सभागार में बीते दिनों आयोजित की। बैठक में उन्होंने प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में सदस्यता वृद्धि अभियान तथा खरीफ के लिए किसानों को ऋण वितरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री यादव ने कहा कि किसानों को कृषि एवं सहकारिता क्षेत्र की योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के उद्देश्य से अपेक्स बैंक के द्वारा 14 अप्रैल से 30 जून तक 10 लाख किसानों को सहकारिता से जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों से 500 रुपए अंश पूंजी तथा 100 रुपए सदस्यता शुल्क प्राप्त कर उन्हें सहकारी संस्थाओं का सदस्य बनाया जाए, जिससे वे 0% ब्याज सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। उन्होंने समिति प्रबंधकों को सदस्यता अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने तथा जिला बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इसकी सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। आगामी 21 जून को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन को लेकर बीते दिनों कलेक्टर प्रतिभा पाल ने समीक्षा बैठक की। कलेक्टर ने परीक्षा के सफल आयोजन के लिए कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने और परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। नीट परीक्षा के सिटी कोऑर्डिनेटर मनीष गुप्ता ने बताया कि सागर शहर में कुल 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें सभी तरह के सुरक्षा इंतजामों और मापदंडों के साथ परीक्षा संपन्न करवाई जाएगी। पुलिस प्रशिक्षण शाला मकरोनिया सागर में संचालित 15वें नव आरक्षक बुनियादी सत्र 2025-26 का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर प्रशिक्षणार्थियों का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस दीक्षांत समारोह में नर्मदापुरम जोन के पुलिस महानिरीक्षक मिथिलेश शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में 302 प्रशिक्षणार्थियों की परेड संपन्न हुई। सागर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे सागर जिले की चिट्ठी। आलेख था विनोद आर्य का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार के थे। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है।
1: कवि हेमंत देवलेकर,
2: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है। हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाज़ें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाएं। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
0: ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला संसार।

आप सभी सखियों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम महिला संसार में। मैं हूं आपकी रेडियो सखी पूर्णिमा मिनोचा। सखियों, आज 17 जून है और आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, मतलब मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का विश्व दिवस। इस दिवस का उद्देश्य है भूमि को बंजर होने के प्रति जागरूकता बढ़ाना, सूखे के प्रभावों को कम करने के उपायों को बढ़ावा देना और भूमि संरक्षण और सतत विकास को प्रोत्साहित करना। सूखा केवल खेती को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि पेयजल, पशुधन और लोगों की आजीविका पर भी गंभीर असर डालता है। तो सखियों, इस दिवस पर हम सब मिलकर धरती को हरा भरा बनाने और जल संसाधनों की रक्षा करने का संकल्प लें। हो सके तो अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, वर्षा जल संचयन करें, जल का मितव्ययता के साथ उपयोग करें, भूमि संरक्षण गतिविधियों में भाग लें। सखियों, जैसा कि हम जानते हैं आज बुधवार है और क्रम है शीर्षक गीत का, तो आज

0: सखियों, कार्यक्रम में अब वक्त हो गया है वार्ता का, जिसका विषय है सरकार के 12 वर्षों के दौरान महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ते आयाम। वार्ताकार हैं प्राची तिवारी।
1: नमस्कार श्रोताओं, किसी भी राष्ट्र की प्रगति का वास्तविक आकलन इस बात से किया जाता है कि वहां की महिलाओं की स्थिति कितनी सशक्त, सुरक्षित और सम्मानजनक है। भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति, सृजन और संवेदना का प्रतीक माना गया है। पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण को वुमेन्स डेवलपमेंट से आगे बढ़कर वुमेन लेड डेवलपमेंट अर्थात महिला विकास से आगे महिला नेतृत्व वाले विकास के रूप में देखने का प्रयास किया है। इस अवधि में सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन यानी समाज के निर्धन, ग्रामीण, वंचित वर्ग और विशेषकर महिलाओं को बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय सेवाओं की सुलभ और किफायती पहुंच उपलब्ध कराना है। उद्यमिता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सुरक्षा और सामाजिक सम्मान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनेक योजनाएं और कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। इन कार्यक्रमों और योजनाओं ने निस्संदेह महिलाओं को समाज के हाशिए से निकालकर विकास की मुख्यधारा में लाने का विशिष्ट, उल्लेखनीय एवं सराहनीय कार्य किया है। हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के अनुसार नारी शक्ति ही राष्ट्र की असली शक्ति है और इसलिए उनके उत्थान के बिना राष्ट्र का समग्र विकास संभव नहीं है। हमारे देश में पिछले 12 वर्षों के दौरान महिला सशक्तिकरण को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए जो कल्याणकारी एवं जनहितकारी योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किए गए, आइए उन पर एक संक्षिप्त नज़र डालते हैं। इन योजनाओं में प्रमुख रही वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, बालिका के जन्म को प्रोत्साहित करना तथा उसकी शिक्षा सुनिश्चित करना था। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से संचालित की जा रही है। इसका प्रमुख उद्देश्य केवल योजनागत हस्तक्षेप नहीं बल्कि समाज की मानसिकता में परिवर्तन लाना है। आज यह अभियान देशव्यापी जन जागरूकता आंदोलन का रूप ले चुका है, जिसने बालिका शिक्षा और सम्मान के प्रति सकारात्मक वातावरण निर्मित किया है। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण का आधार शिक्षा है। इसी दृष्टि से सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा हेतु कई प्रयास किए, जिसमें से एक है सुकन्या समृद्धि योजना, जो वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई। बेटियों के भविष्य और उच्च शिक्षा, विवाह आदि के खर्चों को सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई यह एक लोकप्रिय छोटी बचत योजना है, जिसके अंतर्गत माता पिता अपनी दो बेटियों के नाम से बचत खाते खोल सकते हैं और उचित समय आने पर उस धनराशि का सदुपयोग कर सकते हैं। श्रोताओं, किसी भी समाज में महिलाओं की स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक उनका स्वास्थ्य होता है, क्योंकि एक स्वस्थ माँ के साथ स्वस्थ बच्चे का भी भविष्य जुड़ा रहता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2017 में आरंभ की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सहायता राशि प्रदान की जाती है, ताकि गर्भावस्था के दौरान उनका उचित पोषण और विश्राम सुनिश्चित किया जा सके। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि जुलाई 2025 तक लगभग 4 करोड़ से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है। इसी के साथ महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या को कम करने के लिए पोषण अभियान और मिशन पोषण 2.0 जैसे कार्यक्रम संचालित किए गए। इन कार्यक्रमों ने गर्भवती महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के स्वास्थ्य सुधार पर विशेष ध्यान केंद्रित किया, जिसके परिणाम सुखद रहे। श्रोताओं, आर्थिक स्वतंत्रता महिला सशक्तिकरण की आधारशिला होती है। पिछले वर्षों में महिलाओं को बैंकिंग, उद्यमिता और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा कई आवश्यक कदम उठाए गए, जिसमें उल्लेखनीय है प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसमें जनधन खातों के माध्यम से करोड़ों महिलाओं को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया। इससे महिलाओं की वित्तीय भागीदारी और आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे छोटे व्यवसायों के लिए बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराया गया। इस योजना के लाभार्थियों में भी बड़ी संख्या महिलाओं की ही रही, जिससे अनेक महिलाओं ने स्वयं के व्यवसाय स्थापित किए। स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य महिलाओं और अनुसूचित जाति

0: जनजाति वर्ग के उद्यमियों को नए उद्योग स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। लखपति दीदी अभियान स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आय बढ़ाने के उद्देश्य से लखपति दीदी कार्यक्रम को प्रोत्साहन दिया गया है, जिससे ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए गत 12 वर्षों में सरकार द्वारा अनेक संस्थागत व्यवस्थाएं भी विकसित की गई हैं, क्योंकि सुरक्षा के बिना सशक्तिकरण अधूरा है। वर्ष 2021 से संचालित मिशन शक्ति महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण की दिशा में एक उल्लेखनीय कार्यक्रम है। इसके दो प्रमुख घटक हैं, संबल अर्थात सुरक्षा और सामर्थ्य यानी सशक्तिकरण। मिशन शक्ति के अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर, सखी केंद्र, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अदालत, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना एवं पालना घर सुविधाओं को शामिल किया गया है। करोड़ों महिलाओं को धुएं से मुक्त रसोई उपलब्ध कराने हेतु उज्ज्वला योजना के अंतर्गत LP गैस कनेक्शन दिए गए। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य, रसोई में लगने वाले समय और जीवन स्तर तीनों में सुधार हुआ। इसी तरह स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण ने महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महिलाओं की भागीदारी केवल सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों तक सीमित न रहे, इस हेतु राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में भी बीते 12 वर्षों के दौरान कई साहसिक निर्णय लिए गए। वर्तमान दशक में महिला सशक्तिकरण केवल कल्याणकारी योजनाओं तक सीमित नहीं रहा, विज्ञान, रक्षा, खेल, स्टार्टअप, डिजिटल अर्थव्यवस्था और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी इस परिवर्तन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सरकार की विभिन्न नीतियों ने महिलाओं को लाभार्थी अर्थात बेनिफिशियरी से आगे बढ़ाकर विकास की सक्रिय भागीदार यानी पार्टनर इन डेवलपमेंट बनाने का प्रयास किया है। मिशन शक्ति के दिशा निर्देशों में भी वुमेन लेड डेवलपमेंट की इसी अवधारणा पर जोर दिया गया है। इन सब के अलावा भी अनेक छोटी बड़ी योजनाएं एवं कार्यक्रम हैं जो महिलाओं को समाज में उनका उचित स्थान दिलाने की दिशा में निरंतर प्रयत्नशील हैं। जहां नारी का सम्मान होता है, वहीं समृद्धि और प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना में भी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को अनिवार्य माना गया है और स्व सहायता समूहों, महिला उद्यमियों तथा ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक योगदान की सराहना की है। इसके अलावा विज्ञान, खेल, रक्षा, अंतरिक्ष और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की उपलब्धियां भी देश के लिए प्रेरणा स्रोत रहीं। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने के संदर्भ में भी इस दरमियान लोकतंत्र को अधिक सशक्त और समावेशी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। संक्षेप में कहें तो सरकार का मंतव्य स्पष्ट है कि जब देश की प्रत्येक महिला सशक्त होगी, तभी भारत अपनी पूर्ण विकास क्षमता को प्राप्त कर सकेगा। और ये हम सभी जानते हैं कि पिछले 12 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से प्रारंभ की गई सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों ने महिलाओं के जीवन के विविध आयामों को सुदृढ़ करते हुए उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में अहम योगदान दिया है। यह कहा जा सकता है कि भारत महिला केंद्रित विकास से आगे बढ़कर महिला नेतृत्व वाले विकास की ओर अग्रसर है। जब महिलाओं को समान अवसर, सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान प्राप्त होगा, तभी विकसित भारत का स्वप्न पूर्ण रूप से साकार हो सकेगा। नारी सशक्त होगी तो परिवार, समाज और राष्ट्र तीनों सशक्त होंगे, क्योंकि नारी केवल परिवार की ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की भी बुनियाद है।
1: सखियों, अभी आपने सुनी वार्ता सरकार के 12 वर्षों के दौरान महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ते आयाम। वार्ताकार थी प्राची तिवारी। और अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है शीर्षक गीत का, और आज का शीर्षक है हम तुम। हम तुम सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक खूबसूरत एहसास है, वो एहसास जो जिंदगी की भीड़ में किसी अपने का साथ होने का यकीन देता है, दिल को सुकून और जिंदगी को मायने देता है। जहाँ किसी की मुस्कुराहट अपनी खुशी लगती है, हम और तुम की खूबसूरती इस बात में है कि हम एक दूसरे के एहसासों में रहते हैं। इसी एहसास को महसूस करें इस गीत के साथ।

सखियां सुन रही हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला संसार। सखियों, गर्मी का मौसम अपने साथ तेज धूप, पसीना और त्वचा संबंधी कई समस्याएं लेकर आता है। आखिर खूबसूरती सिर्फ सजने संवरने का नाम नहीं, बल्कि अपनी त्वचा की सही देखभाल भी है। सबसे जरूरी है कि हम अपनी त्वचा को भीतर और बाहर से पोषण दें, भरपूर पानी पिएं, खाने में मौसमी फल, हरी सब्जियां और ताज़े जूस शामिल करें। जब भी घर से बाहर निकलें, सनस्क्रीन या छाते का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब बात करते हैं मेकअप की। वैसे तो इस मौसम में मेकअप हल्का ही रखें, चेहरे को साफ करके हल्का मॉइस्चराइज़र लगाएं और उसके बाद अपनी पसंद का हल्का बेस चुनें। गुलाबी या पीच शेड का हल्का ब्लश, वाटरप्रूफ काजल और हल्के रंग की लिपस्टिक आपके लुक को ताजगी भरा बना सकती है। और जब आप खुद को पसंद करेंगी और अपनी देखभाल करेंगी, आपकी खूबसूरती स्वयं अपने आप ही निखर जाएगी। और अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और गीत का।

0: सखियों, उम्मीद करते हैं आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इसी वादे के साथ कि आपसे पुनः जल्दी भेंट होगी, अपनी रेडियो सखी पूर्णिमा मिनोचा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला संसार, ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग माला। इसमें अभी आप सुनेंगे SK दास गुप्ता का सरोद वादन, राग होगा ललित।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में अभी आप सुन रहे थे एस के दासगुप्ता का सरोद वादन, राग था ललित। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन के नागदा में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके साथ ही वे कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से प्रारंभ होगा। यह सत्र 24 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। इस 5 दिवसीय सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बताया गया है कि इस दौरान सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। इसके साथ ही कुछ विधेयक भी सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम तथा नागरिकों को सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जाएगा। 15 दिवसीय अभियान 24 जून से 8 जुलाई तक चलेगा। आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है। यह दिवस मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। चारागाह पहचान, सम्मान और पुनर्स्थापना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा बलों, पुलिस और नागरिक प्रशासन के द्वारा तीर्थयात्रा से जुड़े स्थलों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अमरनाथ यात्रा जुलाई में शुरू होगी। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अब ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी गई है। और प्रदेश में मानसून की आवक टल गई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की अब अगले सप्ताह दस्तक देने की संभावना है। इधर राज्य में प्री मानसून गतिविधियां जारी हैं। आज प्रदेश के 34 जिलों में बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने।
1: जन्म जन्म के साथी हैं हम, रूठेंगे तो मिलेंगे, यह कहकर आवारा बादल धरती को बहलाता है। बेमौसम का ये सावन भी कितना भोला भाला है, फेंक कर सागर में कंकड़ अब खुद ही शोर मचाता है। श्रोताओ नमस्ते, मैं हूं नीतिका वर्मा, लेकर हाजिर हूं आज का फोन इन प्रोग्राम फोन करें गीत सुने। हमारे इस कार्यक्रम में डायल करना होता है फोन नंबर 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। तो चलिए जुड़ते हैं हमारे पहले श्रोता के साथ।
2: नमस्ते नमस्ते मैम, मैं रानी दली छतरपुर से रशीद अहमद खान बात कर रहा हूँ सर।
1: जी जी, कैसे हैं?
2: एकदम सही मैम, सब आप लोगों का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है, एकदम सही। आप लोग कैसे हैं? पूरी टीम आकाशवाणी भोपाल की सब अच्छी
1: जी
2: है?
1: हम सभी बहुत अच्छे हैं और जो गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है उससे बहुत खुश हैं। और
2: जी बिल्कुल
1: जी हाँ, तो अब ऐसे सुहाने मौसम में अहमद खान साहब आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
2: गीत तो बहुत सारे हैं, एक गीत चॉइस करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन एक थोड़ा सा अलग तरह का गीत है, वो गाना सुनना चाहते हो मैं। नई उम्र की नई फसल फिल्म का नाम है।
1: जी जी जी, नई उम्र की नई फसल का कौन सा गीत?
2: स्वप्न झरे फूल से, नींद चुभे सूल से।
1: जी जी जी जी,
2: लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे।
1: जी, नीरज जी का लिखा हुआ ये बहुत ही शानदार गीत है,
2: बहुत एक अच्छा गीत है। इसके मतलब इबारत इसकी बहुत अच्छी, शब्दों का जो विन्यास है
1: जी जी जी
2: बहुत शानदार है इसका, मतलब इतनी अच्छी नीरज साहब ने लिखा है, बहुत अच्छा गीत है।
1: जी जी जी, उनकी कालजयी रचनाओं में से एक है ये।
2: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।

0: हेलो, कौन बोल रहे हैं आप?
1: परम आदरणीय दीदी, इशारों से प्रेम प्यार से नमस्कार।
0: जी
1: मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से आदरणीय दीदी से वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: जी नमस्कार, कैसे हैं शारदा जी?
1: दीदी मैं बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। आपका आशीर्वाद, बांके बिहारी कृपा से घर परिवार में सब लोग आनंद मंगल से रहते हुए
0: जी
1: आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते रहते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। तो मथुरा तो है, तो वहाँ का तो सुरीला सा मौसम होता है, वहाँ का वातावरण ही बहुत अच्छा है।
1: जी, इस वक्त दीदी मंद मंद हवाएं चल रही हैं और खिली खिली धूप है और तापमान भी गिरकर लगभग 36-37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है और
0: हाँ,
1: रात में यही तापमान 30 के आसपास बनता है।
0: मौसम जो है वो कुछ खुशनुमा हो चुका है।
1: संडे बहुत ही खूबसूरत सुहाना मौसम है, मंद मंद पवन प्रवाहित हो रही है।
0: हाँ, और जब कभी छींटे पड़ते हैं बारिश के तो और भी ज़्यादा आनंद आता है, और हम इंतज़ार भी कर रहे हैं बेसब्री से कि मानसून आ जाए, मसावन हो।
1: बस
0: आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: बरसात की और मानसून की बातें चल रही हैं
0: हाँ,
1: तो एक ऐसा ही गीत है जीवन मृत्यु में।
0: जीवन मृत्यु।
1: जी,
0: जी, कौन सा?
1: लता और रफी ने गीत को गाया है।

0: हम पप्पू बोलते हैं, पप्पू सिंह बोलते हैं। बढ़िया जी जी।
1: अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं? आपका पूरा परिचय तो दीजिए।
0: जिला बांदा तहसील नरेनी से बोलते हैं।
1: जी जी जी, कैसे हैं?
0: बढ़िया है दीदी जी।
1: अच्छा,
0: नीतका जी नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: आपसे पहली बार बात हो रही है दीदी जी।
1: अच्छा हाँ, मुझे भी ऐसा लगा पप्पू सिंह जी, और नाम से भी कई बार हम लोग लोगों को पहचानने की कोशिश कर लेते हैं कि हाँ हमारी शायद बात हुई है। है ना
0: जी।
1: कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आज?
0: हीरो फिल्म का गीत सुना दीजिए
1: जी। कौन सा?
0: लोगों से सुना, किताबों में लिखा, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं।
1: जी जी जी।
0: और दीदी जी हमारे साथ प्रेमदास बाबा हैं, सुन रहे हैं, फूल चंपाल भी सुन रहे हैं।
1: बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया पप्पू सिंह जी। नमस्ते।

0: नमस्ते मैडम
1: जी, आपका परिचय बताइए।
0: जी। दमो से बोल रहे हैं, गिरधारी से। कैसे
1: जी कैसे हैं?
0: हैं आप? ठीक है मैडम
1: जी हम तो बहुत अच्छे हैं।
0: जी। जी मैडम जी।
1: आज फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
0: मैडम जी, हमको गाना सुनना है, ये नाम रे सबसे बड़ा तेरा।

0: नमस्कार मैम, नमस्कार। अमित का चौक टेबल वार्ड खड़ाई से आपका दोस्त राम सखी परमानंद
1: जी। परमानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं?
0: मैम ठीक है, हम बढ़िया हैं
1: जी। चलिए परमानंद जी, आज कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
0: मैंने प्यार किया का
1: कौन सा
0: टाइटल?

0: अग्रवाल
1: जी, कैसे हैं अरविंद अग्रवाल जी?
0: बढ़िया हैं, आप कैसे हैं?
1: हम भी अच्छे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं आप? शहर का नाम?
0: श्रीनगर जिला महोबा उत्तर प्रदेश।
1: जी।
0: जी, आज किन मैम से बात हो रही है?
1: आज मैं नीतिका वर्मा हूँ। तो अरविंद अग्रवाल जी, आज आपने फोन किया है, फोन करें गीत सुनने में, तो कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आज?
0: जी, फिल्म का नाम रहेगा यार आना छू कर मेरे मन को।

0: बद्र प्रसाद कुशवाहा, ग्राम हथेड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश से आपका नियमित श्रोता बोल रहा हूँ मैम।
1: जी कैसे हैं बद्री प्रसाद जी?
0: बढ़िया हूँ मैम
1: जी। क्या कुछ कर रहे हैं इन दिनों?
0: इस समय खेती की तैयारी हो रही है मैडम।
1: अच्छा, क्या कुछ लगाएंगे?
0: जी धान।
1: चलिए, तो उसके लिए तो आपको बारिश का इंतज़ार होगा, कब झमझम पानी बरसे।
0: जी जी जी
1: अच्छा, कार्यक्रम में आपके गीत की कौन सी फरमाइश है?
0: मोहरा का सुना दीजिए मैम, ना कजरे की धार।
1: जी

0: थादयाल जाटव, जिला सेत्री, मत सेत्री
1: जी
0: जिला से।
1: कैसे हैं?
0: बढ़िया मैडम जी, आप कैसी हो?
1: हम बहुत अच्छे हैं।
0: हमको बढ़िया गाना सुना दीजिए।
1: हाँ बिल्कुल, आज तो आपका ही पसंद का गीत है जो वो आएगा, तो आपका अनुरोध किस गीत के लिए है?
0: हमें सुना दीजिए जुड़वा फिल्म का, दुनिया में आई हो तो लगभग कर लो, थोड़ा थोड़ा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो।
1: जी जी जी बिल्कुल, ये गीत आपके रेडियो सेट पर लीजिए।

0: हेलो
1: जी मैडम नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: मैं सोमत सिंह बात कर रहा हूँ एमपी धार से। जी
0: सोमत
1: मैं
0: सिंह,
1: बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैं खैरियत से हूँ जी। हाँ कौन मैडम बात कर रही हैं?
0: मैं नीतिका वर्मा। जी जी कैसे हैं?
1: जी, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। आप बताइए क्या हाल चाल है।
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। आज कौन सी पसंद का गीत है आपका?
1: आज मुझे आप सुनवा दीजिए, सीमा फिल्म का गीत है तू प्यार का सागर है।

0: कविता कंदारी सतना से।
1: जी कविता जी, कैसी हैं?
0: बढ़िया।
1: और आज आपका कौन सा अनुरोध है, किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
0: सत्यम श्याम सुंदरम का आया,
1: हाँ, कौन सा गीत?
0: ईश्वर सत्य है।
1: टाइटल ट्रैक।
0: हाँ
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपका ये गीत, हम आपके रेडियो सेट पर ज़रूर भेज रहे हैं। और क्या कुछ करती हैं कविता जी?
0: मैं घर में काम करती हूँ
1: और रेडियो हमारे सुनते हैं कि नहीं?
0: बहुत, मैं बचपन से सुनती हूँ,
1: तभी तो हम कह रहे हैं, तो फिर रेडियो भी सुनती हैं आप, बहुत अच्छा लगा।
0: बहुत दीवानी हूँ मैं रेडियो की।
1: तो ये इसकी दीवानगी ऐसी है ना कि अगर डिस्टरबेंस हो गया किसी दिन, या किसी दिन लाइट नहीं है, या किसी दिन बैटरी ख़त्म हो गई है, तो फिर आदमी झंझला जाता है कि आज हमें कब मिलेगा सुनने को, है ना?
0: मेरे को मतलब जैसे खाना जरूरी है ना, वैसे रेडियो जरूरी है।
1: चलिए, आपकी ये दीवानगी हमें बड़ी अच्छी लगी। शुक्रिया
0: सवेरे से ही चालू कर देती हूँ।
1: आपने फ़ोन किया, आपके रेडियो सेट पर आपकी पसंद का गीत सत्यम शिवम सुंदरम का।

0: याद उसे भी एक अधूरा अफसाना तो होगा, कल रस्ते में उसने हमको पहचाना तो होगा। कुछ बातों के मतलब हैं और कुछ मतलब की बातें, जो ये फ़र्क समझ लेगा वो दीवाना तो होगा। तो श्रोताओं, आपके रेडियो के लिए ये समर्पण, आपकी दीवानगी हमें बहुत अच्छी लगती है। फ़ोन करें, गीत सुने कार्यक्रम में। आज बस इतने ही फ़ोन कॉल हम ले पाए।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर और ग्वालियर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कूनो अभयारण्य भी जाएंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से प्रारंभ होगा। ये सत्र 24 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। इस 5 दिवसीय सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस दौरान सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, साथ ही कुछ विधेयक भी सदन पर प्रस्तुत किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए संकेत दिए कि समान नागरिक संहिता संबंधी प्रस्ताव विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसको लेकर उच्च स्तरीय समिति नागरिकों से सुझाव लेकर जल्द ही इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।

भारत महिला हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। भारतीय महिला टीम का अगला मुकाबला कल सुबह उरुग्वे के साथ होगा और आईसीसी महिला टी20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। ये मैच ब्रिटेन के लीड्स में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश भेजी है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। दूसरी फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं सारनी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि और संदीप पाटिल। आप सबने सुनना चाहा है लम्हे फिल्म का ये नगमा, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर और ए हरिहरन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत बाजीगर फिल्म से विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाजें हैं, गुहर कानपुरी का गीत और अनु मलिक का संगीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती।

जोंधली और सिंधोली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान और नवीद खान। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए ये गीत।

अगली फरमाइश भेजी है औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेत और नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। आप सबने सुनना चाहा है कोयला फिल्म का ये गीत, कुमार सानू और अलका याग्निक साथी साथियों की आवाज़ें हैं और इंदिवर का गीत, राजेश शोषण का संगीत।

1942 आई लव स्टोरी लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा जिसे आवाज़ दी है कुमार सानू ने, जावेद अख्तर का गीत और आर डी वर्मन का संगीत। इस गीत की फरमाइश भेजी है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित और विनोद आर्य ने। कोटवा नारायणपुर से बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, अनिल कुमार रॉय, हैप्पी रॉय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय ने। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए ये गीत।

0: इस नगमे के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: कवि हेमंत देवलेकर।
3: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक हैं, समाचार हैं, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है, हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाज़ें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाएं। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। संग्रहालय के अंतर्गत सुनिए धारावाहिक जंग लगी तलवार की 12वीं कड़ी।
1: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना, बलबीर स्वामी शास्त्री जी को अवगत कराता है कि जल्द ही अगर कुछ न किया गया तो मजदूर हमारे खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। शास्त्री जी हड़ताली मजदूरों का पक्ष लेकर ठाकुर साहब से बात करते हैं, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकल पाता। हड़ताल जारी रहती है। बसुमती नारायणी से मुंशीगंज वालों द्वारा अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना सुनाती है। रोटी के लिए लड़ रहे जानवरों से हड़ताली मजदूर का एक भूखा बच्चा रोटी छीनने जाता है तो जानवर उस पर हमला करके उसे मार डालते हैं। इससे दलितों की बैठक में दहशत फैल जाती है। यूनियन का सचिव कालूराम नारायणी से मिलता है और उसे ठाकुर साहब के कपड़े धोने के काम पर वापस आने के लिए कहता है। नारायणी सोचकर जवाब देने की बात कहकर उसे टाल देती है। हड़ताली मजदूरों का जुलूस नारे लगाते हुए आगे बढ़ता है। यशवंत को रोता हुआ भृगु मिलता है। भृगु बताता है कि उसकी लड़की पार्वती भाग गई है। ये सुनकर यशवंत चौंक जाता है। अब आगे

0: देख प्रभु, चुप हो जा और सारी बात मुझे तू साफ साफ बता, शायद मैं तेरे लिए कुछ कर सकूं। भृगु,
1: मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे यशवंत, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं।
0: अरे धैर्य रख, हिम्मत से काम ले भृगु, हिम्मत से काम ले।
1: मेरा धैर्य टूट चुका है, हिम्मत जवाब दे चुकी है।
0: हाँ,
1: जिसके घर की आबरू चली जाए, घर की जवान लड़की किसी गैर के साथ भाग जाए, वो क्या मुंह लेकर जिएगा, क्या मुंह लेकर।
0: लेकिन
1: मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए, साई नदी में कूद कर मैं अपनी जान दे दूंगा, जान दे दूंगा मैं अपनी।
2: रुक जा भृगु, भृगु रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा भृगु, भगवान के लिए रुक जा।
1: मैं साई नदी की गोद में समाने जा रहा हूँ, तू वापस लौट जा यशवंत।
2: तुझे तेरी माँ बसुमती काकी की सौगंध भृगु, माँ विंध्यवासिनी की कसम, रुक जा भृगु, रुक जा।
0: रुक जा भृगु, रुक जा। देख, मुझ पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। पहले पहले तू ये बता कि ये सब हुआ कब।
1: कल शाम को।
0: किसके साथ गई।
1: पेट की भूख मिटाने के लिए पीस वर्करों के पास जाया करती थी।
0: हाँ,
1: उनसे खाना मांगती थी, मगर मगर कल शाम को

0: पीस वर्करों के पास जाती थी। अब क्या कोई पीस वर्कर भी फरार है?
1: राजा राम नाम का एक वर्कर भी कल शाम से दिखाई नहीं पड़ रहा। साइट पर जाकर पूछा तो पता लगा कि राजा राम और पार्वती को आखिरी बार कल शाम स्टेशन पर देखा गया था।
0: इसका मतलब दोनों कल शाम वाली पैसेंजर ट्रेन से निकल गए। अब भृगु, तूने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई क्या?
1: नहीं भाई।
0: मुझे तो लगता है कि वर्क साइट पर गश्त लगाने वाले कांस्टेबलों का भी इसमें हाथ होगा। पुलिस चौकी में जाकर रिपोर्ट लिखानी होगी। पुलिस पार्वती को जरूर ढूंढ निकालेगी और इस राजा राम का अपराध साबित होगा और उसे सजा जरूर मिलेगी। भृगु,
1: अपराध राजा राम का नहीं, तुम्हारी यूनियन का है।
0: हाँ?
1: यूनियन के नेताओं का है।
0: ये तू क्या कह रहा है भृगु? अरे होश में तो है तू?
1: नहीं हूं मैं होश में। तुम्हारे नारे सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। तुम लोग हड़ताल करते हो, घर में औरतें और बच्चे भूखे हैं, और तुम्हारी यूनियन?
0: लेकिन भृगु,
1: यूनियन के नेता खलासी लंगर पर बैठकर नशा करते हैं और नशा करके सोचते हैं कि वो बहुत बड़ा महान काम कर रहे हैं। अरे तुम्हारी यूनियन के किसी नेता में त्याग की भावना नहीं है।
0: अरे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती भृगु, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। देख, सब इंसान एक जैसे नहीं होते।
1: बिल्कुल ठीक कहा तूने, सब इंसान एक जैसे नहीं होते। हम लोग सारी जिंदगी कंपनी का काम करते करते बिता देते हैं, लेकिन हमेशा हमेशा दूसरों की जूठन खाने वाले जानवरों की तरह दुत्कार दिए जाते हैं।
0: अब
1: और अंत में परमानेंट होने की आस लिए इस दुनिया से विदा हो जाते हैं।
0: अरे भृगु, हमारी हड़ताल का मकसद यही है कि हम लोगों के साथ ये भेदभाव खत्म हो, इंसान बराबर हो, कानून सबके लिए समान हो। लेकिन भृगु, ऐसा तब होगा जब हम सब मिलकर यूनियन का साथ देंगे, अपनी एकता को मजबूत करेंगे, मिलजुल कर एक नई क्रांति को जन्म देंगे तब।
1: खामोश यशवंत खामोश, तुम्हारी यूनियन की वजह से हमारे घर की लड़की भाग गई। आने वाले दिनों में और खून खराबा होगा, खून की नदियां बहेंगी।
0: अरे भृगु,
1: तुम लोगों की देह में वीर भगत सिंह जैसा खून नहीं है। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते।

0: तेरे की। ये ठाकुर साहब बीमार क्या हुए, हमारा पीना पिलाना मौज मस्ती का काम सब रुक गया।
1: ये बोतल का इंतजाम तो मैंने कर लिया।
0: अरे बाप, मेरे भाई क्या बात है, पर तू इसे लाया कहाँ से?
1: अरे वो कंपनी का पुराना टायर बेचकर इंतजाम किया इस बोतल का।
0: अरे लेकिन बाबू भैया, बोतल के साथ जब तक अच्छा खाने का सामान ना हो, तब तक पीने का मजा नहीं आता।
1: कह तो तू ठीक रहा है रामू, पर अब खाने का इंतजाम कहाँ से करे? अरे जेब में तो फूटी कौड़ी भी नहीं बची।
0: अरे एक रास्ता है बाबू, एक रास्ता है मेरे भाई।
1: तो बताना जल्दी से वो रास्ता।
0: क्यों ना हम कंपनी के भंडार में रखी हुई जिलेटिन की छड़ों की चोरी करें, है? और उन छड़ों का विस्फोट हम साई नदी में करें, बहुत सी मछलियां मर जाएंगी और उन्हें भून कर खाने का मजा आ जाएगा।
1: अरे वाह! पर रामू, अगर चोरी करते हुए पकड़े गए तो?
0: अरे उसकी चिंता मत कर, स्टोर कीपर मेरी जान पहचान का है।
1: अच्छा।
0: अरे पैग दो पैग, उसे भी पिला देंगे।
1: अरे ये तो ठीक रहेगा। चल चल चल चल चल चल चल चल।
2: अरे भाई सुनो, ठाकुर साहब से कहो कि राधे श्याम उनसे मिलना चाहता है।
3: कौन राधे श्याम?
2: लेबर इंस्पेक्टर का सहायक।
3: अच्छा अच्छा, आप अंदर जा सकते हैं। ठाकुर साहब आपका ही

0: इंतजार कर रहे हैं।
1: नमस्कार ठाकुर साहब।
2: नमस्कार।
1: कैसी तबीयत है ठाकुर साहब?
2: पहले से बेहतर है, आओ बैठो।
1: माफ करना, मैं जरा जल्दी में हूँ। आपका आदेश मिला तो आपके दर्शन करने चला आया।
2: अच्छा।
1: रामू मामू कह रहे थे कि आपको मुझसे जरूरी काम है।
2: अरे भाई, तुम तो जानते ही हो कि कंपनी के मजदूरों की एक महीने से हड़ताल चल रही है।
1: सुना है इस हड़ताल की चर्चा लखनऊ होते हुए दिल्ली तक पहुँच चुकी है।
2: भाई यही तो समस्या है, कंपनी पर लगातार दबाव आ रहा है कि मजदूरों के साथ जल्दी से जल्दी समझौता किया जाए। तुम लेबर इंस्पेक्टर के सहायक हो, घुटे हुए हो। तुम ही बताओ कि क्या किया जा सकता है।
1: मजदूरों की यूनियन का सरपरस्त लोकल लीडर शास्त्री है ना?
2: उसका नाम ललो मेरे सामने। उसी की वजह से तो आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा।
1: मेरी मानो तो उस शास्त्री को खरीद लो, समझो कि हड़ताल की समस्या से छुटकारा मिल गया।
2: अरे राधे श्याम, वो बिकने वाला नहीं है, नहीं तो कंपनी उसे कब का खरीद चुकी होती।
1: ठाकुर साहब, पीतल के भाव सोना बिकते हुए देखा है कभी?
2: नहीं तो।
1: लेकिन आपने यही करने की कोशिश की है। आप थैली का मुंह खोलिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए।
2: क्या तुम शास्त्री को रुपये के सामने झुका सकते हो?
1: लाठ ठपकाते दौड़ा आएगा शास्त्री। हाँ, मेरी कमीशन देना मत भूलना।
2: अरे भाई तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी कमीशन तुम्हें पहले ही मिल जाएगी।
1: ठीक है ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अभी बहुत से काम करने हैं मुझे।
2: हाँ।

0: बापू।
1: हाँ बेटा।
0: बापू, मछली खा खा कर मन ऊब गया है, आज तो साग रोटी खाने का मन कर रहा है।
1: अरे जगन्नाथ, मेरा मेरा राजा बेटा। देख बेटा, दलितों की बैरक में 20 दिनों से किसी ने भी अन्न का स्वाद नहीं चखा है बेटा। लोग तो जंगली फल और पेड़ के पत्ते चबा चबा कर पेट भर रहे हैं। एक बेटा तू है जो साई पर जाकर मछलियां पकड़ लाता है, नहीं तो जगन्नाथ हम भी पत्ते चबाने पर विवश हो जाते बेटा।
0: नहीं बापू, आज तो मैं रोटी या भात ही खाऊंगा।
1: नहीं नहीं, देख जगन्नाथ बेटा, जिद नहीं करते।
0: नहीं बापू, मछली खा खा कर मेरा पेट खराब हो गया है।
1: जगन्नाथ जगन्नाथ, तू तो मेरा राजा बेटा है। देख बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन, मैं तुझे कल साग रोटी जरूर खिलाऊंगा।
0: सच बापू?
1: हाँ बिल्कुल सच।
0: वादा?
1: अरे वादा है बेटा।
0: तो बापू, हाँ। मैं मछली पकड़ने जाऊँ?
1: हाँ हाँ, जा बेटा जा।
0: कल साग रोटी खाने को मिलेगी, कल साग रोटी खाने को मिलेगी, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा।
2: भैया बामू।
3: हाँ रामू।
2: साई नदी के तट पर तो हम आ गए। हाँ। अब हमें पानी में जिलेटिन की छड़का विस्फोट कर देना चाहिए।
3: हाँ। रुक रुक रुक रुक। पहले चारों तरफ देख ले।
2: हाँ।
3: कोई आसपास है तो नहीं?
2: हाँ देखता हूँ।
3: हाँ देख देख, कहीं ऐसा ना हो कि हम धरे जाएं और जिलेटिन चुराने के आरोप में हमें जेल की हवा खानी पड़े।
2: अरे कोई नहीं है, चल फटाफट कर दे विस्फोट।
3: कर दो?
2: हाँ, ले ले ले, कर, कर।
3: ये ये ये किया मैंने विस्फोट।
2: भैया बाबू भाग, मैंने किसी बच्चे की चीख सुनी है, भागना।
3: तो मैंने भी सुनी है।
2: पुलिस भी आ रही है।

उन्हीं का काम होगा ये। अरे अरे देखो तो, अरे यहाँ तो जगन्नाथ की लाश पड़ी है। तो क्या वो चीख इसी की थी? अरे अरे बेटा जगन्नाथ, तू तो चला गया पर अपने बाप लीचू को जीते जी मार गया तू। अरे बेटा

0: क्या हुआ क्या हुआ, ये विस्फोट कैसा था?
1: मैंने भी किसी बच्चे की चीख सुनी थी। किसका बच्चा होगा वो?
2: जरूर ये हड़तालियों की कारस्तानी होगी।

0: लिचू, लिचू।
1: क्या बात है काका?
0: अरे जल्दी कर, मेरे पीछे आ।
1: माफ करना काका, आज मेरी इमरजेंसी ड्यूटी लगी हुई है, अभी मैं कहीं नहीं चल सकता।
2: अरे सिद्ध ना कर लिचू, तू इसी वक्त हमारे साथ चल।
1: क्या बात है यशवंत, तुम लोगों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ क्यों है?
2: अरे तू हमारे साथ चल, रास्ते में हम तुझे सब बता देंगे।
1: लगता है कोई कोई गंभीर बात है। अच्छा ठीक है, चलो चलो चलता हूँ।
0: अपना जी कड़ा कर ले लीचू, अपना जी कड़ा कर ले।
1: अरे बात क्या है काका, आप लोग मुझे कुछ बताते क्यों नहीं है?
2: अरे धीरज रख लीचू भाई, थोड़ी देर में तेरी समझ में सब आ जाएगा, बस तू हमारे साथ चल।
0: चल चल चल चल चल चल।

0: जगन्नाथ मेरे बेटे, अरे क्या हुआ तुझे, ये झुलस कैसे गया? अरे कोई बोलता क्यों नहीं बोलता मेरे जगन्नाथ को क्या हुआ है? अरे क्या हुआ जगन्नाथ?
1: अरे तेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा लिचू, नहीं रहा।
0: तू झूठ बोलता है। अरे मेरा बेटा मर नहीं सकता मेरा बेटा। अरे मेरा बेटा तो साग सब्जी खाएगा। उठ बेटा, उठ, चल घर चल, घर चल।
1: लिचू,
0: मैं तुझे साग रोटी खिलाऊंगा, दाल भात खिलाऊंगा।
2: लिचू,
1: अपने आप को संभाल, लिचू अपने आप को संभाल।
2: लिचू, क्या हो गया रे लिचू? अरे लिचू, हिम्मत से काम ले। लिचू,
1: अपने आप को संभाल लिचू, अपने आप।

0: सुनो जी, कैसी तबीयत है आपकी?
1: नारायण, जिंदगी से निराश हो चुका हूं मैं। अब तो भगवान से यही दुआ मांगता हूँ कि वो मुझे
0: बस बस, आप ज्यादा ना बोलिए, बोलने से आपको तकलीफ होती है, खांसी भी आती है। जरा हिम्मत करके मुन्ने का ख्याल रखना, मैं भी आती हूँ।
1: नारायणी, तू कहीं जा रही है?
0: जी, बड़ी मेहनतों के बाद अस्पताल में सफाई का काम मिला है। अब मुन्ना दूध के लिए नहीं रोएगा, आपका इलाज भी हो जाएगा।
1: नारायणी, नारायणी तू कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है तू। अरे भगवान तेरी जैसी पत्नी सभी को दे, सभी को दे।
0: आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो जाएगी। आप, मैं जा रही हूँ, मुन्ने का ख्याल रखना।
2: दरोगा जी आपसे मिलने आए हैं।
3: दरोगा जी मिलने आए?
2: जी।
3: उन्होंने ये नहीं बताया कि काम क्या है?
2: जी नहीं।
3: ठीक है, अंदर भेज दो।
2: जी बहुत अच्छा। दरोगा जी, ठाकुर साहब आपको बुला रहे हैं।
4: परे यार, रास्ता दे।

0: आइए आइए दरोगा जी, कैसे आना हुआ?
1: ठाकुर, साई नदी में जिलेटिन का विस्फोट करते हुए पुलिस ने कंपनी के दो मजदूरों को गिरफ्तार किया है।
0: क्या क्या नाम है उन दो मजदूरों का?
1: एक का नाम रामू है और दूसरे का बामू।
0: रामू बामू, तो आप मुझसे क्या चाहते हैं?
1: उन दोनों का कहना है कि वो आपके आदमी हैं, आप उनकी जमानत लेंगे?
0: मैं उनकी जमानत लूंगा? देखिए दरोगा जी, कंपनी के 4,000 मजदूर यहाँ काम करते हैं, क्या उन सबका ठेका मैंने ले रखा है?
1: यानी आप उन दोनों की जमानत देने से इनकार कर रहे हैं, यही ना?
0: जी बिल्कुल ठीक समझा आपने।
1: ठाकुर साहब, पुलिस ने कंपनी की वर्कसाइट की भी तलाशी ली है।
0: पुलिस ने वर्कसाइट की तलाशी ली?
1: जी हाँ।
0: लेकिन वो किस लिए?
1: इसलिए कि रामू और बामू का बयान है कि विस्फोटक जिलेटिन की चोरी उन्होंने वहीं से की थी।
0: वो झूठ बोलते हैं दोनों।
1: झूठ वो नहीं, आप बोल रहे हैं ठाकुर साहब।
0: देखिए, मुझ पर किस आधार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं?
1: आरोप? ठाकुर साहब, पुलिस ने जिलेटिन का सारा भंडार खोजकर सारी विस्फोटक सामग्री अपने कब्जे में ले ली है। वर्कसाइट पर भी गैर कानूनी ढंग से विस्फोटक का ढेर लगाने और विस्फोटक की अलग व्यवस्था ना करने के अपराध में कंपनी पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और सुनो, जुर्माना ना भरने की स्थिति में आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है।
0: क्या?
2: शास्त्री जी, कुछ हड़ताली मजदूरों ने विद्रोह कर दिया है। वो लोग हमें जगह जगह तलाश कर रहे हैं, हमें छिप कर रहना पड़ रहा है।
3: तो मैं क्या करूं?
2: आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके कंपनी के अधिकारियों से बात कीजिए, इस समस्या का कोई तो समाधान निकालिए।
4: हाँ शास्त्री जी, मजदूरों को अब विश्वास होने लगा है कि हम लोग कंपनी के समझौता पत्र के खिलाफ नहीं जा सकते। मजदूरों ने कसम खाई है कि वो हम यूनियन वालों को साई के बालू में जिंदा दफना देंगे।
3: तो मुझसे क्या चाहते हो तुम?
2: पिछली बार हम लोग आपके साथ कंपनी के अधिकारियों से नहीं मिले थे, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं, हमें अधिकारियों से मिलना पड़ेगा।
3: सरप, तुम लोगों को नेता समझना शर्म की बात है।
2: क्या?
3: शर्म की बात? अरे भले ही हड्डियां चूर चूर हो जाए, देह से मांस सड़कर गिर जाए, लेकिन मजदूरों को दिया हुआ वचन पूरा करना होगा। हड़ताल जारी रखो, समझे तुम?
4: लेकिन शास्त्री जी, अब हमारा मजदूरों के बीच जाना खतरे से खाली नहीं है। हाँ, अगर उनके हक में हमारे पास कोई फैसला हो तो अलग बात है।
3: हाँ, देखो, मैं कुछ दिन के लिए मुंशीगंज से बाहर रहूंगा।
4: जी
3: भाई, तुम लोग तो जानते ही हो कि दूर दूर से उधर डालमऊ की तरफ से भी लोग मुझसे मिलने, सलाह लेने आते रहते हैं।
2: हाँ, हाँ। हम लोगों का मार्गदर्शन कीजिए शास्त्री जी, अब हम लोग क्या करें?
3: हाँ, एक काम करो
4: जी,
3: इस बार तुम लोग खुद मिलने जाओ।
2: हम लोग?
3: हाँ हाँ भाई, तुम लोग।
4: ठीक है शास्त्री जी,
2: हम लोग
4: मिलने जाएंगे। चलो बलबीर।
5: माँ,
6: हाँ बेटा,
5: आज मैंने भरपेट खाया।
6: क्या खाया बेटा?
5: कच्चा मांस।
6: क्या?
5: बहुत दिनों का भूखा था ना, इसलिए।
6: क्या कच्चा मांस?
5: हाँ माँ।
6: कहाँ मिला?
5: वो मुंशीगंज के कसाई है ना।
6: हाँ?
5: वही फेंक कर गए थे।
6: बेटा, थोड़ा मांस मेरे लिए भी ले आता तो मेरा भी पेट भर जाता।
5: क्या करता माँ, वहाँ इतने सारे भूखे लड़के थे कि पल भर में मिट्टी में सना मांस चट कर गए।
6: बेटा, कल तू बाकी लड़कों से पहले पहुँच जाना। हाँ, और जितना भी मिले सब उठा लाना, कम से कम 2-1 दिन के खाने का तो इंतजाम हो जाएगा।
5: हाँ,
6: आगे भगवान मालिक है। अरे क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? अरे तुझे उल्टी क्यों हो रही है? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? बेटा, बेटा बोल ना, बोल बेटा। तू चुप क्यों हो गया है? हे भगवान, अरे इसके तो हाथ पैर भी नहीं हिल रहे। हे भगवान,
4: अरे क्या हुआ?
6: करूं मैं?
4: ये लड़का जमीन पर क्यों पड़ा हुआ है?
6: देखिए यशवंत बाबू, मेरे बेटे को जाने क्या हो गया है।
4: एक मिनट,
6: देखिए।
4: है? अरे इसकी तो धड़कन रुक गई है। इसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुकी
6: है। ऐसा लग गए, ये नहीं हो सकता। मेरा बच्चा, मेरा बेटा।
4: देखिए, देखो, रोने से अब कोई लाभ नहीं। अब इसे जलाने का इंतजाम करो।
6: नहीं,
4: लेकिन जलाने के लिए लकड़ी की जरूरत

0: आ गई नारायणी
1: जी।
0: क्या बात है, आज बड़ी देर लगा दी आने में।
1: डॉक्टर साहब, मेरे पति की हालत बहुत खराब थी, इसीलिए आने में थोड़ी देर हो गई।
0: ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसा कर, मेरे साथ आ
1: जी।
0: आज बहुत काम है तेरे लिए, सारे अस्पताल की अच्छी तरह सफाई करनी है तुझे, समझ गई तू?
1: जी जी।
0: चल आ इधर।
1: जी चलिए। ये क्या डॉक्टर साहब, इतने सारे बीमार बच्चे? ये सारे बच्चे तो दलित बैरक के हैं ना?
0: हाँ, इन बच्चों ने कसाईयों द्वारा फेंका गया सड़ा कच्चा मांस खा लिया है, इसी से इनकी ये हालत हुई है।
1: ओह,
0: देख नहीं रही, उल्टी कर करके सारे अस्पताल का फर्श गंदा कर दिया है। देख, ये सारे फर्श की सफाई तुझे ही करनी है।
1: डॉक्टर साहब, ये बच्चे बच तो जाएंगे ना?
0: देख नारायणी, कई तो मर चुके हैं, और जो जो बचे हैं ना, उनका मरना भी तय है।
1: क्या?
0: हाँ नारायणी।

0: अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, दीपा रॉय, गीता वर्मा, श्याम अरोड़ा, केदारनाथ, मोहनलाल, दिनेश वर्मा, रजनीश शर्मा, कमल साथी, राजेश आहूजा, वीपी कालरा, उमेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सागर, बनवारी झोल, मंगत राम और संदीप। ध्वनि मुद्रण किया था रविंदर सिंह राजावत, एसपी राठौर और भगत सिंह ने। प्रस्तुति सहायक थे समीर झा।
1: संग्रहालय के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार की 12वीं कड़ी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12:58 हुए हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वह इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कूनो अभ्यारण्य भी जाएंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 15% से अधिक है। विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से प्रारंभ होगा। यह सत्र 24 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। इस 5 दिवसीय सत्र की अधिसूचना जारी

0: कर दी गई है। इस दौरान सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, साथ ही कुछ विधेयक भी सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए संकेत दिए कि समान संहिता संबंधी प्रस्ताव विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसको लेकर उच्च स्तरीय समिति नागरिकों से सुझाव लेकर जल्द ही इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। भारत महिला हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में भारतीय महिला टीम का मुकाबला कल सुबह उरुग्वे के साथ होगा। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप क्रिकेट में आज ब्रिटेन में शाम 7 बजे से भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा और अंडर 17 महिला फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए पहली बार युवा लीग मुकाबले 18 जुलाई से छत्तीसगढ़ में होंगे। फाइनल मुकाबला 29 जुलाई को होगा। टूर्नामेंट में देश की 16 टीमें भाग ले रही हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

बहनों, आप और हम व्यस्त तो सभी रहते हैं, फिर चाहे वर्किंग वुमन हो या हाउस मेकर। खुशी की बात तो ये है कि इसी व्यस्तता के बीच समय निकालकर आप हमारा कार्यक्रम सुन रही हैं। तो सभी श्रोता सखियों को अपनी दोस्त वंदना शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। घर परिवार, दोस्त पड़ोसी, रिश्तेदार और हमारा कार्यस्थल, इन सभी से जुड़ी जिम्मेदारियों का प्रतिबिंब होता है हमारा डेली रूटीन। उसी के अनुसार हम अपने काम पूरे करते हैं। यूं तो हमें इन कामों में मजा भी आता है, पर कभी-कभी ये ख्याल भी आता है कि क्या हमारा सारा जीवन इसी प्रकार चलता रहेगा। घड़ी की चलती सुइयों के साथ हम सबके लिए काम करते हैं, पर इसके बीच में हमारा निजी समय कहाँ है? दैनिक जीवन की जिम्मेदारियों के बीच जब हम दब से जाते हैं तो लगता है कि हमारा क्या व्यक्तित्व है, हम क्या ढूंढ रहे हैं, किसमें हमारी खुशी है। तब अपनी खुशियों के लिए हम जो समय निकालते हैं वो मी टाइम कहलाता है। मी टाइम यानी हमारा वो निजी समय जिसमें हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। ये हमारे वो निजी पल हैं जिन्हें हम स्वयं निर्धारित करते हैं। ये कब होनी चाहिए और किसके साथ? सखियो, मी टाइम केवल समय बिताना ही नहीं है, बल्कि इसके कई फायदे भी हैं जो हमें समझने चाहिए। इसके द्वारा हम अपनी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को रिचार्ज करते हैं, यानी ये दिल और दिमाग दोनों को स्वस्थ रखने में सहायक है। नई नई चीज़ों को एक दूसरे से शेयर करते हैं, यानी खुद को अपग्रेड करते हैं। हम रिलैक्स फील करते हैं क्योंकि इस समय हम शांत भाव से हर पल को जीते हैं। बाहरी चीज़ों से अपना ध्यान हटाकर स्वयं पर ही केंद्रित करते हैं। ना सिर्फ अपनी खूबियों को तलाशते हैं बल्कि अपनी खामियां भी ढूंढते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। कहने का अभिप्राय है कि खुद से ही खुद को मिलवाते हैं। मी टाइम स्पेंड करने के सभी के अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने विचार हैं। कई महिलाओं ने अपने ग्रुप बना लिए हैं, फिर चाहे वो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हों, एडल्ट वुमन या 50+, वे सभी मिल बैठती हैं, कुछ गेम खेलती हैं, चाय कॉफ़ी की चुस्कियों के साथ ना सिर्फ निजी बातें शेयर करती हैं बल्कि हर टॉपिक पर खुलकर चर्चा होती है। अब तो मिलने का स्थान केवल घर या पार्क ही नहीं रहा, कॉफ़ी हाउस, रेस्टोरेंट, बोटिंग क्लब भी आज बहनों की गपशप से गुलजार दिखाई देते हैं। सखियों, आप अपना मी टाइम कैसे गुजारती हैं? यकीनन कुछ नया करती होंगी या फिर कुछ ऐसा जो दिल को सुकून दे, क्योंकि खुद से खुद की मुलाकात भी ज़रूरी है। वरना एक दिन आईना पूछेगा, बता तेरा नाम पता। अपने निजी लम्हों में हम इस कदर

0: बहनों, भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। कितने ही तीज त्योहार, पर्व, तिथि, मेले, समारोह आदि हम सब मिलजुल कर मनाते हैं। भले ही हम किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के हों, उच्च वर्ग या निम्न स्तर के हों, महिला हों, पुरुष हों या अन्य, सभी में कहीं ना कहीं प्रेम भाव तो रहता ही है। यही प्रेम और विश्वास हमारे देश की परंपरा है, भारत की पहचान है। इसी सार्वभौमिक सोच पर आधारित वार्ता आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। वार्ता का शीर्षक है वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा और मानव एकजुटता। आलेख श्री जवाहर प्रजापति का है। वाचन कर रही हैं आभा गुप्ता। आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: उपनिषद में कहा गया है, इकट्ठे चलें, एक जैसा बोलें और हम सबके मन एक जैसे हो जाएं। ये भावना प्राचीन काल से ही चली आ रही है। इसलिए यहाँ राजा और रंक सब एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। यहाँ के तत्व चिंतकों ने बिना किसी भेदभाव के मानव मात्र अथवा च प्राणी मात्र के कल्याण की कामना की है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु

माँ कश्चित दुख भाग भवेत, अर्थात संसार में सब सुखी रहें, सब निरोग या स्वस्थ रहें, सब भद्र दिखें और विश्व में कोई दुखी ना हो। वसुधैव कुटुंबकम एक व्यापक मानव मूल्य है, व्यक्ति से लेकर विश्व तक इसकी व्याप्ति है। गरज ये कि संपूर्ण विश्व इसकी परिधि में समाहित है। ये वैयक्तिक मूल्य भी है और सामाजिक मूल्य भी, राष्ट्रीय मूल्य भी है और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य भी, राजनीतिक मूल्य भी है और नैतिक मूल्य भी, धार्मिक भी है और प्रगतिशील मूल्य भी। और यदि इन सब का एक शब्द में समाहार करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये मानवीय मूल्य है। इस मूल्य को सच्चे मन से अपनाए बिना मानवता अधूरी है, मनुष्य अधूरा है, धर्म और संस्कृति अधूरे हैं तथा राष्ट्र और विश्व भी अधूरा और पंगु है। यह मनुष्य की, मानव समाज की, राष्ट्र की अनिवार्यता है। यदि हम विश्व को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो हमें विश्व बंधुत्व की भावना को आत्मसात करना ही होगा। वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र द्वारा भारतीय मनीषियों ने जिस उदार मानवतावाद का सूत्रपात किया उसमें सार्वभौमिक कल्याण की भावना है। यह देश कालातीत अवधारणा है और पारस्परिक सद्भाव, अंतः विश्वास एवं एकात्मवाद पर टिकी है। स्व और पर के बीच की खाई को पाट कर ये अवधारणा स्व का पर तक विस्तार कर उसमें अभेद की स्थापना का स्तुत्य प्रयास करती है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को राष्ट्रवाद का विरोधी मानने की भूल की जाती रही है। जिस प्रकार उदार मानवतावाद का राष्ट्रवाद से कोई विरोध नहीं है, उसी प्रकार वसुधैव कुटुंबकम की भावना का भी राष्ट्रवाद से कोई विरोध नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा शाश्वत तो है ही, यह व्यापक एवं उदार नैतिक मानवीय मूल्यों पर आधारित भी है। इसमें किसी प्रकार की संकीर्णता के लिए कोई स्थान नहीं है। सहिष्णुता इसकी अनिवार्य शर्त है। निश्चय ही आत्मप्रसार, स्व का पर तक विस्तार, स्वयं को और जग को सुखी बनाने का साधन है। वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप समय और दूरी के कम हो जाने से वसुधैव कुटुंबकम की भावना के प्रसार की आवश्यकता और भी बढ़ गई है। किसी देश की छोटी बड़ी हलचल का प्रभाव आज संसार के सभी देशों पर किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ता है। फलतः समस्त देश अब ये अनुभव करने लगे हैं कि पारस्परिक सहयोग, स्नेह, सद्भाव, सांस्कृतिक आदान प्रदान और भाईचारे के बिना उनका काम नहीं चलेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, निर्गुण शिखर सम्मेलन, दक्षेश, G15 आदि वसुधैव कुटुंबकम के ही रूपांतरित नाम हैं। इन राजनीतिक संगठनों से ये तो प्रमाणित होता ही है कि विश्व के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे राष्ट्र पारस्परिकता और सह अस्तित्व की आवश्यकता अनुभव करते हैं तथा इन अवधारणाओं के बीच वसुधैव कुटुंबकम में निश्चय ही विद्यमान थे। यजुर्वेद के एक मंत्र का सार है कि व्यक्ति द्वारा ये कामना की गई है कि संसार के सभी लोग मुझे मित्र की दृष्टि से देखें, मैं भी सभी को मित्र की दृष्टि से देखूं, हम सब एक दूसरे को मित्र की दृष्टि से ही देखें। सच तो ये है कि संसार को देखने की हमारी मूल सोच और दृष्टि यही रही है। व्यक्ति, समाज और देश भी इसी दृष्टि के अनुसार व्यवहार करता रहा है। इसलिए हम विश्व बंधुत्व में विश्वास करते हैं। हमारे जीवन दर्शन के चंद आधारभूत सूत्रों में ये एक महत्वपूर्ण सूत्र रहा है। इस तथ्य को साहित्य और दर्शन में भिन्न भिन्न भावों और भाषाओं में व्यक्त किया जाता रहा है और इसे हम अपने व्यवहार में ढालते रहे हैं। आज पूरा विश्व जिन परिस्थितियों से दोचार हो रहा है उसमें हमारी वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा सर्वाधिक उपयोगी प्रतीत होती है। तकनीक ने फासलों को कम किया है, लेकिन दिलों के फासले तकनीक कम नहीं कर सकती। उसके लिए आवश्यकता है कि भावनात्मक रूप से, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से एक दूसरे को समझने और निकट आने की। ये निकटता समय के साथ गहरी होती है और एकजुट

0: वास्तविकता में परिवर्तित हो जाती है। हमारी भावनाएं साझा होने लगती हैं, हमारे सुख दुख एक लगने लगते हैं, हमारी जरूरतें एक दूसरे की हो जाती हैं। इस तरह जो दुनिया बनती है वह ऐसी दुनिया होती है जिसे हम आने वाली पीढ़ी को सौंपते हुए संतुष्ट भी होते हैं और गर्वित भी। एक ऐसी दुनिया जिसमें एक दूसरे के प्रति द्वेष, घृणा, क्रोध और शत्रुता का भाव शून्य हो। ये पूछा जा सकता है कि ऐसी दुनिया व्यवहार के धरातल पर कैसे संभव है। प्राणी अपने स्वाभाविक गुणों के कारण प्रेम के साथ द्वेष, प्रगति के साथ ईर्ष्या और संयम के साथ क्रोध को भी अपना ही लेता है। ये ठीक भी है क्योंकि ये तो मानव के स्वाभाविक गुण हैं। तो भी उनका परिमाण इतना अल्प होगा कि समाज पर उसका प्रभाव दिखाई नहीं देगा। आमतौर पर मानव समाज में जो भावना, जो अंतर संबंध होंगे वो प्रेम और सद्भाव के ही होंगे। इस तरह हम कह सकते हैं कि एक सुंदर, कल्याणकारी और श्रेष्ठ संसार की रचना के लिए मानव एकजुटता समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
1: अभी आप सुन रही थी वार्ता, वाचन स्वर था आभा गुप्ता का और आलेख था श्री जवाहर प्रजापति का। सखियों, हमें आशा है कि ये वार्ता आपको पसंद आई होगी। तो अब कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं। सखियों, अभी बात चल रही थी कि मी टाइम को हम कैसे स्पेंड करते हैं। ये तो सबकी व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर करता है। अगर आपकी रुचि योगा करने में है तो यकीनन आप स्वयं को तनाव रहित एवं हल्का महसूस करती होंगी, साथ ही ऊर्जावान भी। ये हम सभी जानते हैं कि योग की शुरुआत हमारे देश भारत से ही हुई थी। ये हमारे ऋषि मुनियों की प्राचीन परंपरा है और उनकी लंबी आयु, तन मन, चमकती त्वचा का राज भी है। योगा प्राचीन काल से किया जाने वाला वो अभ्यास है जो शरीर का लचीलापन बढ़ाता है, तनाव और चिंता को कम करता है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। बहनों, अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ वक्त निकालकर सभी को योगा करने की आदत डालनी चाहिए। भले ही शुरुआत 10 मिनट से करें और निरंतरता कायम रखते हुए इस समय को बढ़ा सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि योग करने के कितने ही फायदे हैं, बस आलस कर जाते हैं। योग से रक्तचाप सुधरता है, यानी दिल मजबूत होता है, मांसपेशियों के लचीलेपन को बढ़ाता है, यानी पूरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। बस रेगुलर यदि हम योगा करें तो फिर शादी और पार्टी में बढ़िया सा डांस भी कर सकती हैं। छोटी छोटी शारीरिक समस्याओं को दूर करने में भी योग बहुत ही हेल्पफुल है। तभी तो हमें रोज़ थोड़ा सा समय इसके लिए ज़रूर निकालना चाहिए। योगा करने से हमारी एकाग्रता में भी सुधार आता है। प्राणायाम और ध्यान से मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, परिणाम स्वरूप याददाश्त और फोकस बेहतर होते हैं। तो प्रॉमिस कीजिए कि डेली योगा करेंगी। अगर पहले से ही कर रही हैं तो आप बधाई की पात्र हैं, समझदार हैं, अपनी सेहत के प्रति जागरूक हैं। अगर हमें सुबह टाइम नहीं मिलता, हम शाम का समय फिक्स कर सकते हैं। और आजकल गर्मियों में तो हर पार्क में आपको योगा करते हुए, हंसते खिलखिलाते हुए लोग समूहों में दिख जाएंगे, तो फिर हम भी उन्हीं में शामिल होते हैं, योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाते हैं। निरोगी रहकर अपने वजन को नियंत्रित करते हुए कमनीय काया के मालिक बनकर खुशी से इतराइए और अपनी तारीफ सुनिए।

बहनों, गर्मी के तेवर तो आप देख ही रही हैं। ऐसे में जब वातावरण का तापमान बढ़ता है तो शरीर में पानी की कमी हो सकती है, क्योंकि बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को काम करने के लिए अब अधिक पानी की ज़रूरत होती है। तो हमें गर्मियों में भरपूर पानी पीना चाहिए। बहनों, गर्मियों में हमें अपने खान पान का ख्याल रखना चाहिए। गर्मी में यदि हमारा खान पान गलत हो जाता है तो शरीर में पानी की कमी हो सकती है। और

उसका नतीजा होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए हमें हरी सब्जियां, पालक, चौलाई आदि का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। इनमें पानी तो होता ही है, साथ ही होता है आयरन और कई सारे विटामिन। बहनों, लौकी में भी पर्याप्त मात्रा में पानी होता है। शरीर में पानी की कमी ना होने दें। डिहाइड्रेशन के लक्षणों को अनदेखा ना करें। डिहाइड्रेशन के लक्षण हो सकते हैं जैसे हल्का सिर दर्द होना, जुबान का सूखना, आँखों में भारीपन होना, पेशाब में जलन होना, या कभी कभी इसका

करना, ये सभी डिहाइड्रेशन के लक्षण हैं। तो इन्हें पहचानें और खूब पानी पिएं। और हम ठंडा दूध पी सकते हैं, छाछ का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी शरीर को किसी भी तरह पानी की पर्याप्त मात्रा दें। प्यास लगने का इंतजार न करें, हर एक घंटे में एक गिलास पानी पीना है। साथ ही हमें 20 किलोग्राम वजन पर एक लीटर पानी पीना चाहिए। इसके साथ ही नींबू पानी, नारियल पानी या ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स का हम सेवन कर सकते हैं। ये शरीर के पानी की आपूर्ति तो करते ही हैं, साथ ही कोशिकाओं के इलेक्ट्रोलाइट स्तर को भी बैलेंस रखते हैं। बहनों ये भी समझते हैं कि तरल पदार्थों के साथ साथ कुछ ऐसे ठोस भोज्य पदार्थ भी हैं जो हमें डिहाइड्रेशन से बचाते हैं, जैसे खीरा, इसमें पानी के साथ साथ सिलिका भी होता है। तरबूज, इसमें पानी तो भरपूर होता ही है, साथ ही इसमें पोटेशियम भी रहता है। आप कच्चा नारियल खा सकती हैं, कच्चे आम का पना बनाकर पी सकती हैं। बाहर की प्रिजर्वेटिव डले हुए चीज़ों को अवॉइड ही करें। अल्टीमेटली अपने आप को स्वस्थ रखें, खूब पानी पिएं, योगा करें, मी टाइम में स्वयं को और बेहतर बनाने की कोशिश करें। और ऐसे ही सुनते रहिए गीत संगीत और रोचक जानकारियों व मज़ेदार बातों से भरपूर आपका और हमारा अपना कार्यक्रम महिला सभा। सखियों कार्यक्रम के समापन का समय हो चला है, तो लेते हैं आपसे विदा। अपनी सखी वंदना को दीजिए जाने की अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। वक्त है अंतराल का।

0: मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम। आकाशवाणी
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान है, जिसमें आप सुनेंगे निरंजन कुमार शर्मा के गाए लोकगीत। पहला हास्य गीत, गारी और फिर लोक भजन।

सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ।

0: रंजन कुमार शर्मा के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेन

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है, जिसमें आज आप सुनेंगे पीयूष झा की गाई कुछ गजलें।

पीयूष झा की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक।

0: हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत मोहब्बत फिल्म से, आवाज किशोर कुमार और साथियों की, इंदीवर का गीत और संगीत बप्पी लहरी का।

एतवार। लीजिए सुनिए, इस फिल्म का गीत आवाज़ आशा भोंसले और भूपिंदर की है, हसन कमाल का गीत और बप्पी लहरी का संगीत।

0: या इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। वह यहां 22 जून तक बैतूल, ओंकारेश्वर और जबलपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी और श्योपुर के प्रसिद्ध कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण भी करेंगी। श्रीमती मुर्मू कल ओंकारेश्वर पहुंचेंगी, जहां वे भगवान ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन व आरती करेंगी। इसके बाद वे रात्रि विश्राम NHDC गेस्ट हाउस में करेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति बैतूल में ब्रह्म कुमारी के कार्यक्रम में शामिल होंगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति अगले दिन 19 जून को ओंकारेश्वर से सुबह अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। राष्ट्रपति 20 जून को शाम में जबलपुर एयरपोर्ट आएंगी। राष्ट्रपति 21 जून को प्रातः जबलपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस कार्यक्रम के पश्चात रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें कॉन्क्लेव समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। मायगांव की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश नाथ काटजू की जयंती आज श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विधानसभा परिसर में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, विधायक भगवान दास सबनानी, विधानसभा के अधिकारी कर्मचारियों के साथ स्वर्गीय काटजू के परिजन भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश नाथ काटजू केवल एक राजनेता नहीं बल्कि देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले समर्पित सेनानी थे। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भी काटजू ने विभिन्न संवैधानिक और प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए देश और समाज की सेवा में अभूतपूर्व योगदान दिया। डॉक्टर यादव ने यहां मीडिया से बात करते हुए नीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ लगातार समन्वय में काम कर रही है, ताकि पिछली बार जैसी कोई स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो।
1: के नीट के समय 11 बजे से जो बच्चे आएंगे उनके रोल नंबर, उनके फॉर्म का वेरिफिकेशन, ऐसे कई काम करेंगे। जहां शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में आवागमन की थोड़ी कठिनाई है, तो वहां बसें बड़े महानगरों में लगा देंगे। साथ ही साथ वहां रिफ्रेशमेंट का सेंटर चालू करने के लिए भी हमने कहा, पीने का पानी, छाया का इंतजाम, ऐसे सारे प्रबंधन सरकार के माध्यम से किए गए हैं। भारत सरकार इस बात के लिए कृतसंकल्पित है कि बच्चों के एग्जाम निर्विघ्न सम्पन्न हो जाए।
0: प्रदेश में मानसून की एंट्री अब 21 से 23 जून के बीच होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून फिलहाल तेलंगाना के भद्राचलम क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से ठहरा हुआ है। इसकी वजह से मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 34 जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। ओबीसी आरक्षण की सुनवाई जबलपुर उच्च न्यायालय में नए सिरे से होगी। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस भगवती प्रसाद शर्मा की नई डिवीजन बेंच ने स्पष्ट कर दिया कि पूर्व चीफ जस्टिस की खंडपीठ के समक्ष हुई आंशिक सुनवाई को आधार नहीं बनाया जा सकता। आगरमालवा कलेक्टर प्रीति यादव को कल साप्ताहिक जनसुनवाई में 137 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने मौके पर ही निराकरण योग्य प्रकरणों का संबंधित अधिकारियों से समाधान करवाया। पन्ना जिले में भी आज महाराणा प्रताप और बुंदेल केशरी महाराज छत्रसाल जयंती

0: गौरव दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा। 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वॉशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताज़ा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
2: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
1: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी सीईओ के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख

0: प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने ये उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
2: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
3: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
1: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी

0: और उसके राजनीतिक विंग रिवॉल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
1: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।

0: योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
1: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा, सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश भेजी है आदर्श नगर मलोट राज से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा, बलहरी बड़खेरा से संतोष ठाकुर, काशी तिवारी, सुमेरू पटेल, सुदामा सेन, बारेलाल, मुन्ना खान एवं ग्राम पहुरुआ से राम कुमार लोधी, गोविंद यादव।

और उनके सभी साथियों ने। इन्होंने सुनना चाहा है फर्स्ट लव लेटर फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने, अनजान का गीत और बप्पी लहरी का संगीत।

करियादंड हट्टा ज़िला बालाघाट से हुलास राम कटारी, नानीश्वरी कटारी, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर रही मेहराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा जास्मिन और प्रयागराज भट्ट। आप सब ने सुनना चाहा है किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ कभी कभी फिल्म का ये नगमा। साहिर के लिखे गीत की धुन बनाई है खय्याम ने।

अगले गीत की फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं कवर कॉलोनी बढ़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूरा श्रीमाली, सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तान्या, राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत एवं समस्त राजावत परिवार। आप सबने पसंद किया है चांदनी फिल्म का ये गीत, आवाज़ें श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी की, गीत आनंद बख्शी का और संगीत शिव हरी का।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश। अगली फरमाइश भेजी है गोलाघाट बक्सर से विजय केसरी, गौरीशंकर केसरी, शंभू केसरी, नया बाजार बक्सर से राजेश केसरी, पंकज केसरी, रोहन केसरी, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सनमति पंचोलिया। आप सबने पसंद किया है राजा हिंदुस्तानी फिल्म का ये गीत। आवाज़ें कुमार सानू और अलका याग्निक की है। समीर के लिखे गीत को सुरों में ढाला है नदीम शवण ने।

0: इसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियों में G7 सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वह इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कूनो अभ्यारण्य भी जाएंगी। ओबीसी आरक्षण की सुनवाई जबलपुर उच्च न्यायालय में नए सिरे से होगी। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस भगवती प्रसाद शर्मा की नई डिवीजन बेंच ने स्पष्ट कर दिया कि पूर्व चीफ जस्टिस की खंडपीठ के समक्ष हुई आंशिक सुनवाई को आधार नहीं बनाया जा सकता। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए संकेत दिए कि समान संहिता संबंधी प्रस्ताव विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अब ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी गई है। प्रदेश में मानसून की एंट्री अब 21 से 23 जून के बीच होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून फिलहाल तेलंगाना के भद्राचलम क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से ठहरा हुआ है। इसकी वजह से मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। और ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज ब्रिटेन में शाम 7 बजे से भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 88.32 मीटर, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। शाम 5:02

पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 6 बजे। ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और नीदरलैंड के मध्य लीड्स में खेले जा रहे महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल हम आपको 7:21 पर आकाशवाणी दिल्ली से सुनवाएंगे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 5:33 पर और रात 11:45। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शाम की सभा में कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।

डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। प्रस्तुत है लोकम सुगम संगीत, जिसमें आप सुगम लोक संगीत में आप सुनेंगे निरंजन कुमार शर्मा के गाए गीत और सुगम संगीत में पीयूष झा की गाई गजलें।

लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे निरंजन कुमार शर्मा को। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान था। और सुगम संगीत में आप सुनिए पीयूष झा की गाई गज़लें। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

पीयूष झा की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान था। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल।

0: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज़ रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
1: डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। पहला गीत चाइना गेट फिल्म से, आवाज सपना अवस्थी और अनु मलिक की, समीर का गीत और अनु मलिक का संगीत।

इजाज़त लीजिए, सुनिए इस फिल्म का नगमा आशा भोंसले की आवाज़ में, गुलजार का लिखा गीत और संगीत बद्ध किया डी वर्मन का।

बप्पी लहरी और एस जानकी की आवाज़ों में सुनिए साहिब फिल्म का ये नगमा। अनजान के लिखे गीत की धुन बनाई है बप्पी लहरी ने।

अगला गीत खलनायक फिल्म से मनहर उदास, अलका याग्निक और साथियों की आवाजें हैं। आनंद बख्शी का गीत है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

कार्यक्रम का अंतिम नगमा ईश्वर फिल्म के इस गीत से नितिन मुकेश और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ें हैं। अनजान का गीत है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: इसके साथ ही चित्रपट संगीत संपन्न हुआ। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। 3:58 हुए हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियां में G7 सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताहांत तक खुल जाएगा। इससे ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वह इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रपति कूनो अभ्यारण्य भी जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में मीडिया से बात करते हुए नीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ लगातार समन्वय में काम कर रही है ताकि पिछली बार जैसी कोई स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो। ओबीसी आरक्षण की सुनवाई जबलपुर उच्च न्यायालय में नए सिरे से होगी। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस भगवती प्रसाद शर्मा की नई डिवीजन बेंच ने यह स्पष्ट किया है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अब ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी गई है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, छतरपुर समेत 34 जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई है। और U17 महिला फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए पहली बार युवा लीग मुकाबले 18 जुलाई से छत्तीसगढ़ में होंगे। फाइनल मुकाबला 29 जुलाई को होगा। टूर्नामेंट में देश की 16 टीमें भाग ले रही हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। लीजिए सुनिए उर्दू प्रोग्राम कहकशां। ये कार्यक्रम गजलों पर केंद्रित कार्यक्रम आबशारे गजल।

दोस्त वाजिद खान, इस प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, आबशार गजल प्रोग्राम के तहत आज हम बात करेंगे बहादुर शाह जफर की हयात और शायरी के उन्वान पर। सामईन, मुगलिया सल्तनत के आखिरी तख्तनशीन बादशाह बहादुर शाह की विलादत अकबर शाह सानी के जमानाए वली अहदी में 18 शाबान 1189 हिजरी बमुताबिक 14 अक्टूबर 1775 को हफ्ते के रोज गुरूब आफ्ताब के वक्त दिल्ली में हुई। अबू जफर तारीखी नाम था जिसके आदाद 1189 होते हैं। अपने तारीखी नाम अबू जफर की रियायत ही से उन्होंने अपना तखल्लुस जफर रखा था। जफर की तालीम तरबियत किलाए मुअल्ला में पूरे एहतमाम के साथ हुई, जहां मुख्तलिफ उलूम फ़नून में उन्होंने महारत हासिल की। बहादुर शाह किले की जिंदगी और वहां के मुख्तलिफ कामों में भी दिलचस्पी लेते थे। किले के दस्तूर के मुताबिक बहादुर शाह जफर की शादी 9 उम्री में ही कर दी गई थी, जिसके सबब वो ताजपोशी के वक्त पोते पोतियों वाले थे। बादशाह बहादुर शाह की बेगमात कितनी थीं, उनकी तादाद सही मालूम नहीं, लेकिन मुख्तलिफ जराए से ये नाम सामने आते हैं। शराफत महल बेगम, जीनत महल बेगम, ताज महल बेगम, शाह आबादी बेगम, अख्तरी महल बेगम, सरदारी बेगम, इनमें जीनत महल उनकी सबसे ज्यादा चहीती थी। जफर के तकरीबन 16 बेटे और 31 बेटियां थीं, जिनमें से 12 शहजादे 1857 तक जिंदा थे। अंग्रेजों की तरफ से जफर को 1,00,000 रुपए पेंशन मिलती थी, जो उनके शाहाना अखराजात के लिए काफी नहीं थी। साहूकारों के तकाजे उनको फिक्रमंद रखते थे। लाल किले के अंदर चोरियों और गबन के वाकया शुरू हो गए थे। अंग्रेजों ने फैसला कर लिया था कि दिल्ली की बादशाहत खत्म कर दी जाए और शहजादों का वजीफा भी मुकर्रर कर दिया जाए।

दोस्तों, अभी आप गुलूकार गणेश दत्त जोशी की जादुई आवाज में गजल समात फरमा रहे थे और कलाम था बहादुर शाह जफर का। सामीन, अंग्रेजों से मुहायदा हो जाने के कुछ ही दिनों बाद 1857 का हंगामा बरपा हो गया, जिसकी कयादत दिल्ली में शहजादा मुगल ने की। अंग्रेजों ने बादशाह बहादुर शाह जफर को दिल्ली में हंगामा कर रहे बागियों का साथ देने और आज़ादी की तहरीक की हिमायत करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। 19 मार्च 1858 को अदालत ने बहादुर शाह को उनके तमाम जराइम का कसूरवार ठहराया। 7 अक्टूबर 1858 को साबिक शहंशाह बहादुर शाह जफर ने दिल्ली को हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया और रंगून में जिला वतनी के दिन गुजारते हुए 7 नवंबर 1862 को सुबह 5 बजे इस दारे फानी को अलविदा कहा। एक शेर में वो कहते हैं, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। बहादुर शाह जफर सिर्फ आखिरी मुगल बादशाह ही नहीं थे, बल्कि वो उर्दू शायरी में दाखली एहसासात, दर्द व कुर्ब और तसव्वुफ के एक इंतहाई मोतबर और बुलंद पाया शायर थे। उनकी शायराना अजमत का असल राज उनके लहजे की सच्चाई, बेसाख्तगी और दर्द की वो शिद्दत है जो आज भी पढ़ने वालों की आंखें नम कर देती है, क्योंकि जफर की शायरी महज तखयलाती नहीं बल्कि उनकी अपनी जिंदगी के तल्ख

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम कहकशां। डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण।
1: कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल
2: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज है। भारत की धड़कनों को हम सब के बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।
0: डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। संग्रहालय के अंतर्गत अब हम आपको सुनवा रहे हैं धारावाहिक जंग लगी तलवार की 12वीं कड़ी।
3: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना, बलबीर स्वामी शास्त्री जी को अवगत कराता है कि जल्द ही अगर कुछ न किया गया तो मजदूर हमारे खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। शास्त्री जी हड़ताली मजदूरों का पक्ष लेकर ठाकुर साहब से बात करते हैं, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकल पाता। हड़ताल जारी रहती है। बसुमती नारायणी से मुंशीगंज वालों द्वारा अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना सुनाती है। रोटी के लिए लड़ रहे जानवरों से हड़ताली मजदूर का एक भूखा बच्चा रोटी छीनने जाता है तो जानवर उस पर हमला करके उसे मार डालते हैं। इससे दलितों की बैठक में दहशत फैल जाती है। यूनियन का सचिव कालूराम नारायणी से मिलता है और उसे ठाकुर साहब के कपड़े धोने के काम पर वापस आने के लिए कहता है। नारायणी सोचकर जवाब देने की बात कहकर उसे टाल देती है। हड़ताली मजदूरों का जुलूस नारे लगाते हुए आगे बढ़ता है।

0: देख प्रभु, चुप हो जा और सारी बात मुझे तू साफ साफ बता, शायद मैं तेरे लिए कुछ कर सकूं। भृगु,
1: मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे यशवंत, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं।
0: अरे धैर्य रख, हिम्मत से काम ले भृगु, हिम्मत से काम ले।
1: मेरा धैर्य टूट चुका है, हिम्मत जवाब दे चुकी है।
0: हाँ?
1: जिसके घर की आबरू चली जाए, घर की जवान लड़की किसी गैर के साथ भाग जाए, वो क्या मुंह लेकर जिएगा, क्या मुंह लेकर।
0: लेकिन भृगु,
1: मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए, साई नदी में कूद कर मैं अपनी जान दे दूंगा, जान दे दूंगा मैं अपनी।
0: रुक जा भृगु, भृगु रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा भृगु, भगवान के लिए रुक जा।
1: मैं साई नदी की गोद में समाने जा रहा हूँ, तू वापस लौट जा यशवंत।
0: तुझे तेरी माँ बसुमती काकी की सौगंध भृगु, माँ विंध्यवासिनी की कसम, रुक जा भृगु, रुक जा। रुक जा भृगु, रुक जा। देख, मुझ पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। पहले पहले तू ये बता कि ये सब हुआ कब।
1: कल शाम को।
0: किसके साथ गई?
1: पेट की भूख मिटाने के लिए पीस वर्करों के पास जाया करती थी।
0: हाँ?
1: उनसे खाना मांगती थी, मगर मगर कल शाम को।
0: क्यों? पीस वर्करों के पास जाती थी? अब क्या कोई पीस वर्कर भी फरार है?
1: राजा राम नाम का एक वर्कर भी कल शाम से दिखाई नहीं पड़ रहा। साइट पर जाकर पूछा तो पता लगा कि राजा राम और पार्वती को आखिरी बार कल शाम स्टेशन पर देखा गया था।
0: इसका मतलब दोनों कल शाम वाली पैसेंजर ट्रेन से निकल गए। अब भृगु, तूने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई क्या?
1: नहीं भाई।
0: मुझे तो लगता है कि वर्क साइट पर गश्त लगाने वाले कांस्टेबलों का भी इसमें हाथ होगा। पुलिस चौकी में जाकर रिपोर्ट लिखानी होगी। पुलिस पार्वती को जरूर ढूंढ निकालेगी और इस राजा राम का अपराध साबित होगा और उसे सजा जरूर मिलेगी। भृगु,
1: अपराध राजा राम का नहीं, तुम्हारी यूनियन का है।
0: हाँ?
1: यूनियन के नेताओं का है।
0: ये तू क्या कह रहा है भृगु? अरे होश में तो है तू?
1: नहीं हूं मैं होश में। तुम्हारे नारे सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। तुम लोग हड़ताल करते हो, घर में औरतें और बच्चे भूखे हैं, और तुम्हारी यूनियन।
0: लेकिन भृगु,
1: यूनियन के नेता खलासी लंगर पर बैठकर नशा करते हैं और नशा करके सोचते हैं कि वो बहुत बड़ा महान काम कर रहे हैं। अरे तुम्हारी यूनियन के किसी नेता में त्याग की भावना नहीं है।
0: अरे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती भृगु, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। देख, सब इंसान एक जैसे नहीं होते।
1: बिल्कुल ठीक कहा तूने, सब इंसान एक जैसे नहीं होते। हम लोग सारी जिंदगी कंपनी का काम करते करते बिता देते हैं, लेकिन हमेशा हमेशा दूसरों की जूठन खाने वाले जानवरों की तरह दुत्कार दिए जाते हैं।
0: अब
1: और अंत में परमानेंट होने की आस लिए इस दुनिया से विदा हो जाते हैं।
0: अरे भृगु, हमारी हड़ताल का मकसद यही है कि हम लोगों के साथ ये भेदभाव खत्म हो, इंसान बराबर हो, कानून सबके लिए समान हो। लेकिन भृगु, ऐसा तब होगा जब हम सब मिलकर यूनियन का साथ देंगे, अपनी एकता को मजबूत करेंगे, मिलजुल कर एक नई क्रांति को जन्म देंगे तब।
1: खामोश यशवंत, खामोश। तुम्हारी यूनियन की वजह से हमारे घर की लड़की भाग गई। आने वाले दिनों में और खून खराबा होगा, खून की नदियां बहेंगी।
0: अरे भृगु,
1: तुम लोगों की देह में वीर भगत सिंह जैसा खून नहीं है। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते।

0: ठाकुर साहब बीमार क्या हुए, हमारा पीना पिलाना मौज मस्ती का काम सब रुक गया।
1: ये बोतल का इंतजाम तो मैंने कर लिया।
0: अरे बाप, मेरे भाई क्या बात है, पर तू इसे लाया कहाँ से?
1: अरे वो कंपनी का पुराना टायर बेचकर इंतजाम किया इस बोतल का।
0: अरे लेकिन बाबू भैया, बोतल के साथ जब तक अच्छा खाने का सामान न हो, तब तक पीने का मजा नहीं आता।
1: कह तो तू ठीक रहा है रामू, पर अब खाने का इंतजाम कहाँ से करें? अरे जेब में तो फूटी कौड़ी भी नहीं बची।
0: अरे एक रास्ता है बाबू, एक रास्ता है मेरे भाई।
1: तो बता ना जल्दी से वो रास्ता।
0: क्यों ना हम कंपनी के भंडार में रखी हुई जिलेटिन की छड़ों की चोरी करें, हैं? और उन छड़ों का विस्फोट हम साई नदी में करें, बहुत सी मछलियां मर जाएंगी और उन्हें भून कर खाने का मजा आ जाएगा।
1: अरे वाह! पर रामू, अगर चोरी करते हुए पकड़े गए तो?
0: अरे उसकी चिंता मत कर, स्टोर कीपर मेरी जान पहचान का है।
1: अच्छा।
0: अरे पैग दो पैग उसे भी पिला दे।
1: अरे ये तो ठीक है, चल चल चल चल चल चल चल।
2: अरे भाई सुनो, ठाकुर साहब से कहो कि राधे श्याम उनसे मिलना चाहता है।
3: कौन राधे श्याम?
2: लेबर इंस्पेक्टर का सहायक।
3: अच्छा अच्छा, आप अंदर जा सकते हैं, ठाकुर साहब आपका ही इंतजार कर रहे हैं।
2: नमस्कार ठाकुर साहब।
4: नमस्कार।
2: कैसी तबीयत है ठाकुर साहब?
4: पहले से बेहतर है, आओ बैठो।
2: माफ करना, मैं जरा जल्दी में हूँ, आपका आदेश मिला तो आपके दर्शन करने चला आया।
4: अच्छा।
2: रामू मामू कह रहे थे कि आपको मुझसे जरूरी काम है।
4: अरे भाई तुम तो जानते ही हो कि कंपनी के मजदूरों की एक महीने से हड़ताल चल रही है।
2: सुना है इस हड़ताल की चर्चा लखनऊ होते हुए दिल्ली तक पहुँच चुकी है।
4: भाई यही तो समस्या है, कंपनी पर लगातार दबाव आ रहा है कि मजदूरों के साथ जल्दी से जल्दी समझौता किया जाए। तुम लेबर इंस्पेक्टर के सहायक हो, घुटे हुए हो, तुम ही बताओ कि क्या किया जा सकता
2: है। मजदूरों की यूनियन का सरपरस्त लोकल लीडर शास्त्री है ना?
4: उसका नाम ललो मेरे सामने, उसी की वजह से तो आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा।
2: मेरी मानो तो उस शास्त्री को खरीद लो, समझो कि हड़ताल की समस्या से छुटकारा मिल गया।
4: अरे राधे श्याम, वो बिकने वाला नहीं है, नहीं तो कंपनी उसे कब का खरीद चुकी होती।
2: ठाकुर साहब, पीतल के भाव सोना बिकते हुए देखा है कभी?
4: नहीं तो।
2: लेकिन आपने यही करने की कोशिश की है, आप थैली का मुंह खोलिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए।
4: क्या तुम शास्त्री को रुपये के सामने झुका सकते हो?
2: लाठपकाते दौड़ा आएगा शास्त्री। हाँ, मेरी कमीशन देना मत भूलना।
4: अरे भाई तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी कमीशन तुम्हें पहले ही मिल जाएगी।
2: ठीक है ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अभी बहुत से काम करने हैं मुझे।
4: हाँ।

0: बापू।
1: हाँ बेटा।
0: बापू, मछली खा खा कर मन ऊब गया है, आज तो साग रोटी खाने का मन कर रहा है।
1: अरे जगन्नाथ, मेरा मेरा राजा बेटा। देख बेटा, दलितों की बैरक में 20 दिनों से किसी ने भी अन्न का स्वाद नहीं चखा है बेटा। लोग तो जंगली फल और पेड़ के पत्ते चबा चबा कर पेट भर रहे हैं। एक बेटा तू है जो साई पर जाकर मछलियां पकड़ लाता है, नहीं तो जगन्नाथ हम भी पत्ते चबाने पर विवश हो जाते बेटा।
0: नहीं बापू, आज तो मैं रोटी या भात ही खाऊंगा।
1: नहीं नहीं, देख जगन्नाथ बेटा, जिद नहीं करते।
0: नहीं बापू, मछली

0: डॉक्टर, मेरा पेट खराब हो गया है।
1: जगन्नाथ जगन्नाथ, तू तो मेरा राजा बेटा है। देख बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन, मैं तुझे कल साग रोटी जरूर खिलाऊंगा।
0: सच बापू?
1: हाँ बिल्कुल सच।
0: वादा?
1: अरे वादा है बेटा।
0: तो बापू, मैं मछली पकड़ने जाऊं?
1: हाँ हाँ, जा बेटा जा।
0: कल साग रोटी खाने को मिलेगी, कल साग रोटी खाने को मिलेगी, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा।
2: भैया बामू।
3: हाँ रामू।
2: साई नदी के तट पर तो हम आ गए। हाँ। अब हमें पानी में जिलेटिन की छड़का विस्फोट कर देना चाहिए।
3: हाँ। रुक रुक रुक रुक। पहले चारों तरफ देख लिए। हाँ। कोई आसपास है तो नहीं?
2: हाँ देखता हूँ।
3: हाँ देख देख। कहीं ऐसा ना हो कि हम धरे जाएं और जिलेटिन चुराने के आरोप में हमें जेल की हवा खानी पड़े।
2: अरे कोई नहीं है, चल फटाफट कर दे विस्फोट।
3: कर दो?
2: हाँ, ले ले ले, कर, कर।
3: ये ये ये किया मैंने विस्फोट।
2: भैया बाबू भाग, मैंने किसी बच्चे की चीख सुनी है, भागने भैया।
3: तो मैंने भी सुनी है।

0: क्या हुआ? ये विस्फोट कैसा था?
1: मैंने भी किसी बच्चे की चीख सुनी थी। किसका बच्चा होगा वो?
2: हाँ, जरूर ये हड़तालियों की कारस्तानी होगी।
3: हाँ हाँ, उन्हीं का काम होगा ये। अरे अरे देखो तो, अरे यहाँ तो जगन्नाथ की लाश पड़ी है। तो क्या वो चीख इसी की थी? अरे अरे बेटा जगन्नाथ, तू तो चला गया पर अपने बाप लीचू को जीते जी मार गया तू। अरे बेटा,

0: लीचू, लीचू।
1: क्या बात है काका?
0: अरे जल्दी कर, मेरे पीछे आ।
1: माफ करना काका, आज मेरी इमरजेंसी ड्यूटी लगी हुई है, अभी मैं कहीं नहीं चल सकता।
2: अरे सिद्ध ना कर लीचू, तू इसी वक्त हमारे साथ चल।
1: क्या बात है यशवंत, तुम लोगों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ क्यों है?
2: अरे तू हमारे साथ चल, रास्ते में हम तुझे सब बता देंगे।
1: लगता है कोई गंभीर बात है। अच्छा ठीक है, चलो चलो चलता हूँ।
0: अपना जी कड़ा कर ले लीचू, अपना जी कड़ा कर ले।
1: अरे बात क्या है काका, आप लोग मुझे कुछ बताते क्यों नहीं है?
2: अरे धीरज रख लीचू भाई, थोड़ी देर में तेरी समझ में सब आ जाएगा, बस तू हमारे साथ चल।
0: चल चल चल चल चल चल।

0: जगन्नाथ जगन्नाथ मेरे बेटे, अरे क्या हुआ तुझे, ये तो झुलस कैसे गया? अरे कोई बोलता क्यों नहीं बोलता, मेरे जगन्नाथ को क्या हुआ है? अरे क्या हुआ जगन्नाथ?
1: अरे तेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा लिचू, नहीं रहा।
0: तू झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। अरे मेरा बेटा मर नहीं सकता, मर नहीं सकता, नहीं मर सकता मेरा बेटा। अरे मेरा बेटा तो साग सब्जी खाएगा। उठ उठ बेटा, उठ, चल चल चल चल घर, चल घर चल।
1: लिचू,
0: मैं तुझे साग रोटी खिलाऊंगा, दाल भात खिलाऊंगा।
2: लिचू, हौसला रख, हौसला रख लिचू,
1: अपने आप को संभाल, लिचू अपने आप को संभाल।

0: आप तो समझो
1: क्या हो गया रे लिचू, हिम्मत से काम ले लिचू,
0: अपने आप को संभाल लिचू, अपने आप

0: सुनो जी, कैसी तबीयत है आपकी?
1: नारायण, जिंदगी से निराश हो चुका हूं मैं। अब तो भगवान से यही दुआ मांगता हूँ कि वो मुझे
0: बस बस, आप ज्यादा ना बोलिए, बोलने से आपको तकलीफ होती है, खांसी भी आती है। जरा हिम्मत करके मुन्ने का ख्याल रखना, मैं भी आती हूँ।
1: नारायणी, तू तू कहीं जा रही है?
0: जी, बड़ी मेहनतों के बाद अस्पताल में सफाई का काम मिला है। अब मुन्ना दूध के लिए नहीं रोएगा, आपका इलाज भी हो जाएगा।
1: नारायणी, नारायणी तू कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है तू। अरे भगवान तेरी जैसी पत्नी सभी को दे, सभी को दे।
0: आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो जाएगी। आप, मैं जा रही हूँ, मुन्ने का ख्याल रखना।
2: दरोगा जी आपसे मिलने आए हैं।
3: दरोगा जी मिलने आए?
2: जी।
3: उन्होंने ये नहीं बताया कि काम क्या है?
2: जी नहीं।
3: ठीक है, अंदर भेज दो।
2: जी बहुत अच्छा। दरोगा जी, ठाकुर साहब आपको बुला रहे हैं।
4: अरे यार, रास्ता दे।
3: आइए आइए दरोगा जी, कैसे आना हुआ?
4: ठाकुर, साई नदी में जिलेटिन का विस्फोट करते हुए पुलिस ने कंपनी के दो मजदूरों को गिरफ्तार किया है।
3: क्या क्या नाम है उन दो मजदूरों का?
4: एक का नाम रामू है और दूसरे का बामू।
3: रामू बामू, तो आप मुझसे क्या चाहते हैं?
4: उन दोनों का कहना है कि वो आपके आदमी हैं, आप उनकी जमानत लेंगे?
3: मैं उनकी जमानत लूंगा? देखिए दरोगा जी, कंपनी के 4,000 मजदूर यहाँ काम करते हैं, क्या उन सबका ठेका मैंने ले रखा है?
4: यानी आप उन दोनों की जमानत देने से इनकार कर रहे हैं, यही ना?
3: जी बिल्कुल ठीक समझा आपने।
4: ठाकुर साहब, पुलिस ने कंपनी की वर्कसाइट की भी तलाशी ली है।
3: पुलिस ने वर्कसाइट की तलाशी ली?
4: जी हाँ।
3: लेकिन वो किस लिए?
4: इसलिए कि रामू और बामू का बयान है कि विस्फोटक जिलेटिन की चोरी उन्होंने वहीं से की थी।
3: वो झूठ बोलते हैं दोनों।
4: झूठ वो नहीं, आप बोल रहे हैं ठाकुर साहब।
3: देखिए, मुझ पर किस आधार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं?
4: आरोप? ठाकुर साहब, पुलिस ने जिलेटिन का सारा भंडार खोजकर सारी विस्फोटक सामग्री अपने कब्जे में ले ली है। वर्कसाइट पर भी गैर कानूनी ढंग से विस्फोटक का ढेर लगाने और विस्फोटक की अलग व्यवस्था ना करने के अपराध में कंपनी पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और सुनो, जुर्माना ना भरने की स्थिति में आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है।
3: क्या?
5: शास्त्री जी, कुछ हड़ताली मजदूरों ने विद्रोह कर दिया है। वो लोग हमें जगह जगह तलाश कर रहे हैं, हमें छिप कर रहना पड़ रहा है।
6: तो मैं क्या करूं?
5: आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके कंपनी के अधिकारियों से बात कीजिए, इस समस्या का कोई तो समाधान निकालिए।
7: हाँ शास्त्री जी, मजदूरों को अब विश्वास होने लगा है कि हम लोग कंपनी के समझौता पत्र के खिलाफ नहीं जा सकते। मजदूरों ने कसम खाई है कि वो हम यूनियन वालों को साई के बालू में जिंदा दफना देंगे।
6: तो मुझसे क्या चाहते हो तुम?
5: पिछली बार हम लोग आपके साथ कंपनी के अधिकारियों से नहीं मिले थे, लेकिन लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं, हमें अधिकारियों से मिलना पड़ेगा।
6: सुनो, तुम लोगों को नेता समझना शर्म की बात है।
5: क्या?
6: शर्म की बात? अरे भले ही हड्डियां चूर चूर हो जाए, देह से मांस सड़कर गिर जाए, लेकिन मजदूरों को दिया हुआ वचन पूरा करना होगा। हड़ताल जारी रखो, समझे तुम?
7: लेकिन शास्त्री जी, अब हमारा मजदूरों के बीच जाना खतरे से खाली नहीं है। हाँ, अगर उनके हक में हमारे पास कोई फैसला हो तो अलग बात है।
6: देखो, मैं कुछ दिन के लिए मुंशीगंज से बाहर रहूंगा।
7: जी
6: भाई।

0: तुम लोग तो जानते ही हो कि दूर दूर से उधर डालमऊ की तरफ से भी लोग मुझसे मिलने सलाह लेने आते रहते हैं।
1: हाँ, हाँ। अब हम लोगों का मार्गदर्शन कीजिए शास्त्री जी, अब हम लोग क्या करें?
0: हाँ, एक काम करो
1: जी,
0: इस बार तुम लोग खुद मिलने जाओ।
1: हम लोग?
0: हाँ हाँ भाई, तुम लोग।
2: ठीक है शास्त्री जी,
1: हम लोग
2: मिलने जाएंगे। चलो बलबीर।
3: माँ,
4: हाँ बेटा,
3: आज मैंने भरपेट खाया।
4: क्या खाया बेटा?
3: कच्चा मांस।
4: क्या?
3: बहुत दिनों का भूखा था ना, इसलिए।
4: क्या कच्चा मांस?
3: हाँ माँ।
4: कहाँ मिला?
3: वो मुंशीगंज के कसाई है ना,
4: हाँ?
3: वो ही फेंक कर गए थे।
4: बेटा थोड़ा मांस मेरे लिए भी ले आता तो मेरा भी पेट भर जाता।
3: क्या करता माँ, वहाँ इतने सारे भूखे लड़के थे कि पल भर में मिट्टी में सना मांस चट कर गए।
4: बेटा कल तू बाकी लड़कों से पहले पहुँच जाना, हाँ, और जितना भी मिले सब उठा लाना। कम से कम दो एक दिन के खाने का तो इंतजाम हो जाएगा।
3: हाँ।
4: आगे भगवान मालिक है। क्या हुआ बेटा? अरे तू उल्टी क्यों हो रही है? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? बेटा बोल ना, बोल बेटा। तू चुप क्यों हो गया है? हे भगवान, अरे इसके तो हाथ पैर भी नहीं हिल रहे। हे भगवान,
2: अरे क्या
4: करूं मैं?
2: ये लड़का जमीन पर क्यों पड़ा हुआ है?
4: देखिए यशवंत बाबू, मेरे बेटे को जाने क्या हो गया है।
2: एक मिनट, अरे इसकी तो धड़कन रुक गई है। इसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुकी
4: है। नहीं नहीं, ऐसा लग गए ये नहीं हो सकता। मेरा बच्चा, मेरा बेटा।
2: देखो रोने से अब कोई लाभ नहीं, अब इसे जलाने का इंतजाम करो।
4: नहीं,
2: लेकिन जलाने के लिए लकड़ी की जरूरत होगी। लकड़ी के लिए पैसे कहाँ से हैं? ऐसा करो, इसे साई नदी में ही बहा दो।

0: आ गई नारायणी
1: जी।
0: क्या बात है, आज बड़ी देर लगा दी आने में।
1: डॉक्टर साहब, मेरे पति की हालत बहुत खराब थी, इसीलिए आने में थोड़ी देर हो गई।
0: ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसा कर, मेरे साथ आ
1: जी।
0: आज बहुत काम है तेरे लिए, सारे अस्पताल की अच्छी तरह सफाई करनी है तुझे, समझ गई तू?
1: जी।
0: चल आ इधर।
1: जी चलिए। ये क्या डॉक्टर साहब, इतने सारे बीमार बच्चे? ये सारे बच्चे तो दलित बैरक के हैं ना?
0: हाँ, इन बच्चों ने कसाईयों द्वारा फेंका गया सड़ा कच्चा मांस खा लिया है, इसी से इनकी ये हालत हुई है।
1: ओह,
0: देख नहीं रही, उल्टी कर करके सारे अस्पताल का फर्श गंदा कर दिया है। देख, ये सारे फर्श की सफाई तुझे ही करनी है।
1: डॉक्टर साहब, ये बच्चे बच तो जाएंगे ना?
0: देख नारायणी, कई तो मर चुके हैं, और जो जो बचे हैं ना, उनका मरना भी तय है।
1: क्या?
0: हाँ नारायणी।

अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, दीपा रॉय, गीता वर्मा, श्याम अरोड़ा, केदारनाथ, मोहनलाल, दिनेश वर्मा, रजनीश शर्मा, कमल साथी, राजेश आहूजा, वीपी कालरा, उमेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सागर, बनवारी झोल, मंगत राम और संदीप। ध्वनि मुद्रण किया था रविंदर सिंह राजावत, एसपी राठौर और भगत सिंह ने। प्रस्तुति सहायक थे समीर झा।

अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आज आपने सुना जंग लगी तलवार। आप सुन रहे हैं DTH का प्रसारण।

मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 MHz पर, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। अब मीडियम वेव पर हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 22 जून तक 5 दिवसीय मध्य प्रदेश प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वह इंदौर, बैतूल, खंडवा जिले के श्री ओंकारेश्वर मंदिर, जबलपुर, ग्वालियर और श्योपुर स्थित गुनो नेशनल पार्क में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बदायूं और गुजरात के वडोदरा ग्रामीण में हुई अलग अलग दुर्घटनाओं में जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि उनकी सहानुभूति उन सभी के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लोकसभा सांसद अरविंद सावंत और अनिल देसाई ने राज्यसभा सांसद संजय राउत के साथ आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। यह मुलाकात पार्टी के कुछ सांसदों के पार्टी बदलने की राजनीतिक अटकलों के बीच हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सिंहस्थ 2028 के भव्य और दिव्य आयोजन के लिए हजारों करोड़ के विकास कार्य तेजी से पूर्ण किए जा रहे हैं। उज्जैन, इंदौर और आसपास के सभी जिलों में विकास को गति मिल रही है। ओबीसी आरक्षण की सुनवाई जबलपुर उच्च न्यायालय में नए सिरे से होगी। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस भगवती प्रसाद शर्मा की नई डिवीजन बेंच ने यह स्पष्ट

0: किया है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, छतरपुर समेत 34 जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई है और अंडर 17 महिला फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए पहली बार युवा लीग मुकाबले 18 जुलाई से छत्तीसगढ़ में होंगे। फाइनल मुकाबला 29 जुलाई को होगा। टूर्नामेंट में देश की 16 टीमें भाग ले रही हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ एक ऐसी चीज़ के बारे में जो इस समय आपके पास भी है, मेरे पास भी है और दुनिया के हर इंसान के पास है। लेकिन अजीब बात यह है कि हम और आप उसे बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। उसे बचाने के लिए कोई तिजोरी नहीं बनती, ना उसे खरीदने के लिए कोई बाजार होता और ना ही उसे कमाने के लिए कोई नौकरी मिलती। और सबसे बड़ी बात, एक बार वह हमसे दूर चली जाए तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी उसे वापस नहीं ला सकता। और यही कारण है कि जीवन की सबसे महंगी चीज़ें अक्सर वे नहीं होती जिन्हें हम खरीदते हैं, बल्कि वे होती हैं जिन्हें हम सहजता से पाकर उनकी कीमत भूल जाते हैं। तो आइए आज कुछ मिनट इसी विषय पर विचार करें। जीवन में सबसे महंगी चीज़ क्या है जिसे हम अक्सर मुफ्त समझ लेते हैं? कुछ लोग कहेंगे समय, कुछ कहेंगे स्वास्थ्य, कुछ कहेंगे प्यार, विश्वास या रिश्ते। लेकिन सच तो यह है कि सभी अनमोल हैं, लेकिन इन सबके पीछे भी एक और चीज़ छिपी है जो इन्हें अर्थ देती है, और वह है किसी का ध्यान और उपस्थिति। श्रोताओं, कहते हैं कि समय, रिश्ते और अपनों की मौजूदगी की कीमत तब समझ आती है जब वे हमारे पास नहीं रहते। तो दोस्तों, आज ही इसी चर्चा को शुरू करने से पहले एक ऐसे गीत को सुने जो हमें याद दिलाता है कि जीवन का हर पल कितना अनमोल है।

तो श्रोताओं, अब बात करते हैं आज के विषय की। आज के युग में हम पैसे की कीमत जानते हैं, इसलिए खर्च करने से पहले सोचते हैं। लेकिन किसी का समय, किसी का विश्वास या किसी का ध्यान हम बिना सोचे समझे ही खर्च कर देते हैं। ज़रा सोचिए, जब कोई व्यक्ति आपको ध्यान से सुनता है, आपकी बातें समझने की कोशिश करता है, आपके सुख दुख में शामिल होता है, तो वह वास्तव में आपको अपने जीवन का एक हिस्सा दे रहा होता है। वह अपने जीवन के वे क्षण आपको सौंप रहा होता है जो कभी लौट कर नहीं आएंगे। एक बूढ़े पिता अपने बेटे का घंटों इंतज़ार करते हैं। बेटा सोचता है कि उसने अपने पिता के लिए बहुत कुछ किया है, अच्छा घर दिया, सुविधाएं दी, पैसे दिए, लेकिन पिता को शायद केवल आधा घंटा ही चाहिए था, जिसमें बेटा बिना मोबाइल देखे उनके साथ बैठकर बातें करता। वह आधा घंटा किसी भी महंगे उपहार से अधिक मूल्यवान था। इसी तरह हम अक्सर अपने दोस्तों, परिवारों और प्रियजनों को यह कहकर टाल देते हैं कि अभी समय नहीं है। हमें लगता है कि वो तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सच यह भी है कि कोई भी हमेशा नहीं रहता। समय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह हमें हर दिन बराबर मात्रा में मिलता है, लेकिन उसकी कीमत हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। एक विद्यार्थी के लिए परीक्षा से पहले का वह आधा घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक मरीज के लिए जीवन का एक

दिन अनमोल होता है, और किसी माँ के लिए अपने बच्चे के बचपन का एक पल पूरी दुनिया से अधिक कीमती होता है। हम अक्सर स्वास्थ्य को कभी मुफ्त समझ लेते हैं, जब तक शरीर स्वस्थ रहता है हम उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते। देर रात तक जागना, गलत खान पान, तनाव और लापरवाही को सामान्य मान लेते हैं, लेकिन जब स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है तब समझ आता है कि अस्पताल के एक बिस्तर पर लेटे हुए व्यक्ति के लिए स्वस्थ जीवन कितना बड़ा धन है। इसी प्रकार विश्वास भी जीवन की सबसे महंगी चीज़ों में से एक है। विश्वास बनने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन टूटने में केवल कुछ क्षण। फिर भी लोग अक्सर झूठ, स्वार्थ और अहंकार के कारण उसे खो देते हैं। बाद में उन्हें एहसास होता है कि खोया हुआ विश्वास वापस पाना कितना कठिन है। श्रोताओं, एक और चीज़ है जिसे हम अक्सर मुफ्त समझ लेते हैं, और वह है अपने प्रिय लोगों की मौजूदगी। हम सोचते हैं कि माँ हमेशा रहेंगी, पिता हमेशा रहेंगे, दोस्त हमेशा मिलेंगे, लेकिन जीवन का नियम है परिवर्तन। एक दिन ऐसा आता है जब फ़ोन की संपर्क सूची में नंबर तो रहते हैं लेकिन उन नंबरों से आवाज़ नहीं आती। तब समझ में आता है कि सबसे बड़ी संपत्ति बैंक बैलेंस नहीं थी, बल्कि वे लोग थे जो हमारे जीवन में मौजूद थे। और इसी एहसास को बहुत खूबसूरती से बयां करती हुई कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत हैं। वक्त की कीमत क्या है ये वक्त ही सिखाता है। जो पल बीत जाता है वो लौट कर कहाँ आता है। हम समझते रहे उसे मुफ्त की सौगात, मगर वही तो था जीवन का सबसे बड़ा साथ। और इसलिए जीवन हमें बार बार एक ही पाठ सिखाता है कि जिस चीज़ को हम हमेशा सामान्य समझ लेते हैं वही सबसे असाधारण होती है। अब मैं अपनी ही बात को एक अलग और शायद थोड़ी असहज लगने वाली कल्पना के साथ समाप्त करना चाहती हूँ। कल्पना कीजिए कि आज रात सोने से पहले आपके दरवाजे पर कोई दस्तक दे। दरवाज़ा खोलने पर सामने जीवन खड़ा हो और कहे, मैं तुम्हें कल सुबह फिर से वही सब दूंगा जिसके लिए तुम आज आभारी हो। अब सोचिए, कल सुबह आपके पास क्या बचेगा? क्या आपका परिवार रहेगा? क्या आपका स्वास्थ्य रहेगा? क्या आपके दोस्त रहेंगे? या क्या आपका समय रहेगा? या फिर केवल वही चीज़ें बचेंगी जिनके लिए आपने आज धन्यवाद कहा था? यदि यह सच हो जाए तो शायद आज रात हम अपने फ़ोन पर कम और अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताएंगे। शायद हम शिकायतें कम और कृतज्ञता अधिक व्यक्त करेंगे। शायद हम यह समझ पाएंगे कि जीवन की सबसे महंगी चीज़ें कभी खरीदी नहीं जाती, वे केवल महसूस की जाती हैं। तो श्रोताओं, अब समय है एक छोटे से संगीत विराम का। सुनिए यह गीत और फिर हम लौटते हैं अपनी बातचीत के साथ।

गीत के इस छोटे से विराम के बाद फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे थे उस कला की जो रिश्तों को मजबूत बनाती है। अक्सर दोस्तों, जब हम जीवन की सबसे महंगी चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में धन, संपत्ति या कीमती वस्तुओं का विचार आता है। लेकिन सच तो यह है कि जीवन की कुछ सबसे अनमोल चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम बिना किसी मूल्य के प्राप्त करते हैं और इसलिए उनकी कीमत भी अक्सर नहीं समझ पाते। समय, विश्वास, रिश्ते और अपनापन, ये सब ऐसे खजाने हैं जिन्हें हम कई बार मुफ्त समझ लेते हैं। इन्हीं अनमोल उपहारों में एक और चीज़ है जो आज के दौर में धीरे धीरे दुर्लभ होती जा रही है और वह है किसी को सुनना। सुनना केवल कानों से शब्द ग्रहण करना नहीं बल्कि सामने वाले की भावनाओं, अनुभवों और विचारों को समझना भी है। शायद यही कारण है कि कहा जाता है हर जवाब से पहले एक सुनवाई ज़रूरी है। तो आइए आज बात करते हैं सुनने की उस कला की जो न केवल रिश्तों को मजबूत बल्कि जीवन को भी अधिक संवेदनशील और सुंदर बनाती है। ज़रा कल्पना कीजिए, आप किसी से अपने मन की बात कह रहे हैं। शायद आप किसी परेशानी में हैं या फिर बस चाहते हैं कि कोई आपको समझे, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपकी बात पूरी होने से पहले ही सलाह देने लगे, अपनी कहानी सुनाने लगे या फिर मोबाइल में व्यस्त हो जाए। ऐसे में आपको कैसा लगेगा? शायद यही कि आपकी बात सुनी नहीं गई, केवल शब्दों को सुना गया। आज के समय में बोलने वालों की कमी नहीं है। हर किसी के पास अपनी राय है, अपने तर्क हैं, अपने अनुभव हैं। लेकिन जो चीज़ धीरे धीरे दुर्लभ होती जा रही है वह है सुनने की कला। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। बातचीत शुरू होते ही हमारा मन जवाब तैयार करने लगता है। सामने वाला क्या कह रहा है उससे ज़्यादा हमें इस बात की चिंता रहती है कि हम क्या कहेंगे। परिणाम यह होता है कि शब्द सुनाई देते हैं लेकिन भावनाएं अनसुनी रह जाती हैं। एक दिलचस्प बात

है। प्रकृति ने भी हमें दो कान और एक मुंह दिया है। शायद यह संकेत है कि हमें बोलने से दो गुना ज़्यादा सुनना चाहिए, लेकिन व्यवहार में अक्सर इसका उल्टा हो जाता है। कभी कभी किसी व्यक्ति को सलाह की नहीं केवल एक श्रोता की आवश्यकता होती है। जब कोई अपना दुख बांटता है तो वह हमेशा समाधान नहीं मांग रहा होता, कई बार वह केवल यह चाहता है कि कोई उसकी भावनाओं को समझे। और सच मानिए, किसी को ध्यान से सुन लेना भी एक प्रकार की मदद है। दोस्तों, आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती हूँ, जिसने मुझे भी सुनने का असली मतलब समझाया। एक दिन कॉलेज में हमारी क्लास चल रही थी, सर ने एक सवाल पूछा और मुझे लगा कि इसका जवाब तो मुझे अच्छी तरह पता है। मैंने तुरंत हाथ उठा दिया, लेकिन जैसे ही मैं बोलने लगी, सर मुस्कुराए और बोले, प्रश्न पूरा तो सुन लो। पूरी क्लास हंसने लगी और मैं भी थोड़ा संकोच में पड़ गई। दरअसल मैंने सवाल का आधा हिस्सा ही सुना था और जवाब देने की इतनी जल्दी थी कि बाकी बात सुनने का धैर्य ही नहीं रखा। उस दिन की बात तो वहीं ख़त्म हो गई, लेकिन सर की एक बात मेरे मन में रह गई। उन्होंने कहा, बहुत से लोग इसलिए गलत नहीं होते क्योंकि उन्हें जानकारी कम होती है, बल्कि इसलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि वे सुनते कम हैं। उसके बाद मैंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया। मुझे महसूस हुआ कि कई बार घर में, दोस्तों के बीच या कॉलेज में भी सामने वाले की बात पूरी होने से पहले ही मैं अपनी राय बताने लगती थी, यानी मैं सुनने के लिए नहीं बल्कि जवाब देने के लिए सुन रही थी। मुझे धीरे धीरे समझ आया कि सुनना सिर्फ कानों का काम नहीं है, यह धैर्य का काम है, सम्मान का काम है। जब हम किसी को पूरा सुनते हैं तो हम उसे यह एहसास दिलाते हैं कि उसकी बात हमारे लिए कितनी मायने रखती है। और तभी मुझे लगने लगा कि जीवन में अच्छे जवाब देने से पहले अच्छी सुनवाई करना सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जवाब देने से पहले सुनिए और सुनने से पहले समझिए। और दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों, समय की रफ्तार तो कभी नहीं रुकती, लेकिन उसके बीच बिताए गए प्यार, विश्वास और अपनत्व के पल ही जीवन को अर्थ देते हैं। हमारे अपने कार्यक्रम युववाणी के माध्यम से आपके साथ हमारा भी कुछ ऐसा ही प्यारा सा रिश्ता बन गया है, और यह रिश्ता यूं ही खूबसूरत बना रहे इसका प्रयास हम लोग हमेशा करते रहेंगे। दोस्तों, आज का हमारा यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और अब वक्त हो गया है लेने का आपसे विदा। कल नई बातों के साथ और नए गीतों के साथ फिर होगी आपकी हमारी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे यानी प्रगति को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक।
2: शाम सुहानी हो,
3: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
1: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन?
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
2: आपके साथ
1: आकाशवाणी।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं आशिक फिल्म का नगमा, आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की, गीत समीर का है।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये दिल आशिकाना फिल्म का नगमा। आवाज़ें कुमार सानू और अलका याग्निक की हैं। गीतकार हैं समीर और तर्ज बनाई नदीम श्रवण ने।

ये दिल आशिकाना इस फिल्म का नगमा अभी आप सुन रहे थे। आइए अब आपको सुनवाते हैं दिल चाहता है फिल्म का नगमा। आवाज़ है शंकर महादेवन की, गीतकार हैं जावेद अख्तर, तर्ज बनाई शंकर महादेवन ने। तो आइए सुनते हैं दिल चाहता है फिल्म का ये नगमा।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं दिल फिल्म का ये नगमा, जिसे आवाज़ें दी हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने। गीतकार हैं समीर और तर्ज बनाई आनंद मिलंद ने।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 22 जून तक 5 दिवसीय मध्य प्रदेश प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वह इंदौर, बैतूल, खंडवा जिले के श्री ओंकारेश्वर मंदिर, जबलपुर, ग्वालियर और श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियां में G7 सम्मेलन के दौरान अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सिंहस्थ 2028 के भव्य और दिव्य आयोजन के लिए हजारों करोड़ के विकास कार्य तेजी से पूर्ण किए जा रहे हैं। उज्जैन, इंदौर और आसपास के सभी जिलों में विकास को गति मिल रही है। प्रदेश में मानसून की एंट्री अब 21 से 23 जून के बीच होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून फिलहाल तेलंगाना के भद्राचलम क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से ठहरा हुआ है। इंडिया ए ने ट्राई नेशन सीरीज के करो या मरो मैच में अफगानिस्तान ए को 101 रन से हरा दिया है। दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम में 320 रन का टारगेट चेज कर रही अफगानिस्तान ए 36 ओवर 5 गेंद में 218 रन पर ऑल आउट हो गई। और भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में पहले बल्लेबाजी करते हुए 403 रन का विशाल लक्ष्य तय किया है। भारत की ओर से शुभमन गिल ने 154 और ईशांत किशन ने 125 रन बनाए। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार कीजिए स्वीकार। करते हैं शुरू एक सुंदर विचार से जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने।
2: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
3: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
3: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही

रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूँ। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हाँ श्रोताओं, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं कि ये झील है कहाँ। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको ये भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओं, इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। ये एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को कैलाश पर्वत, हिमनदों और वर्षा से ही जल मिलता है। एक छोटी नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है जिसे गंगा चू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को चू कहते हैं। जी हाँ, सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओं। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहां गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय इस झील का रंग सुनहरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। जहां तक धर्मों की बात है, ये झील हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखती है। श्रोताओं, एक और बड़ी खास बात, मानसरोवर झील को कैलाश पर्वत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी, इसका उत्तर है मानसरोवर झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम युमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभ देव से जोड़ा जाता है जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओं, यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियाँ भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। ये झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहाँ मिलते हैं। जहाँ तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओं, अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त, लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियाँ प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है। आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। तो श्रोताओं, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है। आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। हमारा

0: IBRS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
2: दादी जी।
3: अरे आशीष, दीपिका, आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
2: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
3: हाँ पूछो।
2: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
3: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है, जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
2: अच्छा।
3: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
2: अच्छा।
3: यानी आजादी, आजादी, आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े, सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
4: अच्छा।
3: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
2: मंगल पांडे
3: 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
4: अच्छा।
3: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

0: दादी जी, लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
2: बड़े बहादुर थे ये।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
2: वो कहाँ के रहने वाले थे?
1: सुनाती हूँ सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
2: अच्छा।
1: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए।

0: और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
1: दादी उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
0: भाई उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
1: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
0: बेटा उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
2: अच्छा क्या क्या, जरा सुनाओ ना दादी।
0: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
2: ऐसा क्यों?
0: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
3: अरे अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
1: दादी फिर क्या हुआ?
0: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
3: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
4: खुद करनी होगी। सही कहे।
2: फिर क्या हुआ दादी?
0: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
1: फिर क्या हुआ दादी?
0: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
2: अच्छा?
0: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
5: हमें कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं सकता, ऐसा चल नहीं सकता, नहीं।
1: उसके बाद क्या हुआ?
0: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
6: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे,
4: नहीं होने देंगे,
6: बिल्कुल नहीं। भले ही हमें फांसी के तख्ते पर झूलना पड़े,
4: बिल्कुल नहीं देंगे।
0: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है। बच्चों रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
6: भाइयों उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
0: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र

0: स्वरूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
1: हम पांडे को अरेस्ट मांगता है।
2: मंगल पांडे
3: जिंदाबाद,
2: मंगल पांडे
3: जिंदाबाद,
2: इंकलाब
3: जिंदाबाद,
2: इंकलाब
3: जिंदाबाद।
0: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉर्म आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
4: ए मंगल पांडे, वॉच आउट।
0: सारी छावनी में खलबली मच गई।
5: उसके बाद क्या हुआ दादी?
0: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
1: अरेस्ट करो!
4: मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे।
5: दादी जी, फिर क्या हुआ?
0: कर्नल व्हीलर वहां से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग ली। और मंगल पांडे जमीन पर गिर पड़ा।

0: come, bind a coal, tea con amanta high, durant hospital pejo!
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद चीख होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
3: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूं।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
2: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
4: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
2: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
4: इसके बाद क्या हुआ दादी?
2: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
4: अच्छा।
2: इस कविता में

0: क्रांति वीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
1: ओ।
2: जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैल, बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भैल, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मसहूर चलल, गुरनी का पलटनी का आगे, बलिया के बांका सूर चलल, गोली के तुरंत निशान भैल, जननी के भेंट परान भैल, आजादी का बलबेदी पा, मंगल पांडे बलिदान भैल, जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैली।
1: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
0: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
1: अच्छा।
0: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तान कर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशिका।
4: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों पर निर्मित कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है, जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और उसकी बहादुरी को विस्तार से बताया गया है और किस प्रकार इस बहादुर बच्ची ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।
5: काशु बेटी, तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
6: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
5: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
6: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
5: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
6: अच्छा माँ।
7: माँ।
6: लो, देवेंद्र भी आ गया।
7: दीदी, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
5: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
6: ठीक है माँ।
7: नाश्ता नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठकर खाऊंगा।
6: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
7: ये देखो दीदी, ये मारा।
6: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
7: अरे ये मारा।
6: अच्छा, तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
7: बंद कर दिया होगा, ये तो देखो।
6: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
7: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
5: लगता है कोई आया है। काशु बेटी, देखो दरवाजे पर कौन है।
6: अच्छा माँ, कौन? आप लोग कौन? कहिए किससे मिलना है? अरे
8: हमें अंदर आने दो।
6: अरे क्यों?
9: ए लड़की, रास्ते से हट जा।
6: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
8: लड़की हट।
6: माँ,
8: ये चाकू देख रही है ना?
9: ज्यादा होशियारी मत दिखा।
6: अरे
9: मैं बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा।
6: हट
9: रास्ते से।
6: क्या हुआ? देखो जल्दी।
5: ये क्या है? अरे अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
8: ए शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
6: हाँ, मेरी माँ को छोड़ दो।
8: ये चाकू देख रही है ना?
6: छोड़ दो, मुझे मत मारो। कुछ मत करो।
5: चाबी चाबी मुझे नहीं मालूम, याद नहीं कहाँ रखी है।
9: ये बहानेबाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
5: अरे, अरे मेरे बात को छोड़ो,
6: मेरी माँ को छोड़ो।
8: चुप चुप, आवाज निकाली तो यहीं ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज
5: नहीं।
9: अरे सुनो सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो।

0: अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
1: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
2: देवेंद्र।
3: हाँ दीदी।
2: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
3: अच्छा,
2: हाँ। पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र, तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
3: अच्छा।
2: हेलो।
4: हाँ बेटा, बोलो।
2: पापा। पापा।
4: हाँ बोलो बेटा।
2: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसाए हैं।
4: कौन घुसाए?
2: माँ को बहुत मार रहे हैं।
4: अच्छा तुम घबराओ नहीं। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है?
2: अब देवेंद्र, मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
3: अच्छा।

0: έμπουσα.
1: Μα κουμπάτ μου, ρε.
0: Άτσα τον καβράνο. Δεν είναι. Το μέσα καρό παρόσιο κουμπλάω τα πτέκ με άτα. Ε, φύγε.
1: Αντιρίντρ, मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
2: अच्छा।
1: बचाओ, बचाओ, घर में चोर घुस आए हैं, बचाओ, बचाओ।
3: भाटिया साहब के घर में चोर घुस आए हैं
4: क्या? और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशु यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
5: कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको कशिका को।
6: वाह वाह वाह,
5: कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
4: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था। मैं तो डरी गई थी।
5: देखो ना, सबकी जान
4: बहादुर है मेरी बच्ची। अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1,000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।
7: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहादुर कशिका, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
8: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
7: नमस्कार।
9: उमंग, उमंग।
10: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और नीदरलैंड के मध्य लॉर्ड्स में खेले जा रहे महिला टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल।

रात 8 बजे हवा महल में आप सुनेंगे नाटिका मेन्यू कार्ड, मूल कहानी ओ हेनरी, हिंदी नाट्य रूपांतर मुरली मनोहर जोशी, निर्देशन मुख्तार। रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता मोतीलाल पर। रात 10 बजे छाया गीत प्रस्तुत करेंगी मंदाकिनी जोशी। ढलती जाए रात, रात 10:30 पर और रंग तरंग रात 11 बजे। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल के मुख्य कार्यक्रमों पर।

कल सुबह 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम जागो सुबह हो गई। सुबह 6:45 पर संगीत सरिता में कल आप सुनेंगे श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। कलाकार होंगे वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। कल आप इसका दूसरा भाग सुनेंगे, साथ ही इसका पुनः प्रसारण होगा शाम 6:45 पर। पुराने फिल्मी गाने आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में, समय होता है सुबह 7 बजे। हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम लेकर आएंगे सुबह 7:30 पर। वंदे मातरम एक जय घोष ये कार्यक्रम सुनेगा सुबह 8:15 पर। लेखक हैं मिलिंद सबनीस, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। इसका पुनः प्रसारण सुनेगा दोपहर 2 बजे। नए फिल्मी गाने हम रोज लेकर आते हैं सुबह 8:30 पर और रात 8:15 पर। कार्यक्रम होता है चित्रलोक।

11 बजे लेकर आएंगे रंग तरंग। 12:05 पर यादों की महफिल सजेगी। 1 बजे आपका पसंदीदा कार्यक्रम होगा सुरीला सफर।

सदाबहार नगमे लेकर आएंगे 2:30 पर, दोपहर 3 बहने सुनेंगी सखी सहेली कार्यक्रम, शाम 4 पिटारा में गीतों भरी कहानी होगी मेरी मकान मालकिन, तराने नए पुराने कार्यक्रम लेकर आएंगे शाम 5:30 पर। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत गुलदस्ता कार्यक्रम होगा। रात 8 हवा महल में नाजनीन की लिखी झलकी सुनिएगा पुरातत्व के तत्व, आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:00। 10 छाया गीत प्रस्तुत करेंगे राजुल अशोक, ढलती जाए रात 10:30 पर और रंग तरंग रात 11:00।

आज के फनकार। कल ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता मिथुन पर। इसका प्रसारण होता है सुबह 9:30 पर और पुनः प्रसारण रात 9:30 पर।

अभी आपने लता मंगेशकर के स्वर में भक्ति रचना सुनी। फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली, गीत संगीत रविंद्र जैन का था। अब सुनिए आक्रोश फिल्म का भजन वंदना खांडेकर के स्वर में। वसंत देव के लिखे इस गीत की धुन बनाई है अजीत बर्मन ने।

0: गजतत्वाद्य। प्रस्तुत है गजवाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक।
1: श्रोताओं, आज हम गज से बजाए जाने वाले एक और वाद्य दिलरुबा पर बात करेंगे। इसके नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि यह मुगल कालीन वाद्य है, किंतु मुगल कालीन वाद्यों में इस नाम का अथवा इसके स्वरूप से साम्य रखने वाला कोई वाद्य दिखाई नहीं देता है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक के ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं है। अतः स्पष्ट है कि इस वाद्य की रचना आधुनिक काल में ही की गई है। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति का आधार सारंगी मानते हैं। सुविधा युक्त गज वाद्य की आवश्यकता होने के कारण इसका निर्माण किया गया। यह भी संभव है कि इसराज की मृदु ध्वनि को गंभीर बनाने की दृष्टि से इसराज में ही कुछ परिवर्तन किए गए हों, फलस्वरूप दिलरुबा वाद्य की उत्पत्ति हुई हो। इस संभावना को भी अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक प्रचलित ताउस वाद्य के नीचे लगे मयूर वाले भाग को हटाकर उसके स्थान पर सारंगी का मंथान अर्थात नीचे वाला भाग लगाकर इसका निर्माण किया गया हो। उत्पत्ति का कारण जो भी रहा हो, किंतु यह सत्य है कि दिलरुबा वाद्य सितार और सारंगी का मिश्रित रूप है। दिलरुबा वाद्य 3 आकार में प्रचलित है। आकार के अनुसार ही कुंडी और दांड का नाप रखा जाता है। दिलरुबा में 19 पर्दे होते हैं, जिन्हें आवश्यकता अनुसार थोड़ा सरकाया भी जा सकता है। इसमें मुख्य 4 तार होते हैं। कुछ दिलरुबा में 6 तार भी लगाए जाते हैं। इसमें 20 अथवा 22 तरबों को लगाया जाता है, जिन्हें राग के अनुसार

मिलाते हैं। कुछ कलाकार तरबों को अचल थाट में रखते हैं। दिलरुबा के तार अलग अलग पद्धति से मिलाकर वादन करने का प्रचलन रहा है। फिर भी सामान्यतः इसके बाज के फौलाद के तार को मंद्र सप्तक के मध्यम में, इसके बाद के फौलाद के तार को मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर में, तत्पश्चात के पीतल के तार को अति मंद्र सप्तक के पंचम स्वर में और अंतिम पीतल के तार को अति मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर में मिलाते हैं। तरबो हेतु पीतल के तार प्रयुक्त करते हैं। ऊपर आड़ के पास तरब के पांच तार तथा शेष तरब के तार दांड के बाजू में लगाने का प्रचलन है। कुछ कलाकार इसको घुटने पर रखकर या गोद में रखकर बजाते हैं। इसकी कुंडी वाला भाग नीचे रहता है। दाहिने हाथ में गज को पकड़ा जाता है। यह गज तारों पर घर्षण करते हैं। दांड के पीछे की ओर बाएं हाथ का अंगूठा रखा जाता है और आगे की तरफ से तर्जनी, मध्यमा और अनामिका अंगुलियों से कर्ण, खटका, मुरकी, गमक और घसीट के साथ विभिन्न स्वर निकाले जाते हैं। दिलरुबा के नाम से स्पष्ट है कि हृदय को मोहित करने वाला एक सुंदर, मधुर और आकर्षक वाद्य है। किंतु दुख की बात है कि अब इसका प्रचलन कम होते जा रहा है। अब इसे दुर्लभ वाद्यों की श्रेणी में रखा जाता है। लगभग 50 वर्षों पूर्व दिलरुबा पर पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड का साउंड बॉक्स व हॉर्न लगाकर तार शहनाई वाद्य की रचना की गई। अब हम श्री विनायक बोरा का तार शहनाई वादन सुनते हैं।

0: अभी आप श्री विनायक वोरा से तार शहनाई पर बजाया राग अहीर ललित सुन रहे थे।
1: गज तत्वाद्य गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की ये थी अंतिम कड़ी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारुबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल की सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
3: परेशान हूं मैं।
2: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
2: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
2: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: ये विविध भारती राष्ट्रीय सेवा है, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में फौजी भाई सुनेंगे जयमाला कार्यक्रम।

0: अभी आपने मोहम्मद रफ़ी और बलबीर के स्वर में देशभक्ति गीत सुना। साहिर लुधियानवी के लिखे गीत की धुन बनाई थी ओपी नैयर ने। फिल्म का नाम था नया दौर। अब सुनिए सेना पर आधारित गीत स्वर गीत संगीत कैलाश खैर का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: फौजी भाइयों को अब हम सुनवा रहे हैं बंधन फिल्म का गीत कुमार शानू की आवाज में। बोल लिखे हैं देव कोहली ने, संगीत आनंद राज आनंद का।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
4: PLI है ना?
5: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 5 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरा कल से होगा शुरू। इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और श्योपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में होंगी शामिल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में पेश होगा समान नागरिकता संहिता यूसीसी विधेयक। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक देश एक चुनाव, स्वदेशी और नागरिक कर्तव्य को विकसित भारत के आधार स्तंभ बताया। और मानसून की रफ्तार थमी, प्रदेश में अगले सप्ताह दस्तक के आसार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 22 जून तक 5 दिवसीय मध्य प्रदेश प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वह इंदौर, बैतूल, खंडवा जिले के श्री ओंकारेश्वर मंदिर, जबलपुर, ग्वालियर और श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल इंदौर पहुंचेंगी, इसके बाद वह बैतूल में ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल सोसाइटी बाय स्पिरिचुअल अवेकनिंग कार्यक्रम में शामिल होंगी। साथ ही श्री ओंकारेश्वर पहुंचकर मंदिर में दर्शन एवं आरती में सम्मिलित होंगी। शुक्रवार 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर ओंकारेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। शनिवार 20 जून को श्रीमती मुर्मू जबलपुर पहुंचेंगी। 21 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके पश्चात रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें दीक्षांत समारोह में सहभागिता करेंगी। सोमवार 22 जून को श्रीमती मुर्मू कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी। इसके बाद वह ग्वालियर

0: पहुंचकर नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि विधानसभा के मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी का प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि विधेयक इसी सत्र में पारित हो जाएगा। डॉ. यादव ने आज विधानसभा परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश नाथ काटजू की जयंती पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि विधानसभा के आगामी सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण और समसामयिक विषयों को लेकर आ रही है। उन्होंने कहा कि देश में एक समान कानून लागू करने की भावना में कुछ भी गलत नहीं है और यह समाज में समानता लाने का प्रयास है। उत्तराखंड, गुजरात और असम जैसे राज्यों में यूसीसी लागू किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: सरकार के द्वारा कई समसामयिक विषयों को लेकर के हम आएंगे, उसमें से एक सौभाग्य से कॉमन सिविल कोड की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। महाकाल चाहेंगे तो इसी सत्र में पारित होगा।
0: मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। यह 5 दिवसीय सत्र 24 जुलाई तक चलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज उज्जैन जिले की महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक से कुल 207 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत वाले 19 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसमें करीब 188 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत के सामाकोटा बैराज के लोकार्पण सहित क्षेत्र के 13 उप स्वास्थ्य केंद्र के नए भवनों, महाविद्यालय एवं स्कूलों के नवीन भवनों तथा नवीन विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने यहां कहा कि सामाकोटा बैराज उज्जैन जिले में जल संरक्षण को नई ऊर्जा देगा। इससे भूजल स्तर में सुधार होगा, जिससे हमारे अन्नदाता किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल और खेतों को नई संजीवनी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वॉशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत के एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने के साथ ही बैठक रणनीतिक से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके राजनयिक संपर्क तथा प्रमुख मंचों पर वैश्विक नेताओं के साथ उसकी सक्रिय बातचीत को दर्शाता है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भाजपा द्वारा पटना में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास, सुशासन, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व मंच पर एक मजबूत, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है।
3: 12 साल में अगर मैं 12 बड़ी उपलब्धियों की बात करूं, तो नंबर एक, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। 4 करोड़ गरीब बहनों और भाइयों को पक्के मकान मिले हैं। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है। 3 करोड़ हमारी बहनें लखपति दीदी बनी हैं, यहाँ जीविका दीदियों के नाम से जानी जाती है। 57 करोड़ मुद्रा लोन से स्वरोजगार के क्षेत्र में क्रांति आई है। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय निर्मित हुए हैं। 3,14,000 करोड़ का डिजिटल लेन देन हुआ है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई। युवाओं के लिए 120 बड़े स्टार्टअप्स, लगभग 1,60,000 करोड़ का निवेश अकेले सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हो रहा है।
0: उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए समाज को कुछ उपयोग को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक नागरिक द्वारा अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना समय की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास

0: विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के विकास के जनकल्याण के पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार।
0: प्रदेश में मानसून की एंट्री अब 21 से 23 जून के बीच होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून फिलहाल तेलंगाना के भद्राचलम क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से ठहरा हुआ है। इसकी वजह से मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 34 जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का एक पौधा अपने बुजुर्गों के नाम अभियान आज से शुरू हुआ। बोर्ड अध्यक्ष सनवर पटेल ने वृक्षारोपण कर अभियान का शुभारंभ किया। नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में जिला प्रशासन और उद्यानिकी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में भव्य आम महोत्सव का आयोजन किया गया। जबलपुर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 19 जून को भंवरताल गार्डन में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और नीदरलैंड के मध्य लीड्स में खेले जा रहे महिला टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल।
1: जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
2: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
3: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: अब हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल का गाया सड़क फिल्म का गीत, तर्ज नदीम श्रवण की, बोल सुरेंद्र साथी के।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: जयमाला कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

जयमाला कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में लीजिए अब सुनिए दीवाना फिल्म का गीत, बोल समीर के आवाजें कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ये है विद भारती, देश की सुरीली धड़कन। इंद्रधनुष के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम राग अनुराग। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं राग भैरवी से। फिल्म का नाम है श्री 420। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, बोल शैलेंद्र के, संगीत शंकर जयकिशन का।

अभी आपने राग भैरवी पर आधारित श्री 420 फिल्म का गीत सुना। अब हम आपको सुनवा रहे हैं राग पहाड़ी पर आधारित वक्त फिल्म का गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने। रवि के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने।

राग पहाड़ी के बाद अब बारी राग अहिल्या बिलावल की। परिचय फिल्म से ये गीत है, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें हैं, गीत गुलजार के, संगीत राहुल देव बर्मन का।

ए संजू, ए बिज्जू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
1: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: चित्रलोक कार्यक्रम की अंतिम पेशकश डेली सिक्स फिल्म से, जिसे आवाज दे रहे हैं मोहित चौहान। प्रसून जोशी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है ए आर रहमान ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की 2 दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के समक्ष ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था

0: संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है।

0: है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
1: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.go.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों NRI पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में NRI विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्र।
4: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 रुपए पर बंद हुआ।
2: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की।

0: नाविकों की सुरक्षा और हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi meets US President Donald Trump on sidelines of G7 summit in Evian. Issues of seafarer safety and opening of Strait of Hormuz figure prominently. Prime Minister also holds bilateral meetings with German Chancellor Friedrich Merz, European Council President Antonio Costa and European Commission President Ursula von der Leyen. India and France reaffirm commitment to innovation, artificial intelligence and technology cooperation at inauguration of India Pavilion at Viva Tech 2026 in Paris. Railways approves multiple projects worth over 1,200 crore rupees to improve connectivity and safety. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. And in men's cricket, Afghanistan chase target of 403 runs set by India in second ODI of three-match series in Lucknow. A crucial bilateral meeting was held between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump at Evian, France, on the sidelines of G7 summit this evening. During the talks, issues of seafarer safety an opening of Strait of Hormuz figured prominently. Prime Minister Modi commended President Trump for the progress in peace efforts in West Asia. The Prime Minister said that India has consistently emphasized the importance of the freedom of navigation and all should work together to place a particular emphasis on it. Mr. Modi added that lakhs of Indian seafarers in maritime trade are on duty in different oceans of the world, and their safety is of utmost importance to India.
2: Excellency, हम जानते हैं कि maritime trade की दुनिया में भारत के लाखों seafarers आज दुनिया के अलग-अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सलेंस, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ।
1: Earlier, Prime Minister Modi addressed a working session themed promoting balanced, inclusive and sustainable economic growth for the benefit of all at the ongoing G7 summit. In his address, the Prime Minister underscored the need for international financial institutions to develop mechanisms that impart economic resilience to developing countries. Mr. Modi also participated in a working lunch focused on ensuring safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. The meeting brought together G7 member countries, partner nations and the CEOs of leading AI companies to discuss the future of digital innovation. On the margins of the G7 summit in Evian, Prime Minister Modi and German Chancellor Friedrich Merz today exchanged views on regional and global developments, including the situation in West Asia and the Russia-Ukraine conflict. The two leaders also reviewed the progress in bilateral engagements and expressed satisfaction at the renewed momentum in the India-Germany strategic partnership with the successful visit of Mr. Merz to India and the conclusion of the India-EU FTA negotiations earlier this year. Mr. Maersk invited the Prime Minister for the 8th

0: opening of Strait of Hormuz figure prominently. Prime Minister also holds bilateral meetings with German Chancellor Friedrich Merz, European Council President Antonio Costa, and European Commission President Ursula von der Leyen. India and France reaffirm commitment to innovation, artificial intelligence, and technology cooperation at inauguration of India Pavilion at Viva Tech 2026 in Paris. Railways approves multiple projects worth over 1,200 crore rupees to improve connectivity and safety. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. And in men's cricket, Afghanistan chased target of 403 runs set by India in second ODI of three-match series in Lucknow. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एवियो में G7 सरबराह इजलास के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग की। मीटिंग में बहरी जहाजों के अमले की सलामती और आबनाई हुरमुज को खुला रखने के उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स, यूरोपीय काउंसिल के सदर अंतोनियो कोस्ता और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ भी दोतरफा मीटिंगें की। पेरिस में विवाटेक 2026 के दौरान इंडिया पवेलियन की इफ्तिताही तकरीब में भारत और फ्रांस ने जिद्दत तराजी, मसनू जहानत और तकनीकी ताउन के फरोग के अजम का इरादा किया। रेलवे ने कनेक्टिविटी और मुसाफिरों की हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई प्रोजेक्टों की मंजूरी दी। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों और मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खत्ते में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और मर्दों के क्रिकेट में लखनऊ में 3 एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 403 रन का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। फ्रांस के शहर एवियों में G7 सरबराह इजलास 2026 के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक अहम दोतरफा मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान वजीर आजम मोदी ने मगरबी एशिया में अमन के कयाम की कोशिशों में होने वाली पेशरफ्त पर सदर ट्रंप की तारीफ की। वजीर आजम ने कहा कि भारत हमेशा समंदरी रास्तों पर जहाजों की आमदोरफ्त की आजादी की अहमियत पर जोर देता रहा है और तमाम मुल्कों को इसके तहफ्फुज़ के लिए मिलकर काम करना चाहिए। वजीर आजम ने मजीद कहा कि दुनिया के मुख्तलिफ समंदरों में बहरी तिजारत के शोबे से वाबस्ता लाखों भारतीय मल्लाह अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और उनकी सलामती भारत के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है।
2: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मसनूई जहानत AI के महफूज तेज रफ्तार और मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने के मौजू पर मुनक्किदा वर्किंग लंच में शिरकत की। इस इजलास में G7 के रुकन मुल्कों, शराकतदार ममालिक और मसनूई जहानत की मारूफ कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान शरीक हुए, जहां डिजिटल इख्तरा के मुस्तकबिल पर ख्यालात का तबादला किया गया। वजीर आजम मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स ने इलाकाई और आलमी हालात और वाकयात पर बातचीत की, जिसमें मगरबी एशिया की सूरत हाल और रूस यूक्रेन तनाज़ा भी शामिल था। दोनों रहनुमाओं ने दोतरफा ताल्लुकात में पेशरफ्त का जायजा लिया और भारत जर्मनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में नई रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। इस सिलसिले में चांसलर मर्स के भारत के कामयाब दौरे और रवां साल भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती मुआहदे के मुजाकरात की तकमील का भी जिक्र किया गया। चांसलर मर्स ने वजीर आजम मोदी को इस साल जर्मनी में मुनक्किद होने वाली 8वीं भारत जर्मनी बैन हुकूमती मुशावरत में शिरकत की दावत दी। वजीर आजम मोदी ने सरबराह इजलास के मौके पर यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डेर लेन और

0: यूरोपीय काउंसिल के सदर अंतोनियो द कोस्टा के साथ भी मीटिंग की। पेरिस में जारी विवाटेक 2026 में भारतीय पवेलियन के इफ्तिताह के मौके पर भारत और फ्रांस ने इख्तराम मस्नूई जिहानत और टेक्नोलॉजी के शोबे में तावुन के अपने अहद को दोहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल और फ्रांस की मस्नूई जिहानत और डिजिटल उमूर से मुतालिक वजीर एनेली हेनाम्प ने दोनों ममालिक के माबैन कलीदी शराकतदारी की बढ़ती हुई अहमियत को उजागर किया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस तरहकारों और स्टार्टअप से खिताब करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुअल मीखों के जरिए भारत फ्रांस इख्तरा के साल 2026 के ऐलान के जरिए भारत और फ्रांस की शराकतदारी मजीद मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि मस्नूई जहानत एआई के दौर में भारत को कई नुमाया फवायद हासिल हैं, जिनमें नौजवान आबादी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी स्टेम के माहिरीन की बड़ी तादाद, मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा और जमहूरी तर्ज हुक्मरानी शामिल हैं। उन्होंने भारत फ्रांस इख्तरा के साल का जिक्र करते हुए कहा कि स्टार्टअप्स और तहकीकी इदारों के जरिए बढ़ता हुआ तआवुन नई राहों और मौके को जन्म दे रहा है। काबिल जिक्र है कि विवाटेक 2026 में कायम इंडिया पवेलियन कौमी सतह के सबसे बड़े पवेलियन में शुमार होता है, जहां भारत के तेजी से फरोग पाते हुए स्टार्टअप्स और इख्तराई माहौलियाती निजाम की भरपूर नुमाइश की जा रही है। पेरिस से महेश चोबड़े की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस के अपने दौरे के एक हिस्से के तौर पर आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय बिरादरी के अफराद उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उनके खैर मकदम के लिए तैयारियां जारी हैं। कल सुबह वजीर आजम मोदी सरकर्दा चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान के साथ मीटिंगें करेंगे और तवक्को है कि यह तबादला ख्याल दोपहर तक जारी रहेगा। इसके बाद वजीर आजम मोदी विवाटेक समिट में शिरकत करेंगे, जो कि यूरोप की टेक्नोलॉजी और इख्तराअ से मुतालिक एक अहम मीटिंग है। तवक्को है कि जनाब मोदी इस मौके पर खिताब भी करेंगे। शाम में वजीर आजम एक कम्युनिटी तकरीब में शिरकत करेंगे और भारतीय बिरादरी के साथ तबादला ख्याल करेंगे। भारतीय रेलवे ने गुजरात, महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल और मध्य प्रदेश में रेलवे की गुंजाइश बढ़ाने, माल बर्दारी के निजाम को बेहतर बनाने, हिफाजती इंतजाम को मजबूत करने और शहरी नकलो हमल के बुनियादी ढांचे को जदीद बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपए से जायद मालियत के मुतादिद बुनियादी ढांचा जाती मंसूबों की मंजूरी दी है। इन मंसूबों में गुजरात के एक अहम रेलवे सेक्शन पर दोहरी लाइन बिछाने, महाराष्ट्र में मालगाड़ियों के लिए एक नई कॉर्ड लाइन तामील करने, मशरकी रेलवे में सिग्नलिंग निजाम को जदीद बनाने और इंदौर में एक अहम रोड ओवर ब्रिज की असरे नौ तामील शामिल है। इन इकदामात से रेलवे ऑपरेशंस की कारकर्दगी में इजाफा, मसरूफ रेलवे राहदारियों पर दबाव में कमी, मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात की फराहमी और मौशी सरगर्मियों को फरोग मिलने की तवक्को है। कच्छ के खित्ते में रेलवे राबते को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए मगरबी रेलवे के 49 किलोमीटर तवील आदिपुर भुज सेक्शन की दोहरी लाइन बिछाने के मंसूबे को तकरीबन 493 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई है। इस मंसूबे से इलाके में मुसाफिरों और माल बर्दारी दोनों के लिए बेहतर सहूलतें फराहम होंगी। इस तरह भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र में 3.7 किलोमीटर तवील सोमटाने चखली कोर्ड लाइन की तामीर की मंजूरी दी है, जिस पर तकरीबन 172 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जदीदकारी के एक अहम इकदाम के तहत मशरकी रेलवे में 450 करोड़ रुपए के सिग्नलिंग अपग्रेडेशन मंसूबे को भी मंजूरी दी गई है। रेलवे और इत्तलात नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज तकरीबन 600 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से पुणे रेलवे स्टेशन की बड़े पैमाने पर तौसी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा 6 प्लेटफार्मों के साथ मजीद 6 नए प्लेटफार्म तामीर किए जाएंगे, जिसके बाद प्लेटफार्मों की कुल तादाद 12 हो जाएगी। इसके अलावा कामकाज की कारकर्दगी और मुसाफिरों की हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए मौजूदा रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम की जगह जदीद इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम नस्ब किया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर अमल करते हुए भारत ने नुमाया तरक्की की है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख्वातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए मुतअद्दिद अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी।

0: न्यूज आपके लिए एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम मुल्क के सकाफती विरसे के तहफ्फुज और फरोग के लिए हुकूमत के जरिए किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारत ने अपनी तहजीबी विरासत के तहफ्फुज, फरोग और उसका जश्न मनाने के लिए कई तारीखी इकदामात किए हैं, जिनसे लाखों शहरियों में फख्र का जज्बा पैदा हुआ है। अहम वाकयात में सबसे अहम वाकया जनवरी 2024 में पेश आया, जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में अजीमुशान श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को अंजाम दिया। ये सदियों पुरानी एक ख्वाहिश की तकमील थी। हाल ही में मंदिर का दौरा करने वाले एक अकीदतमंद पंकज जारिया ने आकाशवाणी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए अपने तजुर्बात बयान किए।
2: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में महाकाल लोक प्रोजेक्ट का पहला मरहला अक्टूबर 2022 में कौम के नाम वक्फ किया गया। ये अजीम कॉरिडोर शानदार मुजस्मों, दीवारों पर बने फन पारों और तामीरात पर मुश्तमिल है, जो भगवान शिव की जिंदगी और उनसे मंसूब रिवायात की अक्कासी करते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी और मस्नूई जहानत पर मबनी निगरानी के निजाम से आरास्ता महाकाल लोक विरासत और जिद्दत का हसीन इम्तिजाज पेश करता है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसका इफ्तिताह दिसंबर 2021 में किया गया था, ने यात्रियों के सफर के तजुर्बे को यकसर बदल कर रख दिया है। ये कॉरिडोर मंदिर को बराह रास्त दरियाए गंगा से जोड़ता है। 5.5 एकड़ पर मुहित इस प्रोजेक्ट ने लोगों की रसाई को बेहतर बनाया है और भारत के सबसे मौजिज रूहानी मराकज में से एक को नई जिंदगी बख्शी है। आकाशवाणी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए वाराणसी के रहने वाले प्रियांशु सिंह ने कहा कि ये कॉरिडोर यात्रियों की आमदोरफ्त में काफी आसानी फराहम कर रहा है।
3: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये इनकलाबी इकदामात इस बात की अक्कासी करते हैं कि मुल्क अपनी सकाफती जड़ों के तहफ्फुज के साथ साथ एतमाद के साथ मुस्तकबिल की जानिब गामजन है। सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: दिल्ली पुलिस के खसूसी सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के मुबैना हैंडलर शहजाद भट्टी से वाबस्ता 8 रुकनी कसीर रियासती दहशतगर्दी मॉड्यूल के मजीद 5 मुलजमों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन गैंग बेस्ट 2.0 के दौरान मस्कुरा मॉड्यूल के 3 अरकान को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान को दिल्ली और पड़ोसी रियासतों में पुलिस अहलकारों को निशाना बनाने, पाकिस्तान में मौजूद राबताकारों की तशहीर करने और ISI की सरपरस्ती में मुबैना तौर पर कायम तंजीम तहरीक तालिबान हिंदुस्तान को फरोग देने की जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 5 हथियार, शहजाद भट्टी नेटवर्क से मुतालिक पोस्टर्स और दीगर काबिल एतराज मवाद भी बरामद किए, जिनमें पुलिस अहलकारों को धमकियां देने वाली वीडियोज भी शामिल हैं। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों और मगरबी बंगाल के जैली हिमालयाई खत्ते में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल बिहार, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराइकल के इलाकों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। IMD ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन के दौरान तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और बिहार के मजीद कुछ इलाकों, नीज छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में जनूब मगरबी मानसून की पेशकदमी के लिए हालात साजगार हैं। महकमे मौसमियात ने अगले 2 रोज के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक कल झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और अंडमान और निकोबार जजायर में इसी तरह के हालात रहने का इम्कान है। क्रिकेट में लखनऊ में 3 एकरोजा बैन अलावामी मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 403 रन का निशाना रखा है। इससे कबल भारतीय टीम 49 ओवर्स में 5 गेंदों में 402 रन बनाकर आउट हो गई। गिल और ईशान किशन ने सेंचुरियां बनाई। गिल ने 154 रन बनाए जबकि किशन ने 125 रन से स्कोर किए। इससे कबल अफगानिस्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। अब से कुछ देर पहले तक अफगानिस्तान की टीम ने 44.3 ओवर्स में 8 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। وزیراعظم نریندر مودی نے ایویو میں جی سیون سربراہ اجلاس کے موقع پر امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے ساتھ

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से।
1: ये कौन है?
2: कबाब में हड्डी।
0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज जिक्र उस अभिनेता का जिसने सन 1955 में बनी बिमल रॉय की फिल्म देवदास में चुन्नी लाल की यादगार भूमिका निभाई थी।
3: हाय हाय, तुम क्यों रुक गई? तुम रुकी क्या, दिल हमारा रुक गया, गम के मारे आसमां भी झुक गया।
1: ए देवदास, तुम कहां चले? घबराने की क्या बात है? बैठो बैठो बैठो। हाँ तो शुरू हो जाओ उस्ताद।

0: क्या और भला सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है।
1: मोतीलाल को हिंदी फिल्मों के बेहद सौम्य और शिष्ट अभिनेताओं में गिना जाता है। सन 1910 में शिमला में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम था मोतीलाल राजवंश। सन 1934 में आई फिल्म शहर का जादू से मोतीलाल की अभिनय यात्रा की शुरुआत हुई थी। सागर मूवी टोन के बैनर तले बनी इस फिल्म के निर्देशक थे केपी घोष। 30 के दशक में नायिका सविता देवी के साथ फिल्मों में उनकी जोड़ी बड़ी मशहूर रही। इस जोड़ी की कुछ खास फिल्में थीं डॉक्टर मधुरिका, जिसके लेखक थे जाने माने साहित्यकार कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, रंजीत मूवी टोन की फिल्म अछूत, जयंत देसाई की फिल्में दीवाली और शादी, जिनमें मोतीलाल और सविता

0: देवी नायक नायिका थी। बाद में चतुर्भुज जोशी की सन 1941 में आई फिल्म परदेसी और ससुराल में वे अभिनेत्री माधुरी के साथ दिखाई दिए। भारतीय सिनेमा की यात्रा पर शुरुआती दौर में पारसी रंगमंच और नौटंकियों के बेहद कलाबाजी भरे अभिनय की गहरी छाप पड़ी थी। अभिनय में अति नाटकीयता का समावेश होता था, लेकिन कहा जाता है कि मोतीलाल ने हिंदी सिनेमा में स्वाभाविक और सहज अभिनय की शुरुआत की, जिसमें संवादों की अदायगी उतनी नाटकीय न होकर बिल्कुल आम जिंदगी की बोलचाल जैसी होती थी।
1: देखते हुए रंगीन जिंदगी, ये वो लोग हैं जिन्हें सड़कों पर बटुए मिले और उन्होंने लौटाए नहीं।
2: इसे मुझे जानने की जरूरत नहीं, मुझे इजाजत दीजिए।
1: क्या काम करते हो?
2: बेकार।
1: नौकरी चाहते हो?
2: मुझे नौकरी मिलेगी।
1: इस पते पर कल चले जाना और मैनेजर साहब से मिलना।
0: जाने माने फिल्मकार महबूब खान की शुरुआती फिल्मों में मोतीलाल नायक रहे थे, जैसे सन 1943 में आई तकदीर, सन 1937 में आई जागीरदार और सन 1938 में आई फिल्म हम तुम और वो। केदार शर्मा की फिल्म अरमान और कलिया में भी मोतीलाल ने काम किया था। सन 1945 में आई थी फिल्म पहली नजर, जिसमें वीणा मोतीलाल की नायिका थी। हम आपको याद दिला दें कि इसी फिल्म से पार्श्व गायक मुकेश की गीत यात्रा शुरू हुई थी। मोतीलाल मुकेश के चचेरे भाई थे और वे ही मुकेश को फिल्म संसार में लाए थे। फिल्म पहली नजर में संगीतकार अनिल विश्वास के निर्देशन में मुकेश ने गाया था अपना पहला नगमा।

सन 1948 में आई फिल्म गजरे, जिसमें सुरैया मोतीलाल की नायिका थीं। इस फिल्म के संगीतकार थे अनिल विश्वास और गीतकार गोपाल सिंह नेपाली। ये है सुरैया का गाया नगमा।

सन 1949 में आई रूप शौरी की फिल्म एक थी लड़की। इसमें मोतीलाल की नायिका थी मीना शौरी। आपका ये दोस्त इस फिल्म का एक दुर्लभ गीत ढूंढ कर लाया है खास तौर पर आपके लिए।

0: मोतीलाल की सबसे उल्लेखनीय फिल्म मानी जाती है सन 1952 में आई जेमिनी प्रोडक्शंस की मिस्टर संपत। आर के नारायण के प्रसिद्ध उपन्यास पर बनी इस फिल्म में मोतीलाल ने एक शरीफ बदमाश का किरदार निभाया था।
1: इतना ही नहीं जनाब, मैं कहता हूँ कि आज आधी से ज्यादा दुनिया 420 है। जिधर निगाह उठा के देखिए, चोर बदमाश डाकू नजर आते हैं, और मजा यह है कि देखने में आपसे और हमसे ज्यादा शरीफ मालूम होते हैं। कौन जाने यहाँ हम लोगों में कौन शरीफ है और कौन 420। ना जाने क्या होने वाला है दुनिया का। 8 आने के 12 केले, लूट मची हुई है चारों तरफ। जिसको देखो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। आपने वो केले वाले को मुझे ना बताया, सीधा पुलिस की हिरासत में भेज देता उसको।
2: अच्छा
1: जी हाँ, आप लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्यों हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मैं थर्ड क्लास पैसेंजर हूँ। जी नहीं, मैं चाहूँ तो फर्स्ट क्लास में सफर कर सकता हूँ, सलून में भी सफर कर सकता हूँ, लेकिन चाहता नहीं। पूछिए क्यों। मैं ये जानना चाहता हूँ कि थर्ड क्लास के पैसेंजरों को क्या क्या तकलीफें हैं, उनको किन किन सहूलियतों की जरूरत है। मैं आप लोगों का हूँ, जनता का हूँ। बाय द वे, जनता एक्सप्रेस के बारे में तो आपने सुना होगा, वो मेरा ही आइडिया था।
2: आपका आइडिया?
1: ऑफ कोर्स।
2: टिकट प्लीज, टिकट, टिकट प्लीज।
1: पास।
2: क्या मैं देख सकता हूँ?
1: ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, शर्मा जी के घर।
2: कौन शर्मा?
1: अरे भाई, वो तुम्हारे DTS।
2: आपका मतलब वर्मा जी से है?
1: वर्मा जी, वर्मा शर्मा में क्या फर्क है, दोनों मेरे जिगरी दोस्त हैं। क्या तनख्वाह मिलती है तुम्हें?
2: 125 रुपए।
1: 125 रुपए और डियरनेस अलाउंस और भत्ता?
2: 50 रुपए।
1: 50 और 125, 175 रुपए मिलते हैं, और दिन रात बैल की तरह से काम करते हो। जुल्म है ये, सरासर जुल्म है। मैं तुम्हारे लिए वर्मा जी से बात करूंगा। क्या नाम है तुम्हारा?
2: रामप्रसाद।
1: रामप्रसाद, मैं वर्मा जी से तुम्हारे लिए बात करूंगा और तरक्की कराने का इंतजाम करूंगा। अब तुम जा सकते हो।
2: थैंक यू सर, थैंक यू।
0: सन 1954 में HS रवेल की फिल्म मस्ताना में मोतीलाल ने एक यादगार भूमिका निभाई। इस फिल्म में उनकी नायिका थी निगार सुल्ताना।

0: सन 1955 में आई मोतीलाल के फिल्म जीवन की सबसे यादगार फिल्म देवदास।
1: अरे देवदास,
2: अरे चुनिंदा हो तुम,
1: ये क्या सूरत बना रखी है, अब पहचाने भी नहीं जाते, क्या खबर है?
2: खबर बस यही है कि जिंदा है। तुम यहाँ कैसे?
1: भाई कलकत्ता हमें रास नहीं आया, दिल्ली में एक नौकरी कर रखी है, उस सिलसिले में दौरे पर जा रहे हैं, आज यहाँ कल वहाँ। तुम कहाँ जा रहे हो?
2: ये अभी कुछ तय नहीं।

0: मकसद?
1: जिंदगी में अब कोई मकसद ही नहीं रहा चुनी बाबू।
0: तुम रहे वही देवदार। अच्छा ठहरो,
2: इतने दिनों के बाद मिले हैं, मुलाकात को रंगीन किया जाए, क्या ख्याल है? अब तो हम सोडा मिलाने के भी कायल नहीं रहे, क्यों फजूल सोडे पे पैसे जाया किया जाए। लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी, थोड़ा पानी मिला दो।
1: मैंने पीना छोड़ दिया है चुनी बाबू।
0: किसी ने अपने सर की कसम तो नहीं दिला दी?
1: ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस नहीं पीऊंगा।
2: अरे अरे, मगर ये गिलास कहाँ ले जाते हो? तुम नहीं पियोगे तो मैं पी लूंगा। अच्छा, ये वो पुराना मर्ज है या कोई नया रोग लगा लिया? अरे कुछ कहते क्यों नहीं?
1: क्या कहूँ चुनी बाबू, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब तो बस यही अच्छा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगे।
0: तुम्हें क्या दुख है? मैं अच्छी तरह समझता हूँ देवदास, लेकिन ये ना समझो कि सिर्फ तुम ही इस दुख के शिकार। जब इस दुख की आग सीने में भड़कती है तो इसी का सहारा लेना पड़ता है, इसी आग से उस आग को बुझाया जा सकता है, और कोई चारा नहीं।
3: सन 1956 में फिल्म जागते रहो, जिसमें मोतीलाल के अभिनय की मिसाल आज भी दी जाती है।

सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या, तब सच है।

0: सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है।
1: सन 1957 में आई फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं।

0: सन 1959 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनाड़ी में मोतीलाल एक कड़क बिजनेसमैन के किरदार में नजर आए थे।
1: आज ये इस घर में हो क्या रहा? तुम बैठो, मैं भी आता हूँ।
2: ये क्या गानाफूसी हो रही तुम घर में?
3: कुछ नहीं चाचा जी, यूं ही बात कर रहे थे। वो राजकुमार नीचे आए हैं ना।
1: तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उसका नाम राजकुमार है?
3: जी मुझे आशा ने बताया।
1: आशा को कैसे मालूम हुआ कि वो कौन है, क्या है, कहाँ काम करता है?
3: जी मैं जी आरती। घबराओ नहीं आशा, चाचा जी तुम्हें काट थोड़ी खाएंगे, बताओ ना।
1: हाँ, डरने की क्या बात है, राजकुमार को तो मैं खुद पसंद करता हूँ, मेरे यहाँ तो काम करता है वो।
3: सॉरी।
1: हाँ मैं क्या कह रहा था, राजकुमार बड़ा काबिल लड़का है, बड़ा होनहार है, बड़ा ईमानदार है।
3: हाँ और बड़े अच्छे चित्रकार भी हैं और गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं।
1: अच्छा?
3: मुझे आशा ने बताया।
0: सन 1959 में दिलीप कुमार और मोतीलाल एक साथ नजर आए फिल्म

0: सन 1960, बिमल रॉय की फिल्म परख, मोतीलाल का यादगार अभिनय।
1: ये क्या पागलपन फिर से शुरू कर दिया है तूने? कहाँ था डेढ़ महीने से?
2: तुम्हारे ही काम के लिए गया था मैं।
1: मेरा काम?
2: हाँ, तुम्हें याद नहीं, पिताजी की वसीयत के मुताबिक वो 5 लाख रुपए का चेक जो राधानगर मैंने भेजा था, उस वक्त तुम्हें कहा था कि ये रुपया किसी गलत आदमी के हाथ में ना पड़ जाए, इसलिए मैं वहाँ गया। वहाँ जाके पोस्ट ऑफिस में एक डाकिये की नौकरी कर ली और वहाँ से छुट्टी लेके अब अपनी माँ के दर्शन करने के लिए आया हूँ।
1: लेकिन तुझे इस पोशाक में देख कर मुझे बड़ा डर लगने लगता है।
2: डर लगने लगता है क्यों माँ?
1: कुछ ऐसी ही पोशाक में तेरे पिताजी को वो गाँव छोड़ना पड़ा था, इसलिए अब तुझे उस जिंदगी के नजदीक जाके देख मेरा रोम रोम कांपता है।
2: माँ तुम बहुत ही भोली हो, मैं को असली डाकिया थोड़ी बन गया हूँ, ये तो एक स्वांग है, देखो तुसी तमाशा क्या क्या होता है।
0: सन 1965 में मोतीलाल ने एक फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था। ये फिल्म थी छोटी छोटी बातें, जिसमें नादिरा उनकी नायिका थी।

0: रहता है।
1: ये फिल्म नाकाम रही थी और मोतीलाल को इससे गहरा सदमा पहुंचा था। इसी साल यानी सन 1965 में मोतीलाल का देहावसान हो गया था।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता मोतीलाल पर। अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, प्यार की पहली मुलाकात और उसका पहला एहसास जिंदगी के सबसे खूबसूरत और जादुई अनुभवों में से एक होता है। वो पहली नजर, किसी को चुपके से देखने की वो आदत, नजरें चुराकर बार बार देखने का वो मीठा सा एहसास, न जाने कैसा जादू होता है उस पहली नजर में, है ना?

पहले प्यार की यादें और इसका खुमार जिंदगी भर जहन में ताज़ा रहता है। पहला प्यार सिर्फ किसी को पसंद करने का नाम नहीं, बल्कि महबूब की मौजूदगी में सुकून और गैर मौजूदगी में एक मीठा सा खालीपन महसूस करने जैसा होता है। पहला प्यार प्रेम की गहराई और मासूमियत का वो जादुई दौर है जो हमें भीतर तक बदल देता है।

उफ, ये प्यार, पहली नजर में प्यार का वो जादुई एहसास, क्या कहने। प्यार में एक अलग ही दुनिया जीने लगता है मन। खुद से बातें करना, बार बार खुद को आईने में देखना, सजना संवरना, हर बात पे दिल की धड़कन का बढ़ जाना, सुर्ख चेहरा और एक अनजानी सी घबराहट लिए मन इधर उधर भटकता है। बस महबूब के ख्यालों में खोया रहता है ये मन।

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक भावनात्मक सफर है प्यार, खुमारी, बेचैनी, उम्मीद और रोमांस का अद्भुत मिश्रण। मन बेताबी से अपने प्यार को थामे रखना चाहता है, प्रेम को पकड़ना चाहता है, छूना चाहता है, उसे महसूस करना चाहता है। और यही प्यार धीरे धीरे मन के भीतर एक पूरा ब्रह्मांड रच लेता है।

प्रेम के सावन में पहली बार भीगा हुआ मन का कोना जीवन में कभी नहीं सूखता। किसी के होने से भीतर एक ऐसा स्पंदन होता है जो खामोशियों में भी शब्द ढूंढ लेता है। कितना तेज, कितना सुंदर, कितना गहरा होता है ये प्यार। और जब दो टूटे बिखरे उजड़े हुए लोग आ मिलते हों अपने खोए हुए टुकड़ों को, बिखरे हुए वजूद को और उजड़े हुए चमन को खोजते खोजते, तो यही प्यार और तीव्र हो जाता है।

पहला प्यार जो अब आपका संसार बन चुका होता है, इस शोर और भाग दौड़ भरी दुनिया में अब कोई तुम्हें बाहों का सहारा दे रहा है, अपने दिल में जगह दे रहा है, तो तुम बिना किसी डर के समा जाओ उसकी बाहों में, बैठ जाओ उसके दिल के आंगन में, दुनिया का सारा बोझ उतार दो, खिलखिलाकर हंस पड़ो, निश्चिंत हो जाओ उसके आगोश में। कभी कभी एक गहरा आलिंगन वो कह जाता है जो शायद हजार शब्द नहीं कह पाते।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज़ रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमिया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान।

0: दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेयरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंस, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
1: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इनमें संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
2: 2 प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। 3rd प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर 4th प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आवर कंट्री।
1: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।